एफ एम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026 प्रातः के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ हमारी आज की प्रसारण सेवा आरंभ होती है।

0: FM 104.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 6 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
4: आप ही हैं, आनंद भी आप हैं। खुश रहना सब चाहते हैं, दुखी रहना कोई नहीं चाहता। जरा गहराई में जाकर तो देखो, खुशी भी आप ही हो। जिसे पानी का स्वभाव शीतल रहना है, उसी प्रकार हमारा स्वभाव है खुश रहना। खुश रहना हमारा स्वभाव है, उद्देश्य नहीं। जिस तरह हम में से किसी को सैनिक बनना उद्देश्य है, लेकिन सैनिक बनना स्वभाव नहीं है। भाव में डूब जाओगे तब देखोगे सर्वदा आनंद ही आनंद है। जीते जी मर जाओ तब देखो क्या आनंद है, क्या मजा है। हम अपनी प्रसन्नता को बेच देते हैं दो कौड़ी में। हम दोषी हैं कहकर दुखी हो जाते हैं। जो हुआ सो हुआ, आज से हम खुश हैं। ऐसा संकल्प लो और फिर ऐसा काम नहीं करो जिससे दुखी होना पड़े। जिस प्रकार सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, उसी प्रकार आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी आप बाहरी वस्तु को लेकर होते हैं। हंसो और हंसाओ, न फंसो न फंसाओ। खुश रहो, खुशियां बांटो, न दुखी रहो न दुखी करो, न दुख बांटो। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे पास रहने वाले आने वाले सभी खुश होकर जाते हैं।

0: हम कम से कम एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को हंसाएंगे। जो झुकता है वो सभी जगह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अपनी जिंदगी को व्यवसाय मत बनाओ, इससे आपकी खुशी छिन जाएगी और आप अशांत हो जाएंगे। खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में रहें, भूतकाल और भविष्यकाल में न जाएं। भूतकाल में हमेशा ग्लानि, अफसोस, रोना, दुख और उदासी रहती है। भविष्यकाल में कल्पना, आशा, निराशा, चिंताएं और उदासी हैं। वर्तमान में हमेशा खुशी, आनंद, प्रसन्नता, शांति और सुख है। इसलिए वर्तमान में रहने से रोज दिवाली है। अपेक्षा और चाह छोड़ो, हंसो और हंसाओ, प्रेम करो, प्रेम बांटो, यही आपका स्वभाव है। जो समीप में रहता है उसी को पाने के लिए तड़प होती है। खुशी आपके पास है, खुशी के लिए भी तड़प होती है। परमात्मा आपके पास है, तभी तो तड़पन है। हमें जीवन में कुछ चाहिए, क्या चाहिए देखें, सुख, दुख, मुसीबत या आनंद। हमारा जो भी काम होता है खुश रहने के लिए होता है। जीवन को दुख या मुसीबत नहीं समझें, जीवन प्रभु का प्रसाद है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। श्रोताओं, वाचन स्वर था विनय ध्यानी का। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं।

यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रातः के 6:10 होने को है। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाते हैं देशभक्ति गीत और ईश्वर की अटूट भक्ति में सरोवर संगीत। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं मातृवंदना के साथ। लीजिए सुनिए।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ लीजिए सुनिए गणेश वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 6:40 होने को हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति।

शूद्र वंश में जन्मे काकभुशुंडी को, जो अकाल से त्रस्त होकर अयोध्या से उज्जैन नगरी में आ बसे थे, वहां के शिव मंदिर में ब्राह्मण देवता का अपार स्नेह और कृपा प्राप्त हुई। लेकिन गुरु से कपट तो उन्होंने किया ही था। स्वयं भगवान शंकर की आराधना करते, किंतु वैष्णव तथा अन्य मतावलंबियों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना बनी रही। गुरु इनके आचरण से दुखी थे, फिर भी उन्हें सदुपदेश देते, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते। किंतु जिनके स्वभाव में ही अनीति होती है, वे कब किसकी सुनते हैं। उपदेश देते हुए ब्राह्मण देवता ने जब स्वयं भगवान शिव को हरि का सेवक बताया, तो शूद्र वंशी काकभुशुंडी के आक्रोश की सीमा न रही। इन्होंने तब गुरुद्रोह करना आरंभ कर दिया, किंतु फिर भी उदार मना द्विज का स्नेह कम न हुआ। सच तो ये है कि नीच व्यक्ति जब बड़ाई पाता है, तो सबसे पहले उसी के नाश पर उतारू

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 6:50 हो रहे हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप तक पहुंचेगी रात्रि 10:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:40 पर और रात्रि 9:30 पर, रात्रि 8:30 पर और दोपहर 1:15 पर। खेल दर्पण आप सुनेंगे रात्रि 10:00 जिसे हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। स्पॉटलाइट का समय होगा रात्रि 9:15 पर, इसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे तलत अजीज की आवाज में गजलें। संस्कृत वार्ता आप सुनेंगे रात्रि 8:00। क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार आप सुनेंगे शाम 7:50 पर। कृषि जगत का समय होगा शाम 7:00 जिसके अंतर्गत होगी भेंट वार्ता संक्रामक रोगों से पशु सुरक्षा डॉक्टर मंजूपाल से।

0: रूटीन जिलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत आप तक पहुंचेगा शाम 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी एक गांव की, ग्राम कठली खिरसू की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। प्रस्तुति है विनय ध्यानी की। युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक कलाकार शाम 4:30 पर। हमारे आज के कलाकार हैं अभिनेता, निर्माता व निर्देशक राज कपूर। शास्त्रीय संगीत आप तक पहुंचेगा शाम 4:02 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे महफूज अली खान का तबला वादन ताल रूपक ताल और झप ताल में। गाने नए तराने फिल्मी गीत का कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 2:02 पर, और सैनिक भाइयों का कार्यक्रम होगा 2:02 पर। महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत 2:12 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम कितनी नई कितनी पुरानी और रसोई घर से। सुगम संगीत का समय होगा 2:12 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे विविध कलाकारों की आवाज में गीत। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम दैनिक 11:00 और लोक संगीत आप तक पहुंचेगा 10:35 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे विविध कलाकारों की आवाज में अवधि गीत। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:02 पर, परिकल्पना है मंजुला नेगी की। सदाबहार फिल्मी गीत आप तक पहुंचेगा 9:05 पर, और जिले की चिट्ठी 9:00। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप तक पहुंचेगा 8:30 पर, और शैल संगीत आप सुनेंगे 7:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कंचन की आवाज में गढ़वाली लोकगीत। लोक प्रस्थान आप सुनेंगे 7:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं 100.5 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान इतोपि सुदृढ़ीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां संपर्कं च समेत्य देशद्वयोः संबंधानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिश्री अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपति भवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढ़यिष्यति। वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
4: I am confident that this comprehensive agreement
5: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
4: of our shared future.
1: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षताम् कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः, प्रवक्ता च डॉ संवितपात्रवर्यः नरेन्द्रमोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
3: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management and culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, the Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
7: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the US have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement and negotiations are now focused on a few minor issues, commas and full stops. He said that the US team is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement BTA. The talks will take place in New Delhi from today till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator, Brendan Lynch. 5 newly appointed Supreme Court judges will take oath today. Chief Justice of India, Suryakant, will administer the oath of office to the judges. President Draupadi Murmu, after consultation with the Chief Justice of India, has appointed 5 new judges to the Supreme Court. According to a notification issued by the Law Ministry, Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Justice Sheel Nagu, Chief Justice of Bombay High Court, Justice Shri Chandrasekhar, Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, Justice Sanjeev Sajdeva, and Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, Justice Arun Balli, have been elevated as Supreme Court judges. Senior advocate Venkita Subramani Mohana has also been appointed as a judge in the apex court. BJP National President Nitin Nabin held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancements taking place across every sector. Uttar Pradesh government has constituted two separate high-level inquiry committees to investigate the collapse of the segmental span of the under-construction bridge over the Betwa River in Hamirpur district. The committees under the district administration and Uttar Pradesh Bridge Corporation have begun a comprehensive investigation into the incident which took six lives. District Magistrate Hamirpur Abhishek Goyal said that the three-member inquiry committee constituted by the district administration, headed by the additional district magistrate Namami Gange, is conducting a detailed examination of all administrative, technical and procedural aspects related to the incident. In Uttarakhand, UNESCO World Heritage Site Valley of Flowers, located in Chamoli district, has been opened to tourists. The Forest Department has appealed to visitors to cooperate in the conservation of the valley's rich biodiversity and rare plant species. According to the department, Valley of Flower is currently home to more than 300 species of flowers and several rare varieties of flora. Forest Range Officer Chetna Kandpal said that the valley will remain open to visitors until the 31st of October. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan, yesterday. Captain Ketan Kushwaha led from the front with a brace, scoring in the 3rd and 36th minutes. Varinder Singh added another goal in the 5th minute, while Shahrukh Ali sealed the win with a powerful strike in the 54th minute. And that is the end of this news bulletin.
0: FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 7:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे लोक रसधार। चलिए आपको सुनवाते हैं सबसे पहले लगान फिल्म से ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और उदित नारायण एवं साथियों की।

यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, 104.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं श्रोताओं लोक रसधार। चलिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है पीके फिल्म से। आवाज है स्वरूप खान की।

0: कार्यक्रम चल रहा था फिल्म संगीत का, FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाश। क्षमा चाहते हैं, कार्यक्रम चल रहा था लोक रस धार का। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रातः के 7:20 होने को है, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 191 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। शिक्षा मंत्री ने प्रत्येक जिले में एक एक मॉडल पॉलिटेक्निक संस्थान के विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। यात्रा शुरू होने के 41 दिनों के भीतर 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हेली सेवा से किए बाबा केदार के दर्शन और लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला तैयारियों के साथ ही राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के तहत बाढ़ सुरक्षा कार्यों, सड़कों और शासकीय आवासों के निर्माण तथा सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित योजनाओं के लिए 191 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। देहरादून जिले के रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्र में सोंग नदी के चैनलाइजेशन के लिए 3,62,00,000, विकासनगर कॉलोनी में नलकूप निर्माण के लिए 63,62,00,000 स्वीकृत किए हैं। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन को RDSS योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों के लिए 70 करोड़ अवमुक्त किए जाने के साथ ही आस्थापथ परियोजना ऋषिकेश के सौंदर्यकरण को 35,78,00,000 स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। हरिद्वार जिले में दिल्ली नीतिपास राज्य मार्ग और हरिद्वार शहर लोक निर्माण विभाग के अधीन अन्य आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए 21,64,00,000 रूपये स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वाराहाट में शीघ्र नियमित कुलसचिव की नियुक्ति के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने तकनीकी शिक्षा निदेशक को 1 सप्ताह के भीतर कुलसचिव की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा। बैठक में मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्रावासों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कई छात्रावासों में आवश्यक मरम्मत और नवीनीकरण कार्य लंबित होने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी कार्यों को प्राथमिकता

0: आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: की शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पॉलिटेक्निक संस्थानों में खेल मैदानों के विकास, खेल सामग्री की उपलब्धता और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक जिले में एक एक मॉडल पॉलिटेक्निक संस्थान विकसित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थानों में लंबे समय से रिक्त पड़े विभिन्न संवर्गों के पदों को शीघ्र भरने तथा पदोन्नति के पात्र कार्मिकों को समयबद्ध रूप से पदोन्नत करने को कहा। डॉक्टर रावत ने विभाग के अंतर्गत संचालित निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने को कहा, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक और आवासीय सुविधाओं का लाभ मिल सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से वीरेंद्र दत्तेरुल।
0: इन्फेंट्री बटालियन टीए इको कुमाऊं द्वारा 2 जून से 5 जून तक पिथौरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विद्यालय छात्रों के लिए यूनिट नर्सरी भ्रमण, पौधशाला तकनीकों और वर्मी कंपोस्टिंग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देवकटिया सैन्य क्षेत्र में 348 मेडिकल रेजिमेंट और 14वीं बटालियन आईटीबीपी के सहयोग से व्यापक पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लगभग 1000 पौधे लगाए जाएंगे। यक्षवती नदी के किनारे स्वच्छता और नदी पुनर्जीवित अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 55वीं बटालियन एसएसबी, 12वीं कुमाऊं एनसीसी कैडेट्स तथा छात्र भाग लेंगे। चंडाक हिल्स में स्वच्छता अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा, जिसमें पूर्व सैनिक, स्वयंसेवी संस्थाएं, नागरिक प्रशासन और स्थानीय नागरिक सहभागिता करेंगे। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने मॉनसून सीजन को देखते हुए आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को माइक्रो लेवल प्लान तैयार कर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम और सभी नगर निकायों को निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्रों में स्थित नदी नालों और जल निकासी तंत्र की युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाते हुए 7 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने जल भराव की भावनाओं को देखते हुए सभी निकायों में टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम स्थापित करने और नदी नाला तथा नाली सफाई की दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
2: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: केदारनाथ धाम की यात्रा में इस बार हेली सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सहूलियत साबित हो रही हैं। यात्रा शुरू होने के महज 41 दिनों के भीतर 50,000 से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच सुरक्षा और सुगम संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे के अनुसार मौसम खराब होने पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उड़ानों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। आगामी 22 जून तक की सभी टिकटों की बुकिंग हो चुकी है, जिससे श्रद्धालुओं के उत्साह और यात्रा की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
3: खराब होता है तुरंत एटीसी द्वारा फ्लाइंग रोक दी जाती है, क्योंकि सुरक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ही फ्लाइंग की जा रही है, कि जिसमें फ्लाइंग जो हो कारगर भी हो और सुरक्षित भी हो।
0: देहरादून जिला प्रशासन द्वारा लखवाड़ बहुद्देश्य परियोजना क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 6 माह तक की अवधि तक प्रभावी रहेगा। उप जिलाधिकारी कालसी प्रेम लाल ने बताया कि उप महाप्रबंधक लखवाड़ परियोजना और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कालसी द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्टों के आधार पर यह निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार लखवाड़ बहुद्देश्य परियोजना के समस्त कार्यस्थलों से 500 मीटर की परिधि के भीतर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का कानून व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। परियोजना स्थल, कार्यालय, आवासीय परिसर एवं निर्माण क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को बिना सक्षम अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी अथवा भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण को सफल और प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम सभागार में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ, सुपरवाइजरों और सहायक कार्मिकों

0: लिए दूसरे चरण का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना रहा, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज न हो सके। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गौरव चटवाल ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती सटीक और मतदाता सूची पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में त्रुटियों को न्यूनतम करने और प्रत्येक पात्र नागरिक तक निर्वाचन प्रक्रिया की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में सहकारिता आधारित औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ यूसीएफ आगे आया है। यूसीएफ ने लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी रानीखेत स्थित कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री यानी सीडीएफ और हल्दूचौड़ स्थित उत्तराखंड स्टेट मेडिसिन एंड पैरामेडिकल्स लिमिटेड यानी यूएमपीएल को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। दोनों इकाइयों में आधुनिक मशीनरी, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और उन्नत उत्पादन प्रणाली स्थापित कर आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण शुरू किया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से वर्षों से बंद पड़ी सहकारी औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित कर उन्हें आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 191 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रत्येक जिले में एक एक मॉडल पॉलिटेक्निक संस्थान विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के अधिकारी को निर्देश दिए। यात्रा शुरू होने के 41 दिनों के भीतर ही 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हेली सेवा से किए बाबा केदार के दर्शन और लखवाड़ बहुद्देश्य परियोजना क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए शैल संगीत। शैल संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कंचन की आवाज में गढ़वाली लोकगीत। इनके साथ ढोलक पर हैं सुमित कंवर, तबला पर युवराज, हुड़का पर जोत सिंह और बांसुरी पर कैलाश चंद्यानी, हारमोनियम पर संगत की है वीरेंद्र कुमार डिमरी ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
5: आप सुन रहे हैं शैल संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं कंचन की आवाज में गढ़वाली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे शैल संगीत, जिसके अंतर्गत आपने सुना कंजन की आवाज में गढ़वाली लोकगीत। इनके साथ ढोलक पर संगत की थी सुमित कंवर, तबला पर युवराज, हुड़का पर जोत सिंह, बांसुरी पर कैलाश चंद्यानी और हारमोनियम पर थे वीरेंद्र कुमार डिमरी।

यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपको बता दें कि सुबह 10:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम परिकल्पना होगी मंजुला नेगी की।

हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, प्रातः की 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल, और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउ लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

0: दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के

आकाशवाणी देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में मैं आपके साथ योशिता आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। इन दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर जन भागीदारी बढ़ रही है और छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव का आधार बन रहे हैं। सुबह की ताजगी, पहाड़ों की शीतल हवा और आपके अपने आकाशवाणी परिवार की आत्मीयता के साथ हम लेकर आए हैं जानकारी, प्रेरणा और मधुर संगीत का ये संगम। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुरीले गीत के साथ, जिसे हमने लिया है कुछ कुछ होता है फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

श्रोताओं, आइए आपको बताते हैं उत्तराखंड के समाचार पत्र की सुर्खियों में आज क्या है खास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद खंडूड़ी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने एक अनुशासित सैनिक, दूरदर्शी प्रशासक, आदर्श जनप्रतिनिधि और उत्तराखंड के विकास पुरुष के रूप में अपना पूरा जीवन राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि खंडूड़ी जी कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, सादगी और राष्ट्र सेवा के ऐसे प्रतीक थे जिनसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को गढ़ी कैंट स्थित स्वर्गीय हरिवंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केन्द्र सरकार के पूर्व मंत्री मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद्र खंडूड़ी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता सेनानी शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा के नाम पर बनाया जाएगा भव्य द्वार। स्वतंत्रता सेनानी शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा आजाद हिंद फौज की मूर्ति अनावरण समारोह में हंस फाउंडेशन के संस्थापक बुले ने कहा कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान सभी ने उनके भारतीय सेना में योगदान और शौर्य को बताया। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित कर उनके राष्ट्र निर्माण एवं देश सेवा में दिए गए योगदान को नमन किया और कहा कि अमर शहीद कैप्टन दल बहादुर थापा के नाम पर दून में भव्य द्वार जल्द ही बनाया जाएगा। आपको बतलाते चलें कि देहरादून में खुलेंगे 3 ट्रैफिक स्टेशन, विकासनगर ऋषिकेश में जगह चिन्हित। जी हां, जनपद में बढ़ती यातायात की समस्या को देखते हुए पुलिस ने जनपद में 5 जगह ट्रैफिक पुलिस स्टेशन खोलने की कवायद शुरू कर दी है। ऋषिकेश व विकासनगर में पुलिस स्टेशन खोलने के लिए जगह चिन्हित कर दी गई है, जबकि देहरादून में खुलने वाले 3 पुलिस स्टेशन के लिए जगह देखी जा रही है। SSP परमेंद्र सिंह डोवाल ने पुलिस अधीक्षक यातायात को जल्द जगह तलाश करने के निर्देश जारी किए हैं। यातायात की समस्या को देखते हुए

जनपद में 5 ट्रैफिक स्टेशन खोलने की योजना बनाई गई है। उसमें विकास नगर ऋषिकेश में स्टेशन शुरू करने के लिए जगह चिन्हित कर दी गई है। यहां जल्द ही फोर्स तैनात किया जाएगा। साथ ही शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लागू करने की तैयारी है। इन सिग्नलों को सेंसर और कैमरों से जोड़ा जाएगा, जिससे वाहनों की संख्या के अनुसार सिग्नल अपने आप नियंत्रित हो सकेंगे। इससे अनावश्यक इंतजार कम होगा और यातायात सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपको साथ ही बताते चले कि वर्ष 2028 से नगर निगम की आर्थिक ताकत मजबूत करेंगे भवन करदाता। नगर निगम सीमा में शामिल नए क्षेत्रों में तुनवाला, नवादा, बद्रीपुर, जोगीवाला, मोथरवाला, बंजारावाला, बालावाला, नकरौंद, कुआवाला, नेहरूग्राम, रायपुर, लाडपुर, मोहकमपुर, नथुआवाला, बनियावाला, आर्केडिया, बड़ोवाला, श्यामपुर, मालसी, डांडा, लखौन, गुजराड़ा, मानसिंह धोरण इसमें शामिल है। देहरादून नगर निगम की आय में अगले वर्षों में बड़ा उछाल आ सकता है। नगर निगम सीमा में शामिल 72 गांवों को हाउस टैक्स में दी गई छूट मई 2028 में समाप्त होने जा रही है। इसके बाद इन क्षेत्रों के करीब 1.60 लाख आवासीय भवन कर दायरे में आ जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे नगर निगम का हाउस टैक्स लगभग 72 करोड़ रुपए से बढ़कर 100 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच सकता है। साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 191 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रत्येक जिले में एक मॉडल पॉलिटेक्निक संस्थान विकसित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए और चारधाम यात्रा शुरू होने के 41 दिनों के भीतर 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हेली सेवा के लिए बाबा केदार के दर्शन किए और लखवाड़ा बहुद्देशीय परियोजना क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए BNSS की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू। जाम में जूझ रही मसूरी, स्थानीय समाधान की मांग तेज। शहर में पर्यटन सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार चौथे दिन भी बनी रही। सोमवार को लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस, भगत सिंह चौक और किंगरिंग मार्ग समेत कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव बना रहा। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियां। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है डुप्लीकेट फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून।

चल रहा है। नमस्कार देहरादून का। प्रत्येक दिन किसी न किसी वजह से इतिहास के पन्नों में दर्ज है, तो 2 जून का इतिहास क्या है खास, चलिए जानते हैं। आपको बतला दें कि 2 जून का इतिहास भारत और विश्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी, प्रसिद्ध हस्तियों का जन्म हुआ और कई महान लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो चलिए जानते हैं क्या है कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1886 में अमेरिकी आविष्कारक और उद्योगपति जॉर्ज वेसिंगटन हाउस ने वेसिंगटन हाउस इलेक्ट्रिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की। 1946 में इटली में राजशाही समाप्त होकर गणतंत्र की स्थापना हुई और इटली के नागरिकों ने पहली बार मतदान किया। सन 1953 में एलिजाबेथ द्वितीय का ब्रिटेन की महारानी के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ और 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान सर्वियर 1 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। यह किसी अन्य खगोली पिंड पर अमेरिका की पहली सफल लैंडिंग थी। और साथ ही आपको बताते चलें कि किन प्रसिद्ध हस्तियों का आज हुआ जन्म। जी हाँ, 1929 में भारत की प्रसिद्ध महिला चित्रकार और मूर्तिकार अमृता शेरगिल का आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता पारुपल्ली कश्यप का भी जन्म हुआ और इनका जन्म हुआ था 1985 में। और 1987 में बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और अब बात होगी उन महान विभूतियों की जो अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे। 1964 में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ चौधरी ब्रह्मा प्रकाश का निधन हुआ, जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। और 1988 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता राज कपूर का निधन हुआ। उन्हें शोमैन के रूप में भी जाना जाता था। तो श्रोताओं, ये थी इतिहास की पन्नों में दर्ज कुछ प्रमुख घटनाएं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। प्लेयर फिल्म से आवाज है मोहित चौहान की।

श्रोताओं, आप बने आकाशवाणी देहरादून के साथ और एंजॉय कर रहे हैं नमस्कार देहरादून। चलिए आपको बतलाते हैं कि आज कौन सा दिवस है। आपको बताते चलें कि आज 2 जून सन 2026 मंगलवार को भारत में प्रमुख रूप से तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। हालांकि 2 जून 2014 को तेलंगाना के भारत के 29वें राज्य के रूप में की गठन की स्मृति में मनाया जाता है और राज्य भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, ध्वजारोहण और सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। तो मोटे तौर पर या मुख्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज तेलंगाना स्थापना दिवस, जिसे हम तेलंगाना फॉर्मेशन डे, तेलंगाना राज्य के गठन की वर्षगांठ के रूप में जानते हैं, और विश्व भोजन विकार जागरूकता दिवस, जिसे वर्ल्ड ईटिंग डिसऑर्डर एक्शन डे, जो कि भोजन संबंधी विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही हीट एक्शन डे, बढ़ती गर्मी और हीट वेव के प्रभावों के प्रति जागरूकता का दिन है, और इटली का गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे ऑफ इटली, इटली में राष्ट्रीय अवकाश होता है। तो ये है आज के कुछ प्रमुख दिवस। तो श्रोताओं, आइए चलते चलते सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है माय नेम इज खान फिल्म से।

श्रोताओं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं, इसे हम शामिल करेंगे आपका पत्र मिला कार्यक्रम में। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 7088-000-731। नंबर पुनः नोट करें 7088-000-731। इस पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और मैसेज से पहले आपका पत्र लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, तो मतलब आपका पत्र लिखना अवश्य लिखें। तो श्रोताओं, ये था हमारा

0: अभी आप सुन रहे थे नमस्कार देहरादून FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं प्रातः के 9 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप अखिलेश चंद्र गैरोला से पिथौरागढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख है राकेश पंत का। पिथौरागढ़ जिले में मई माह के दौरान बहुप्रतीक्षित आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा की तैयारियां पूरी कर यात्रा संचालन शुरू कर दिया गया। जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, आवास और परिवहन व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया। धारचूला, गुंजी, नाभीढांग और ज्योलिंगकोंग मार्ग पर मेडिकल टीमों की तैनाती की गई। इस बार यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऑनलाइन पंजीकरण और परमिट व्यवस्था को भी सरल बनाया गया है। प्रशासन ने मौसम और भूस्खलन की संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन दलों को भी अलर्ट मोड पर रखा है। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए जिला प्रशासन ने पिथौरागढ़ जिला अस्पताल परिसर में भी इनर लाइन परमिट जारी करने की सुविधा शुरू कर दी। पहले यात्रियों को परमिट के लिए धारचूला तहसील तक जाना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की अतिरिक्त खपत होती थी। नई व्यवस्था के बाद जिला मुख्यालय में ही मेडिकल जांच और परमिट संबंधी प्रक्रियाएं पूरी होने लगी हैं। इस सुविधा से यात्रा प्रबंधन अधिक सुगम होने के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी। लगभग 7 साल के बाद लिपुलेख दर्रे से होने वाले भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर मई माह में जिला मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अधिकारी आशीष भटगाई ने सीमा सड़क संगठन, व्यापार विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों से तैयारियों की जानकारी ली। अधिकारियों को व्यापारियों की सुविधाओं, सड़क संपर्क, सुरक्षा व्यवस्था और संचार नेटवर्क को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का लक्ष्य है कि व्यापार सुचारू रूप से संचालित हो और सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। पिथौरागढ़ प्रशासन द्वारा शुरू की गई हेलो हेल्प हेल्पलाइन मई माह में लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई। जिलाधिकारी के अनुसार हेल्पलाइन पर प्रतिदिन 15 से 20 शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। अब तक 200 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से कई का समाधान किया जा चुका है। सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और राजस्व से संबंधित समस्याएं सबसे अधिक सामने आईं। हेल्पलाइन का उद्देश्य लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है। पिथौरागढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री शेयर करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ IT एक्ट की धारा 67B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि पुलिस को NCRP और NCMEC के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद SOG और साइबर सेल ने जांच शुरू की। जांच में आरोपी विपिन चंद्र जोशी, निवासी गंगोली हाट, के मोबाइल फोन में आपत्तिजनक सामग्री डाउनलोड और फेसबुक के जरिए शेयर किए जाने के प्रमाण मिले। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि इस प्रकार की सामग्री देखना, डाउनलोड करना या साझा करना कानूनन दंडनीय अपराध है। भारतीय सेना की कुमाऊं स्काउट्स ने नागरिक सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के धारचूला में रम समुदाय के लिए नए सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। यह भवन स्थानीय लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उपयोगी साबित होगा। उद्घाटन समारोह में सेना के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने सेना की इस पहल की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। और बढ़ते तापमान के बीच पिथौरागढ़ जिले के कई वन क्षेत्रों में आग की घटनाएं सामने आईं। आग से वन संपदा, जैव विविधता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने विशेष अभियान चलाया। विभागीय टीमों, फायर वॉचरों और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कई स्थानों पर आग पर समय रहते काबू पाया गया। अधिकारियों ने लोगों से जंगलों में आग न लगाने और किसी भी घटना की तुरंत सूचना देने की अपील की है। श्रोताओं, इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 9:05 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून के इस विशेष संगीतमय कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। मैं हूं आपके साथ योशिता। आज के इस एक घंटे के सफर में हम सुनेंगे हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे मधुर गीत और मेलोडियस गीत जो दशकों बाद भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो प्रेम और विश्वास की खूबसूरत अभिव्यक्ति है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं वो कौन थे फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में गाने के बोल हैं लग जा गले।

बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत था और गाने के बोल और भी उमदा थे। लग जा गले की फिर हंसी रात हो ना हो। जी हाँ श्रोताओं, आप बने हैं आकाशवाणी देहरादून के साथ और सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत। अगला गीत हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम दौर का एक अनुपम रत्न है। शब्द संगीत और गायकी का ऐसा संगम जो सीधे दिल को छू जाता है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म अजीब दास्तां है ये। आप सुन रहे हैं दिल अपना और प्रीत पराया फिल्म से ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
2: बने आकाशवाणी देहरादून के साथ FM 16.5 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत। चलिए आपको सुनवाते हैं कि कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है ब्लैकमेल फिल्म से, गाने के बोल हैं पल पल दिल के पास।

श्रोताओं, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं का आईना भी है। ये जो गीत आपने सुना, ये गीत रिश्तों की गहराई और जीवन की सच्चाइयों को बखूबी बयां करता है। आप सुन रहे आकाशवाणी देहरादून को पुराने फिल्मी गीतों के साथ। और आपको बता दें कि श्रोताओं, ये जो पुरानी फिल्मी गीत होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इनके बोल सीधे दिल तक पहुंचते हैं। तो आइए सुनते हैं एक और सदाबहार नगमा। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, आवाज़ है किशोर कुमार की।

0: कभी तो हंसाए।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ऐसा गीत जो हमें जिंदगी को मुस्कुराकर जीने का संदेश देता है। तो आपको सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म से ये गीत।

0: श्रोताओं, भी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आपको बता दें श्रोताओं कि प्रेम की ये जो भावनाएं होती है ना, इन प्रेम की भावनाओं को शब्दों और सुरों में पिरोना आसान नहीं होता, लेकिन पुराने गीतकारों और संगीतकारों ने इसे बखूबी निभाया है। अब सुनते हैं मोहब्बत की एक और खूबसूरत अभिव्यक्ति फिल्म हम दोनों से। गाने के बोल हैं अभी ना जाओ छोड़कर, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ये गीत।
1: अभी ना जाओ छोड़कर,

कभी खुशी, कभी गम, कभी उम्मीद और कभी इंतजार, इन्हीं भावनाओं से मिलकर बनती है जिंदगी। अगला गीत इन्हीं एहसासों को बड़ी खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं श्रोताओं, शोर फिल्म से ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत की बोल है एक प्यार का नगमा है, लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोता, हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत संगम फिल्म से। ये हिंदी सिनेमा की एक यादगार फिल्म रही जिसका निर्देशन निर्माण राज कपूर ने किया था वर्ष 1964 में। प्रदर्शित इस फिल्म में राज कपूर, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई। दोस्ती, प्रेम और त्याग की भावनाओं पर

श्रोताओं, बात करते हैं हिंदी सिनेमा की एक कालजयी संगीत प्रधान फिल्म बैजू बाफरा की। वर्ष 1952 में प्रदर्शित इस फिल्म का निर्देशन विजय भट्ट ने किया था। इस फिल्म में भारत भूषण और मीना कुमारी मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता इसके शास्त्रीय संगीत रही, और संगीतकार नौशाद ने भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित ऐसा संगीत दिया कि यह फिल्म संगीत इतिहास में अमर हो गई। मोहम्मद रफी और उस्ताद आमिर खान जैसे महान कलाकारों की आवाज ने इस

गीतों को बहुत ऊंचाई दी। श्रोताओं, अब पेश है फिल्म बैजूबावरा का एक अमर गीत, जो कि शास्त्रीय संगीत की मिठास और भावनाओं की गहराई से सजा यह गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, सुबह के 10 बज रहे हैं, अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला तैयारियों के साथ ही राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के तहत बाढ़ सुरक्षा कार्यों, सड़कों और सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित योजनाओं के लिए 191 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक मॉडल पॉलिटेक्निक संस्थान विकसित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन्फेंट्री बटालियन TA ईको कुमाऊं द्वारा 2 जून से 5 जून तक पिथौरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विद्यालय छात्रों के लिए यूनिट नर्सरी भ्रमण, पौधशाला तकनीकों और वर्मी कंपोस्टिंग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने मॉनसून सीजन को देखते हुए आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को माइक्रो लेवल प्लान तैयार कर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केदारनाथ धाम की यात्रा में इस बार हेली सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सहूलियत साबित हो रही हैं। यात्रा शुरू होने के महज 41 दिनों के भीतर 50,000 से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। देहरादून जिला प्रशासन द्वारा लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू। किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को बिना सक्षम अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी अथवा भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण को सफल और प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम कार्यालय सभागार में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों, सुपरवाइजरों और सहायक कार्मिकों के दूसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। राज्य में सहकारिता आधारित औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ UCF आगे आया है। UCF ने लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी रानीखेत स्थित कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री CDF और हल्दूचौड़ स्थित उत्तराखंड स्टेट मेडिसिन एंड पैरामेडिकल्स लिमिटेड UMPL को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
0: FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। श्रोताओं, सुबह के 10:02 हो रहे हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉ SK सैनी, सेवानिवृत्त महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल से रमेश चंद्रा की बातचीत। परिकल्पना है मंजुला नेगी की।
2: श्रोताओं, आज के अनुभव कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर SK सैनी को। आप 1991 बैच के सिविल सेवा के अधिकारी हैं और आप सेवानिवृत्त महानिरीक्षक हैं रेलवे सुरक्षा बल के। डॉक्टर SK सैनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी।
2: सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे।
3: प्रिय मित्रों, मेरी पृष्ठभूमि राजस्थान राज्य की रही है। उत्तरांचल में भी मेरा आना जाना लगातार रहा है, क्योंकि मेरी ससुराल यहाँ पर है, इसलिए मेरे लिए ये राज्य एक विशिष्ट अर्थ रखता है। मेरी शिक्षा राजस्थान में ही BCom राजकीय महाविद्यालय बूंदी से हुई, उसके पश्चात MCom और PhD मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से की। उसके बाद मैंने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से व्याख्याता की परीक्षा उत्तीर्ण करके कॉलेज व्याख्याता के रूप में अलग अलग जगहों पर कार्य किया
2: जी।
3: 1987 से लेकर के और 1991 तक, जिसमें जनजातीय बहुल क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर रहा है। लोगों ने मुझसे पूछा कि जब आप सेलेक्ट हो गए तो आपने बूंदी या कोटा क्यों नहीं चुना, आपने जयपुर से दूर जा करके और डूंगरपुर में ही पदस्थापना क्यों चाही। मैंने जानबूझ करके ये पदस्थापना ली क्योंकि मैं उस समय अपनी PhD का कार्य कर रहा था
2: जी।
3: और

0: का विषय था राजस्थान के आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन। मैं उसको कागजी कार्रवाई करके नहीं पूरी करना चाहता था, मुझे क्षेत्र में जाना था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जहां हमारे राजस्थान के अधिकतम आदिवासी रहते हैं, तो उन लोगों के बीच में जाके फील्ड स्टडी करके मुझे वह सारे समंक एकत्रित करने थे, उनकी शिक्षा के संबंध में, उनकी गरीबी के संबंध में, उनके विश्वास के संदर्भ में, आधुनिक समाज के प्रति उनके नजरिए के संबंध में। तो इसलिए मैंने जानबूझ करके उस आदिवासी क्षेत्र में ही अपनी पद स्थापना को चुना।
1: शिक्षक बनने के बाद आपका जो रेलवे पुलिस सेवा का सफर है, उसकी शुरुआत कैसे हुई?
0: देखिए, मुझे यूनिफॉर्म के प्रति लगाव रहा है। शुरुआत से मैं स्काउट रहा
1: जी।
0: स्काउट के बाद महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में मैं रोवर भी रहा, तो रोवर स्काउटिंग में ही कार्यरत और सेवारत रहते रहते मुझे 9th वर्ल्ड कनाडियन रोवर मूट कनाडा में आयोजित हुआ था 1982 में, उसमें भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का रिप्रेजेंटेशन करने का सौभाग्य मिला
1: जी।
0: तो एक ग्रेजुएशन कर रहे युवा के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था विश्व भ्रमण का, और पूरी दुनिया के स्काउट आंदोलन और उसमें प्रतिभागी रोवर्स और रेंजर्स को देखने का। तो ये समझिए कि दुनिया को मैंने 1982 में ही देख लिया था, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण अवसर था। तो वह जो यूनिफॉर्म के प्रति लगाव था
1: जी,
0: वो लगातार जारी रहा। और एक और चीज थी जिसने मुझे सिविल सर्विस परीक्षा देने के लिए अभिप्रेरित किया, वह था कि हम लोग सभी राजपत्रित अधिकारी थे एक कॉलेज में, लगभग 50 के लगभग, और 50 के 50 ही राजपत्रित अधिकारी एक ही स्टाफ रूम में बैठते थे
1: जी।
0: तो मुझे ऐसा लगता था कि राजपत्रित अधिकारी होकर के भी हम लोग एक जैसे सामान्य से हो गए हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं एक ऐसा राजपत्रित अधिकारी बनूं जिसमें मेरा अपना एक चैम्बर हो और मेरे साथ कार्य करने वाले लोग हों, मेरे अधीनस्थ एक वर्क फोर्स हो, ताकि जिनसे मैं काम ले सकूं और जिनको जनता के हित में काम करवा सकूं। तो ये मन में एक महत्वाकांक्षा थी जिसने मुझे सिविल सर्विस देने के लिए प्रेरित किया।
1: डॉक्टर सैनी, एक शिक्षक अपने अध्यापन के द्वारा जो छात्र होते हैं उनमें आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, वो तो बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स पैदा कर सकते हैं और उनके जरिए समाज में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, इसको किस नजरिए से देखेंगे आप?
0: ये आपका कहना बिल्कुल सही है, और यही कारण है कि आज भी मैं सेवानिवृत्त होने के बाद में कई सारे विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, कुछ कोचिंग सेंटर्स में भी जाता हूँ, और हमारी अपनी जो पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें भी जाता हूँ। तो दो तरह से मैं इन लोगों को प्रोत्साहित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में जाता हूँ वहां पर हमारी वर्क फोर्स यानी हमारे कॉन्स्टेबल है, सब इंस्पेक्टर्स हैं, वे ड्यूटी आवर्स में बेहद थक जाते हैं, काम का बोझ है, पब्लिक से इतना इंटरेक्शन है, पब्लिक के कई बार आक्रोश को भी झेलना पड़ता है, तो वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि वे अपने तनाव को प्रबंधन करके एक बैलेंस बना करके काम में और परिवार के साथ चलें, ताकि अत्यधिक तनावग्रस्त होकर के वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो उनके परिवार के लिए और हमारे सरकार के लिए घातक हो। विगत में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें तनावग्रस्त वर्क फोर्स में कई बार खुद आत्महत्या कर ली या किसी को गोली मार दी। तो मेरी कोशिश यह रहती है कि उन लोगों को काम और आराम और परिवार और सरकार के बीच में एक सामंजस्य बनाकर चलने का एक तरीका बताएं, और उनको उनकी समस्याओं के हल के बारे में बताएं जो वो कई बार नहीं पूछ पाते, संकोच में रहते हैं, घुटन में रहते हैं। और इधर जब विश्वविद्यालयों में मैं जाता हूं तो मेरे पास अलग तरीके के उनको अभिप्रेरित करने के मानदंड होते हैं। उनको हम बोलते हैं कि यह तुम्हारी शिक्षा अधूरी रहेगी जब तक या तो तुम इसको व्यवसाय के रूप में परिणित नहीं कर लो या कोई नौकरी नहीं प्राप्त कर लो। और नौकरी प्राप्त करने के लिए राह इतनी आसान नहीं है क्योंकि वैकेंसी की संख्या सीमित रहती है और आवेदन करने वाले उम्मीदवार बहुत होते हैं। लेकिन तुम्हें 500 वैकेंसी से क्या लेना देना, 50 वैकेंसी हो तो भी तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारे को तो एक वैकेंसी चाहिए ना
1: जी।
0: तो तुम अपने आप को इतना योग्य साबित करो कि वह एक वैकेंसी तुम लेकर रहो, तुम क्यों डरते हो कि तुम्हारे सामने 500,000 उम्मीदवार। इस तरह से अभिप्रेरित करने से उनके मन में एक जज्बा जागृत होता है कि मुझे बस लग जाना है।
1: आपकी PhD का जो टॉपिक है, आपने बताया राजस्थान के आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन, आपने उस PhD के दौरान क्या जाना आदिवासियों की पृष्ठभूमि के बारे में?
0: देखिए, वर्तमान में तो सरकारों के जागरूकता कार्यक्रमों और बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रमों से आदिवासियों में जागृति आई है, शिक्षा के क्षेत्र में भी और रोजगार में भी वे आगे बढ़े हैं
1: जी।
0: समाज की मुख्य धारा में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। लेकिन हम अगर बात करें 1980 और 82 की, जब

0: इंटरनेट नहीं था
1: जी,
0: और समाज के और सरकार के जो कार्यक्रम थे उनकी भी पहुंच नहीं थी, किंतु उस समय भी आदिवासी आपके नजरिए से पिछड़े हो सकते हैं लेकिन उनके अपने समाज के नजरिए से पिछड़े नहीं थे। आज भी हम दामाद को दहेज देता है, आदिवासियों में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है
1: जी।
0: उनके यहाँ एक कन्या जो है वो अपने परिवार का एक कर्मठ कार्यशील सदस्य है, दूसरी वो लोग वर्तमान में जीते हैं
1: जी।
0: बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। और हम लोग भविष्य के बारे में सोचकर इतना कष्ट में रहते हैं कि वर्तमान के आनंद को भी भूल जाते हैं
1: जी।
0: तो ये आदिवासियों से मैंने सीखा, उनकी संस्कृति से, उनके जीवन जीने के तरीके से। उनके पास कुछ भी संसाधन नहीं है लेकिन जो कुछ है कमर तोड़ मेहनत दिन भर करने के बाद वो थोड़ा सा खाकर भी संतुष्टि की नींद सोते हैं। और आज हम अच्छा खाना खाकर भी चैन की नींद नहीं सो पाते क्योंकि 50 तरह की जिम्मेदारियों के तनाव हमारे को ग्रसित करते रहते हैं। उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर है, मुझे उनसे ईर्ष्या होती है कि कम खा करके भी वे संतुष्ट हैं और स्वस्थ भी हैं। तो ये उनकी जीवन शैली है जिससे हमें सीखना चाहिए।
1: डॉक्टर सैनी, आपने कहा कि आदिवासियों से हम सीख सकते हैं कि भविष्य में न जी के वर्तमान का आनंद लें, ये जो हमारा समाज है उसके लिए कितना उपयोगी हो सकता है?
0: ये जो सिद्धांत है ना वर्तमान में जीने का, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि संक्राक नहीं होते हैं तो समाज को वर्तमान में ही जीना चाहिए। बहुत ज्यादा भविष्य के प्रति चिंतित होकर के अपने वर्तमान को, आनंद को नष्ट करने की जरूरत नहीं।
1: आप किसमें जीते हैं?
0: मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं वर्तमान में जीऊं, भविष्य के बारे में किसने जाना है, क्या देखा है
1: जी।
0: भविष्य के लिए थोड़ी बहुत बचत करें लेकिन इतना भी ना जोड़े कि हमारा वर्तमान ही नष्ट हो जाए।
1: शुरुआती दिन थे जो आपके आरपीएफ में सेवा के, किस तरह की चुनौतियां थी?
0: देखिए, जब मैंने 1991 में आरपीएफ को ज्वाइन किया तो उस समय रेलवे सुरक्षा बल को जनता इतना नहीं पहचानती थी
1: जी।
0: रेलें भी सीमित थी, तकनीक भी सीमित थी, पीआरएस सिस्टम्स नहीं हुए थे, रिजर्वेशन के लिए टिकट काउंटर पर जाकर के और टिकट लेने पड़ते थे
1: जी।
0: ब्रॉड गेज से मीटर गेज में और मीटर गेज से ब्रॉड गेज में जाने के लिए कई सारी दिक्कतें थी। अब वर्तमान में वो सारी चीजें धीरे धीरे प्रगति के पथ पर, रेल चली गई है, पूरे भारत में यूनिगेज हो गया है
1: जी।
0: और रेलवे सुरक्षा बल अब आगे रेल मंत्रालय के एक लीडिंग वर्कफोर्स के रूप में काम कर रहा है, एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में काम कर रहा है। रेलवे सुरक्षा बल के सामने चुनौतियां हैं कि हर दिन जो लाखों यात्री यात्रा करते हैं उनको सुरक्षा, प्रभावी सुरक्षा कैसे मुहैया कराया जाए, तकनीक के माध्यम से भी और ट्रेनों को एस्कॉर्ट करके और प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी दर्शा करके। वर्तमान में हम लोग न सिर्फ रेल कर्मचारियों बल्कि रेल यात्रियों के लिए भी मार्गदर्शक और एक मित्र के रूप में काम कर रहे हैं, जहां पर हम अपराधियों को गिरफ्तार भी करते हैं और जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको भी गिरफ्तार करते हैं और दूसरी तरफ सुरक्षित यात्रा का आश्वासन देते हैं। खासतौर पर अकेली महिला यात्रियों के लिए मेरी सहेली जैसा अभियान हमारे तत्कालीन महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया जो वर्तमान में चल रहा
1: जी।
0: तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, कल्याणकारी कार्य जो रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों के लिए कर रहा है।
1: कोई ऐसी चैलेंजिंग घटना जो आपने अपने सेवा काल के दौरान फेस की हो?
0: मुझे याद आती है एक घटना, जब किसी कारणवश मेरे बगल के डिवीजन में, मैं उस समय मुगलसराय मंडल में था जिसका आज का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है
1: जी,
0: तो उधर से दानापुर की तरफ जाने वाली जो एक ट्रेन थी उस ट्रेन पर गुस्साए यात्रियों ने आग लगा दी थी और दानापुर के उस समय प्रभारी सुरक्षा आयुक्त थे, वह छुट्टी पर थे, तो मैं बगल के ही मंडल में था, वहां से मैं बाय रोड अपनी फौज लेकर के और मैं करीब 1.5-2 घंटे में उस स्थल पर पहुंचा। गाड़ी तो धू धू करके जल रही थी, उसको तो बचाने का कोई संभावना नहीं था लेकिन यात्रियों को काफी कुछ मेहनत करके अब वहां से हम लोगों ने धीरे धीरे उस स्थान से उनको सुरक्षित अलग अलग जगहों पर पहुंचाया और बाद में किसी तरह से पहुंची थी वहां पर फायर ब्रिगेड्स, उनके माध्यम से भी उस ट्रेन के बचे हुए डिब्बों को जलने से बचाया हम लोगों ने। तो वो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण यादगार घटना थी कि किस तरह से समय पर पहुंचकर हम लोग यात्रियों की भी मदद कर सकते हैं और रेल संपत्ति की भी सुरक्षा कर सकते हैं।
1: जब आप उस घटना के समाधान के लिए जा रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था?
0: सबसे बड़ी बात तो यही थी कि मैं जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचूं ताकि मैं जो परेशान रेल यात्री हैं उनको हम मदद दे पाएं और उनको धाड़स बना पाएं कि आप सुरक्षित हैं, आप पर कहीं किसी तरह का कोई हमला नहीं होगा और न ही कोई किसी तरह की लूटपाट होगी।
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस के सैनी से, आप सेवानिवृत्त महानिरीक्षक हैं रेलवे सुरक्षा बल के। डॉक्टर सैनी जी, उस घटना से जो आपने अभी बताई, क्या सीखा आपने?
0: देखिए, सबसे पहली बात तो संयम रखने की बात होती है। यात्री यात्रा कर रहा है और वो कोई उच्छृंखलता करता है तो एस्कॉर्ट कर रहे सुरक्षा बलों को भी थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग होते हैं शस्त्रों के साथ तैनात होते हैं और उच्छृंखल करने वाले स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं या डेली पैसेंजर्स भी हो सकते हैं
1: जी
0: या यात्री के वेश में कोई अपराधी भी हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो बोनाफाइड पैसेंजर ही है, कहीं अपराधी हैं तो अपराधी के साथ आप स्वतंत्र है एक्शन लेने के लिए,
1: जी
0: लेकिन यात्री के साथ आपको अगर वो यात्री बदतमीजी भी करता है तो हमें अपने आप को थोड़ा संयम रखना पड़ेगा कि क्या कारण है बदतमीजी करने का, उसका गुस्सा शांत करने का प्रयास करें, न कि बल प्रयोग करें।
1: डॉक्टर सैनी, अभी आपने संयम की बात की, संयमित रहने से जीवन में क्या बेहतर हो सकता है?
0: देखिए, ये तो बहुत ही विराट विषय आ गया, संयम से रहना और संतोष से रहना, दोनों ही अलग-अलग चीजें हैं। संतोष मन की भावना है कि हमें एक्युमुलेशन नहीं करना है, ज्यादा संग्राहक नहीं बनना है, बल्कि जो कुछ हम अगर यहाँ पर आए तो गांधी जी की तरह ट्रस्टीशिप के रूप में काम करना है कि एक समय अब हमारे पास पर्याप्त धन हो गया तो वो धन जनता का मान करके जनता के कल्याणकारी कार्यों में करें, जैसे कंपनियों को आजकल CSR के रूप में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। संयमित रहने का मतलब ये है कि हमारे पास वेपन है, हमारे पास हथियार है, वी आर हैविंग लाइसेंस टू किल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस शस्त्र का प्रयोग निरपराध लोगों के लिए उनके ऊपर करें या कहीं पर अपनी दबंगाई प्रदर्शित करने के लिए करें। संयमित आप रहेंगे तो आप जनता के रक्षक होंगे और आपसे गलती भी नहीं होगी।
1: डॉक्टर सैनी, हमारे कार्यक्रम की रवायत है कि जो मेहमान अनुभव कार्यक्रम में आते हैं उनको हम उनकी पसंद का गीत भी सुनवाते हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: मैंने शुरू से ही एक गीत को सुना और वो मेरे लिए काफी जबरदस्त अभिप्रेरक के रूप में भी काम किया। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के।

0: बहुत ही शानदार गीत आपकी पसंद का, क्या कोई खास वजह है इस गीत को पसंद करने के पीछे?
1: देखिए, जब हम लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं ना, तो बीच बीच में कई बार मन निराश हो जाता है, कई बार एक अटेम्प्ट में सफलता हाथ नहीं लगती है दूसरे के लिए, और प्रतियोगिता परीक्षाएं ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, यानी कि आपने रिटेन परीक्षा पास कर ली, इंटरव्यू तक पहुंचे, इंटरव्यू में नहीं सफल हुए तो वापस नीचे गिर करके और फिर ऐसे शुरुआत करनी पड़ती है, प्रीलिम्स की एग्जाम देनी पड़ती है। तो ऐसे में मन बेहद निराश भी हो जाता है। तो मेरे मित्रों को मैं यही कहना चाहता हूं कि उस निराशा को आप अपने आप पर हावी ना होने दें। हर असफलता आने वाली सफलता का पक्का प्रमाण होती है, बशर्ते कि आप थके नहीं और अपनी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करें और अपने आप में स्वाभिमान के साथ साथ ही अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखें, तो आप जरूर सफल होंगे। ये गीत मेरे लिए बीच बीच में जब कभी मैं थक जाता था तो मुझे ऐसा देता था कि जैसे मुझे दिलासा दे रहा है आगे के पथ पर
0: जी।
1: इसीलिए मुझे ये गीत बेहद प्रिय है। मेरी तरह बहुत सारे लोगों को इसने अभिप्रेरित किया होगा अपने जीवन में।
0: रेलवे सुरक्षा सेवा जब आपने ज्वाइन की थी और जब आप सेवानिवृत्त हो रहे थे, क्या परिवर्तन आ चुके थे रेलवे में हमारी?
1: देखिए, उस समय तकनीकी का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं था, बहुत ज्यादा। अभी तो वर्तमान में तो रेल ने काफी जगहों को कवर किया है, रेलवे ट्रैक बिछ गए हैं, नई नई जगहों को जोड़ा जा रहा है, पूर्वोत्तर के क्षेत्र को जोड़ दिया है, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी तक रेलवे पहुंच गई है, बारामूला श्रीनगर, आप कटरा वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन से जा सकते हैं, जहां पर आप चेनाब ब्रिज को भी देखते हैं जो विश्व के ऊंचे ब्रिजों में से एक है। तो ये जो दुरूह क्षेत्रों में रेलवे ने अपनी पहचान बनाई है ट्रैक बिछा करके और यात्रियों की सुविधा के लिए, ये अभूतपूर्व है। दूसरा यूनी गेज जो हुआ है, यानी एक ही गेज ब्रॉड गेज पर रेल चल रही है, और तीसरा इलेक्ट्रिफिकेशन, जिससे कि डीजल से जो प्रदूषण होता था वो प्रदूषण दूर हुआ है, और यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी बहुत सारे काम हैं। अभी 502 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन करके नवीनीकरण किया जा रहा है, वहां पर बहुत सारी सुविधाएं यात्रियों के लिए दी जाएगी। तो भारत सरकार रेल मंत्रालय के माध्यम से अभूतपूर्व काम कर रही है।
0: डॉक्टर एस के सैनी जी, रेलवे में नवीनतम टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, चाहे सर्विलांस के लिए हो, चाहे एक्सीडेंट रोकने के लिए हो, ये कितना महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, एक्सीडेंट रोकने के लिए तो एक कवच जो प्रणाली है वो शुरुआत में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में गुवाहाटी की तरफ से शुरू की गई थी, उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, अब उसको पूरे भारत में ही लागू कर दिया गया और वो सभी इंजनों में फिट रहती है। इसमें अगर सामने वाले ट्रैक से कोई इंजन या आ रहा है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएंगे।
0: सर्विलांस को लेकर क्या कहेंगे?
1: सर्विलांस तो बहुत ही अद्भुत चीज है। पहले कभी चोरी हो जाती थी तो हमें उस चोर को पकड़ने में बहुत पसीने आ जाते थे, लेकिन अभी तो दो तरीकों से ये फायदेमंद हो रही है। एक तो सीसीटीवी जो स्टेशनों पर लगे हुए हैं, अगर कोई किसी का सामान उठाकर ले जाता है तो हम लोग ढूंढ लेते हैं। दूसरा क्या है कि अभी सर्विलेंस में एक और एडवांस सिस्टम आ गया है, फेस रिकॉग्निशन का, यानी कोई हमारा चोर पहले से अपराधी है और अगर वो दोबारा स्टेशन पर आ गया है तो मेरा कैमरा उसको पहचान लेगा और हम तुरंत उसको जाकर के दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे।
0: जी, तो यात्री अगर छोटी से छोटी चीज गुम हो जाती तो शिकायत उसकी दर्ज कराएं।
1: बिल्कुल, शिकायत दर्ज कराएं, और इवन स्टेशन पर ट्रेनों में भी अगर छूट जाती है तो हमारे कोच कंडक्टर से लेकर कोच अटेंडेंट तक बेहद ईमानदार हैं, वे वापस यात्रियों को पहुंचाते हैं, रेलवे सुरक्षा बल को सूचना करते हैं और ऑपरेशन अमानत के माध्यम से हम वो चीज उस यात्री के पास पहुंचाते हैं या यात्री को बुला लेते हैं। यात्री के पर्स, यात्री के मोबाइल, महिला यात्रियों के बैग, सूट केसेस वगैरह तक छूल जाते हैं तो उनको हम वापस ऑपरेशन अमानत के तहत उनको उन तक पहुंचाते हैं।
0: जी, हमारा भी एक मोबाइल इसी तरह हमें मिला है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने बताया।
0: जी,
1: ये रेलवे सुरक्षा बल के लिए बेहद संतोष और गौरव का विषय है।
0: आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे?
1: मैं पहले लेक्चरर रहा हूँ पुलिस सर्विसेज में, और रेलवे सुरक्षा बल में आने से पहले तो मेरा लिखने पढ़ने का काम रहा है। मैं पढ़ता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, तो कुछ कुछ लिखने की भी मन में बात आती है, और कई बार सिस्टम के प्रति जब बेहद आक्रोशित हो जाते हैं तो सिस्टम से आप सिर नहीं भिड़ा सकते हैं, तो बेहतर है कि अपनी कलम के माध्यम से उस आक्रोश को व्यक्त किया जाए। पहली पुस्तक तो मेरी राजस्थान के आदिवासियों पर थी, दूसरी पुस्तक थी नरक में ठेला ठेली, एक पूरा व्यंग्यात्मक उपन्यास था जिसमें कि पुलिस प्रशासन में वैसे ही पोस्टिंग मतलब नरक जैसी स्थितियां हैं ड्यूटीज को लेकर के, कब ड्यूटी से वापस जाएंगे, 12 घंटे की भी ड्यूटी हो सकती है, और जब दिवाली होली पर आप लोग एंजॉय करते रहते हैं तो 18 घंटे की भी ड्यूटी हो सकती है। तो एक तो ड्यूटी को लेके इस तरह की गंभीर स्थितियां परिवार को नहीं देख पाते हैं, और उस पर जो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जो उठापटक होती है, जो राजनीति होती है, प्रदेशवाद होता है, उस पर मैंने वो पूरा व्यंग्यात्मक उपन्यास लिखा था
0: जी,
1: जिसकी काफी सराहना भी हुई, खासतौर पर मेरे कांस्टेबलों ने उसको बहुत सराहा।
0: आपने कहा कि कुछ समय 18-18 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है, इस दौरान आप अपने आप को कैसे संभालते थे?
1: कई बार हम लोगों को कंट्रोल रूम में बैठ करके काम करना पड़ता है, कुंभ के दौरान, बड़े मेलों के दौरान, गंगा सागर मेले के दौरान, और कई बार जब दुर्घटनाएं हो जाती है तो उस समय भी लगातार बैठना पड़ता है। तो कोशिश यही रहती है हम लोगों की कि हम लोग जिस ड्यूटी के लिए आए हैं उस समय खाना पीना हम सब छोड़ देते हैं, चाय और पानी पर ही निर्भर रहते हैं। हमारा पहला फोकस रहता है कि वो जो समस्या है उसका हल करें, या जितने समय मेरी ड्यूटी जिस काम के लिए मुझे लगाया गया उस काम को अच्छे से अंजाम दूं। सोना और खाना पीना बाद में होता रहेगा, एक वीक बाद भी हो सकता है
0: जी,
1: उसके बिना इंसान मरेगा नहीं। लेकिन जो हजारों यात्री अगर मेरे इलाहाबाद स्टेशन पर कुंभ के दौरान आ जा रहे हैं तो उनको सकुशल गंगा स्नान करवाना और वापस ट्रेनें पकड़वा करके और उनके गंतव्य तक पहुंचाना, वो पहली प्रायोरिटी रहती,
0: जिम्मेदारी सर्वो,
1: वो जिम्मेदारी रहती।
0: आज का युवा भी बहुत ज्यादा तनाव में रहता है, वो कैसे से हैंडल करे? आपका लंबा अनुभव है, तमाम इस तरह की घटनाएं आरपीएफ में सेवा के दौरान आपके सामने आती होंगी।
1: आज का युवा बहुत सारी नावों में एक साथ पैर रख करके चल रहा है, वो चाहता है कि जो 10 साल बाद एंजॉयमेंट है वो भी आज कर लिया जाए, मित्रों के साथ घूम भी लिया जाए, उसकी नौकरी भी लग जाए और उसके पास बहुत सारा पैसा भी हो ताकि बड़ी अच्छी बाइकों पर घूमे, उसके कुछ मित्रगण भी हों जिनके साथ वो घूम फिर सके। लेकिन मित्रों, ये समय है अपने कैरियर को बनाने का, चाहे वो व्यवसाय का हो चाहे अपनी नौकरी का हो। अगर आपने 5 साल लग करके अपना कैरियर बना लिया तो आगे के 50 साल आपके लिए खुशनुमा और बेहतरीन होंगे, और अगर आपने ये 5 साल गुजार लिए तो फिर आगे के 5 साल और संघर्ष में आप बिताएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम लोग अभी से ही संघर्ष कर लें, एंजॉयमेंट तो बाद में भी होता रहेगा। आप अपने आप को एक अपना जो भी लक्ष्य आपने तय किया है उस लक्ष्य में लग जाएं पूरे अपने, एक तरह से जैसे सैनिक एक तैयारी करके और फ्रंट में जाता है, तो मुझे विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी।
0: सेवानिवृत्त के बाद आपका जो वक्त है कैसे बिता रहे हैं उसे?
1: मैं कई सारे पुलिस आरपीएफ और यूनिवर्सिटीज के सेंटर्स में जाता हूं और वहां मेरे अपने स्टूडेंट्स को और मेरे कांस्टेबल्स को तनाव प्रबंधन की शिक्षाएं देता रहता हूं, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाता हूं और स्टूडेंट्स को आगे के जीवन के लिए मोटिवेट करता हूं।
0: परिवार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके?
1: मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, बड़ी वाली बेटी की शादी हो चुकी है और बाकी दोनों बच्चे एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास कर रहे हैं।
0: उस समय जब सारे लोग त्योहार मना रहे होते थे हमें टाइम ही नहीं मिलता था, तो वो लोग किस तरह से रिएक्ट करते थे?
1: बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और उनके परिवार हैं, उनको हमेशा ये शिकायत तो रहती है कि पापा लोग, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे थानाध्यक्ष हो, चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो, चाहे महानिरीक्षक हो, कि पापा समय नहीं दे पाते, जब हमें जरूरत होती है उस समय नहीं दे पाते हैं। तो ये शिकायत रहती है और इस शिकायत के साथ ही हमें जीना पड़ता है
0: जी।
1: उसका कोई क्षतिपूरक उपाय नहीं है कि उनको हम पैसे देके और उनको खुश रख लें, नहीं, वो हमारे से समय चाहते हैं, हमारे से मार्गदर्शन चाहते हैं, तो वो हमें देना पड़ता है जब भी वक्त निकले।
0: अभी आपने मार्गदर्शन की बात की, आप लेक्चरर रहे, उसके बाद रेलवे सुरक्षा सेवा में आप आए। हमारे जो श्रोता इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, युवा जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, किस तरह से वो जुड़े हैं रेलवे सुरक्षा बल से, और अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं तो किस तरह से बने?
1: सबको जानकारी है कि किस एग्जाम्स के लिए, किस नौकरी के लिए कौन सा एग्जाम देना है। आप जानते हैं लेक्चरशिप के लिए जो है यूजीसी की नेट की एग्जामिनेशन देनी है, आपको पीएचडी के रूप में अपने आप को रजिस्टर कराना है, स्कॉलर के रूप में उसे कंप्लीट करना है। और रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, रेलवे सुरक्षा बल की बात करूं तो उसके एंट्री के 3 लेवल है। एक कांस्टेबलरी लेवल का एग्जामिनेशन होता है ऑल इंडिया बेसिस पर, दूसरा उपनिरीक्षक का होता है, और तीसरे हम लोग जो डायरेक्ट ऑफिसर्स हैं IRPFS वाले, तो वो सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आते हैं जो देश में साल में एक बार UPSC आयोजित करती है। तो इनके माध्यम से आप अपनी जो भी सामर्थ्य है और जो आपकी शिक्षा है उसके मुताबिक आप अपना कैरियर चुन सकते हैं।
0: बहुत से युवा तैयारी तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डर रहता है सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कई प्रयत्नों के बाद प्रयत्न करना ही छोड़ देते हैं।
1: मेरा यह मानना है कि वो तैयारी नहीं करते, वो आधे अधूरे मन से तैयारी करते हैं। कई सारे तो अपने माता पिता के दबाव की वजह से फॉर्म भर देते हैं, वो जाना ही नहीं चाहते उन जगहों पर जहाँ के वो लोग माता पिता चाहते हैं। तो मेरा माता पिता से भी आग्रह है कि वो अपने बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षाओं का घोड़ा ना बनाएं, उनकी जो इच्छा है उसी फील्ड में उनको भेजें, तो तब जाके वो मन लगा के उधर काम करेंगे। अब एक व्यक्ति, एक लड़का, एक बच्चा जो है वो 12th पास कर लिया, वो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता है, तो आप क्यों उनको नीट की तरफ फाइट करवाते हैं मेडिकल के लिए? वो अगर एक अच्छा पेंटर बनना चाहता है तो उसको आर्ट फैकल्टी में दिलवाई किसी अच्छे विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, जहाँ उसकी कला निखरे।
0: और जो तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से तैयारी करें ताकि वो सफल हो जाए, आपकी तरह एक बेहतरीन अधिकारी बन के सेवानिवृत्त हो?
1: मेरा यह मानना है कि उनको तीन ही काम करने पड़ेंगे, पढ़ना, खाना और सोना। चौथे काम यानी होली, दिवाली और शादी समारोह में और जन्मदिन के समारोह में अगर वो व्यस्त हो गए और अपने आप को सबके लिए सुलभ कर दिया, तब तो फिर ये समाज आपकी ऊर्जा को ले लेगा। आप अपनी ऊर्जा को तीन ही जगह फोकस करें, पढ़ें, थक जाए तो रेस्ट करें, भूख लगे तो खाना खा लें। एक साल के लिए होली, दिवाली,

0: बाहर समाज, नातेदार, रिश्तेदार, यूं समझिए कि आप एक वन में चले गए हैं, एक कमरे में, उसी को वन समझ लीजिए और आपकी किताबें आपके पास रहे, आपका मोबाइल रहे जिसमें कि आप फालतू फंड की चीजें ना देख करके अपने काम की चीजें देखें, क्योंकि मोबाइल आज के युग की दुधारी तलवार है जो आपके लिए उपयोगी भी है और आपका समय भी नष्ट कर सकता है। तो प्रयास करें, सफल जरूर होंगे।
1: कोई महत्वपूर्ण संदेश जो हमारे श्रोताओं के लिए या युवा साथियों को देना चाहें?
0: रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे, मिलेगी सफलता बाहर की।
1: डॉक्टर एस के सैनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे अनुभव कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने विचार हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आपने सुना डॉक्टर एस के सैनी, सेवानिवृत्त महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल से रमेश चंद्रा की बातचीत। परिकल्पना थी मंजुला नेगी की। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देहरादून जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए ने डोईवाला क्षेत्र में एक कथित अनधिकृत धार्मिक परिसर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा। जानकारी के अनुसार रानी पोखरी थाना क्षेत्र के कंडोगल कुंडियाला गांव स्थित एक 2 मंजिला भवन के संबंध में निर्माण मानकों और भूमि उपयोग को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थी। जांच में पाया गया कि लगभग 800 वर्ग फुट क्षेत्रफल में निर्मित भवन का स्वीकृत नक्शा एमडीडीए से अनुमोदित नहीं था, साथ ही भवन के उपयोग को लेकर भी आपत्तियां सामने आई थी। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बच्चों के भविष्य और उनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की भूमिका पर चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आज का समय बहुत ही सावधानी और ध्यान रखने का समय है। वर्तमान दौर में तकनीक जितनी उपयोगी है उतनी ही खतरनाक भी साबित हो रही है। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के अनियंत्रित उपयोग के माध्यम से नौनिहाल बहुत तेजी से गलत दिशा की ओर भटक रहे हैं, जिसका फायदा समाज के असामाजिक और आपराधिक तत्व उठा रहे हैं। राज्य में सहकारिता आधारित औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ यूसीएफ आगे आया है। यूसीएफ ने लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी रानीखेत स्थित कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री सीडीएफ और हल्दोचौड़ स्थित उत्तराखंड स्टेट मेडिसिन और पैरामेडिकल्स लिमिटेड यूएमपीएल को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। दोनों इकाइयों में आधुनिक मशीनरी, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और उन्नत उत्पादन प्रणाली स्थापित कर आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण शुरू किया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से वर्षों से बंद पड़ी सहकारी औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित कर उन्हें आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मॉनसून सीजन को देखते हुए आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक लेते हुए सभी संबंधित विभागों को माइक्रो लेवल प्लान तैयार कर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम और सभी नगर निकायों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्थित नदी नालों और जल निकासी तंत्र की युद्ध स्तर पर सफाई के लिए अभियान चलाते हुए 7 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक एक मॉडल पॉलिटेक्निक संस्थान विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कई छात्रावासों में आवश्यक मरम्मत और नवीकरणीय कार्य लंबित होने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा में इस बार हेली सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सहूलियत साबित हो रही हैं। यात्रा शुरू होने के महज 41 दिनों के भीतर 50,000 से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच सुरक्षा और सुगम संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे के अनुसार मौसम खराब होने पर भी यात्रियों को सुरक्षा को देखते हुए उड़ानों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। आगामी 22 जून तक की सभी टिकटों की बुकिंग हो चुकी है, जिसमें श्रद्धालुओं के उत्साह और यात्रा की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

0: निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण को सफल और प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम सभागार में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों, सुपरवाइजरों और सहायक कार्मिकों के लिए दूसरे चरण का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना रहा, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज न हो सके। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10:35 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विविध कलाकारों की आवाज में अवधी लोकगीत।

nadia

छाड़ देनी लेश अब नालू भैले परदेश होगी देसिया गौना करा।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: स्वप्न मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं लोक संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों की आवाज में रोहेलखंडी लोकगीत।

0: कार्यक्रम चल रहा था लोक संगीत का, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे विविध कलाकारों की आवाज में रोहिलखंडी लोकगीत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।
1: FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून, और अब हमारे श्रोता सुनेंगे उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

0: व्हाट्सएप फरमाए सुन रहे सभी श्रोताओं को सीमा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर है आपकी पसंद के गीतों के साथ और आपके मैसेजेस के साथ। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं इस गीत के साथ।
1: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे।
2: एक बात बताइए,
3: क्या
2: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
3: सपनों में देखा होगा।
2: जी हाँ, मैं सपने बहुत देखा करता हूं।
0: श्रोताओं, आज महान कलाकार राज कपूर जी की पुण्यतिथि है, उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

श्रोताओं, आ फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश को। सुनना चाहा था राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा ने, राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से। साथ ही हमें मैसेज किया हमारे श्रोता हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा। खरगोन सनावद मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं मास्टर अशोक वर्मा, अनुज अर्चना वर्मा, आयुषी रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार वोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब लड्डू, ये हमारे श्रोता हैं। और आप हैं समस्तीपुर नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन, अमन पाराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित, गणेश भारद्वाज बिलजवान, दरबान सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह नेगी, सुरेंद्र मुंडेपी, कुलदीप रावत और लियाकत बालावाल देहरादून उत्तराखंड के हमारे श्रोता मैसेज कर रहे हैं। बैनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना भारती, ओमवती, खनक, शगुन सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथप सिंह है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली यूपी से। उत्तराखंड चमोली गढ़वाल के हमारे श्रोता हैं आरती निर्मोही, ज्योति मिलन, कृष्णा और जय निर्मोही, वनस्थली पुरम हैदराबाद तेलंगाना से दोरनाला बालाजी, श्रीमती रेणुका बद्री, हरणी लोकेश और साई कृपा, झगड़ी यमुनानगर से हैं रणधीर सिंह बांगड़, गुरमेजो, गौरव परवीन, युगम और वीरेन, आकोट से हैं विनायक वेंडे, श्रीमती मंगला, विजय शुभ, शुभम पवनजरी और के संजीव डाबीराव। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से ये गीत।

0: बंदर भी आया, छुन छुन करती आई चिड़िया।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरा नाम जोकर फिल्म से। सुनना चाहा है तेलंगाना राज कामारेड्डी भवानीपेट गांव से मोहम्मद इनायतुल्लाह, इशरतुल्लाह और इबादतुल्लाह ने। साथ ही गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर वैशाली और धनंजय कटनकर। सरोज चौक अमरावती के श्रोता हैं कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। ये मैसेज लिख रहे हैं गांव चौहलदा बागपत से संजय नमन और अपार ढेंगिया। जवाहरनगर के हमारे श्रोता हैं दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। अगला मैसेज लिखने वाले श्रोता हैं आप हैं संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कुश और पूरा नामदेव परिवार। श्रोता है हमारे पोस्ट सोरई, जिला ललितपुर, यूपी के। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, चैतन्य, रचिता और आशीष राजा। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और रिधान खुराना। गोविंदपुर सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान, समायरा आजमीन और गुड़िया। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना भगत। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशाज, शबिस्ता, मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यस मंसूरी हैं मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब मुंगी सापुर से। और आप लिख रहे हैं हमारे श्रोता ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार। कांति निकेतन राजनगर मधुबनी के श्रोता हैं रुद्र प्रताप गुप्ता, रिद्धि सिद्धि, कोमल गुप्ता, शारदा, कुशेश्वर कांति गुप्ता और ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश कुमार गुप्ता, रानी नीलम गुप्ता, रश्मि कुमकुम और रूपा इलाहाबादी। हैदराबाद से हैं बी एन रेड्डी नगर के हमारे श्रोता मोनिका बालू और विनय कुमार। बकानी खुर्द आंवली कला भवानी मंडी झालावाड़ से हमारे श्रोता हैं। ये हमारे श्रोता नाम है इनका राजेश कुमार मेहरा, नंद किशोर, विनोद, अर्जुन, दुर्गा शंकर, सिकंदर, राहुल, चंदू, देवराज, लक्ष्य और इनके पूरे गांव के ग्रामवासी। पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल, शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी और पूरा जिंदल परिवार। मोहम्मद सईद अब्बासी ये नाम शामिल हो चुका है। और हमारे श्रोता हैं अगला मैसेज लिखने वाले झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया। और अगला मैसेज लिखने वाले ये श्रोता हैं सिवहारा बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म मेरा नाम जोकर से।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। सुनना चाहा है वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी कुलदीप कंवल ने। साथ ही हमारे श्रोता हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया शोएब खान, और सिंधौली मीरगंज बरेली के श्रोता हैं जीशान वारसी। पांडर कवड़ा से अनिल बुराड़े, उषा अनुश्री और धनश्री बुराड़े हैं। बल्लार शाह के हमारे श्रोता हैं सूरज प्राची और एकलव्य। करणवीर हाउस भूचो के हमारे बटिंडा पंजाब के श्रोता हैं परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। गांव हांडीखेड़ा सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंद्रा सार्थक और यश वशिष्ठ। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा।

दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब के श्रोता हैं जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल ईशा और पूजा परिहार, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हमारे श्रोता हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी, छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी रॉय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल रॉय, जलालाबाद बेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। आइए श्रोताओं आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है, आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। अगली फरमाइश हमारे श्रोताओं ने भेजी है सदर बाजार मारबार बिलाड़ा राजस्थान से। आप हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार के श्रोता हैं नसीम मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद और फैजान मोहम्मद। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला के श्रोता हैं अमित, शकुन जंघेल, आरुषि, औशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। डी अशोक कुम्भार, अविका, जीविका, सानू कुम्भार और अर्चना ये श्रोता हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। कोयते बस्ती पुनावले से हैं अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और साइसा सोनवने। और अगला मैसेज हमें लिख रहे हैं कुंभार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष चंदन और पांडुरंग कुंभार। और अगला मैसेज हमें मिला है, आप श्रोता है उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। पाकुड़ झारखंड से बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना और गुड्डी भगत। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। बाबू कुटीर रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान और डुग्गू। छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या, ये हैं नागर कोहरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवीद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनम और यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से हैं मुवीन अब्बासी और इशरत परवीन। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान ये श्रोता हैं हमारे हनुमानगढ़ राजस्थान से। श्रोताओं आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म असली नकली से।

एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं, हमारे श्रोता हैं गणेशपुर गंज डुडवारा एटा यूपी से एम फारूक शेख, शमा परवीन, सायमा फारूक, सरफराज, गुलफरा शेख और बेबी मुस्कान। मोहल्ला हलवाया शेरकुट बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया साजदा रानी और हिना कौसर। गांव उगाला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनका पूरा परिवार। और अगला मैसेज हमें लिखा है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया ने। रेलवे रोड गंज डुडवारा से हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनावर, नजमा, बेगम नाज और सरिता गौतम। और ये हमारे श्रोता हैं तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंश श्रीवास, करुणा, आयुष बेबी, आयुषी और विवेक श्रीवास, किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईरा सपकाल और विशाल सपकाल हैं शास्त्री नगर बीड शहर से। आप लिख रहे हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, मेघा राशि, कीर्ति भारती और अनुराग मोहन किशनगंज बिहार से। सवर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह हैं लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से। सतीश मिगलानी, सीमा और विवान मिगलानी हैं मलोट पंजाब से। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम।

रियाज, रियफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड से। गांधी रोड गंज डुडवारा से मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद जावेद, फातिमा गाजी, मुन्ने सलमानी और एम के मोहम्मदी। प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू, कुमार विमल, ये श्रोता हैं पप्पू श्रोता क्लब फारविसगंज बिहार से। नवरतन हाटा, बाणी पूर्णिया बिहार से है ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव, देवांशु और डब्लू जी। फुटपाक तेलंगाना के हमारे श्रोता हैं भवानी वेंकटेश, मास्टर मिथुन और महादेव। आप श्रोता लिख रहे हैं नया पारा भिराई बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोजबाई और ईशर राज पप्पू ठाकुर। शांति निवास लेह गांव अमरावती महाराष्ट्र से हैं दीपक कुरहाड़े, वंदना आशीष कुरहाड़े और कल्पना कुरहाड़े। अनवर साबरी, शन्नो मुदस्सिर साबरी, मुजक्किब साबरी और जरीफ अंसारी हैं दाऊदसराय सहारनपुर यूपी से। और हमारे श्रोता हैं ककराली पंचकुला से वेद प्रकाश प्रजापति, लक्ष्य अंजल, नेहा अंजलि, गुरमीत कौर प्रजापति और इनके साथी। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म दो रास्ते से।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश के अंतर्गत अपनी पसंद के फिल्मी गीत। अगली फरमाइश हमें भेजी है करेली, जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, माहे नूर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, शमा अंसारी ने। और आप हैं हमारे श्रोता खैल बाजार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरेश लक्ष मल्होत्रा और कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कुनिका कोयल और डुगू सिक्का, मुरादाबाद ग्राम दुलापुर यूपी से है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, दतरेंगी से हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, राजेश वर्मा, मंजू, निशांत, कौशिकी वर्मा, दीपाली, सचिन युवान और आर के राजा हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से, देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से सुनील चावला, मीना साक्षी चोपड़ा, दिनेश, तनु, नानू, राधिका रानी गुप्ता, अंशुल, स्मिता रानी गुप्ता, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आर एस आहूजा, रजत आहूजा, सोनिया, तनिषा आहूजा और आप हमारे श्रोता हैं सीमा द्वार से। इनके साथ इनके परिवार के और भी सदस्य हैं। गांव डाक निम्नाबाद जिंद हरियाणा।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तीसरी कसम का ये गाना। सुना चाहा है बन बघेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश शारवा, आशा नीरज, नीलेश अंजलि और रोशनी शारवा ने। और साथ ही हमें मैसेज कर रहे हैं हमारे श्रोता हैं, आप हमें लिख रहे हैं, ये हमारे श्रोता हैं ज्योति मक्कड़, संदीप मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकलम, नफीसा परवीन, और आप हैं धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार और क्रिस्टी पटवा, अंबागढ़ चौकी से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर, ये श्रोता हैं हमारे, कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, और आप श्रोता हैं हमारे विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाल, नवाजी शेख, दानी शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव हैं गंज डुडवारा यूपी से, करताल हैदराबाद तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, माहेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विग्नेश, एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हौदा गुमला झारखंड से हैं, नांदेड़ येतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। अगला मैसेज लिख रहे हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज आरती, आकर्षण और जयश्री। और अगला मैसेज हमें मिला है करीमनगर से लक्ष्मी नारायणा, विजया अभिनय और साई किरण का। कैलाश फूलमाली, दीपक समर और वैदिका फूलमाली हैं अहमदपुर खैगांव खंडवा से। श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तीसरी कसम का ये गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में कुछ नाम शामिल कर रहे हैं। हमारे ये श्रोता है जीएमएस रोड देहरादून से राजेश्वरी सागर, और आप हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा अनु खान, अदनान फैजान आबाद खान, ताबिश खान है राही नगरगंज डुडवारा से, और बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तहमूर और शामिर खान अजलाल है मोताला बाजार महाराष्ट्र से। श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का ये व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए सीमा सक्सेना को। नमस्कार। FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय दोपहर के 12 बजने वाले हैं। बस कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: मैं हमेशा कहती हूँ

0: αν δεις στόση για το οτσί σκοπούλνανε η ζαϊ άτσι. बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं. अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए.
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई. न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी. सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले से भेंट की. सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की. डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की. श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है. अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है. भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं. म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा. दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया. प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा.
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया. कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है.
1: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है. इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है. इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है. ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा. CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है. छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा. मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है. तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स. President Draupadi Murmu is addressing the tribal beneficiaries of the Ministry of Tribal Affairs flagship scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan. We now go over live to the President's address.
0: कुछ ना करे क्या, कैसे करे, कैसे आगे जाए. लेकिन

0: FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप रविंद्र सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। आयुक्त गढ़वाल मंडल आनंद स्वरूप ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं और मॉनसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की।

0: उन्होंने जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से यात्रा के दौरान सामने आ रही समस्याओं, चुनौतियों और उनके निराकरण के लिए सुझाव भी प्राप्त किए। देहरादून जिला प्रशासन और एमडीडीए ने डोईवाला क्षेत्र में एक कथित अनाधिकृत धार्मिक परिसर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें प्रदेश को 9 डिप्टी कलेक्टर मिले हैं। आयोग की ओर से परीक्षा परिणाम 1 दिसंबर 2025 को घोषित संशोधित मुख्य परीक्षा परिणाम के क्रम में 27 मार्च से 21 अप्रैल 2026 तक आयोजित साक्षात्कार, शारीरिक मापदंड परीक्षण और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर घोषित किया गया। राज्य में सहकारिता आधारित औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ यूसीएफ आगे आया है। यूसीएफ ने लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी रानीखेत स्थित कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री सीडीएफ और हल्दूचौड़ स्थित उत्तराखंड स्टेट मेडिसिन एंड पैरामेडिकल्स लिमिटेड यूएमपीएल को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। इन्फेंट्री बटालियन टीए इको कुमाऊं द्वारा आज से 5 जून तक पिथौरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विद्यालयी छात्रों के लिए यूनिट नर्सरी भ्रमण, पौधशाला तकनीकों और वर्मी कंपोस्टिंग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देहरादून जिला प्रशासन द्वारा लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है और केदारनाथ धाम की यात्रा में इस बार हेली सेवाएं श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सहूलियत साबित हो रही हैं। यात्रा शुरू होने के महज 41 दिनों के भीतर 50,000 से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए हुए कुछ गीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए हुए गीत कार्यक्रम सुगम संगीत में। इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब हमारी बहनों के लिए प्रस्तुत है उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: नमस्कार बहनों, मैं सुमन बगासी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। बहनों, जन्म लेते ही हमारे जीवन में अनेक रिश्ते हमसे जुड़ जाते हैं और परिवार में जब हम एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं को समझकर और एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे का सम्मान करने से किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। पर बहनों, आजकल कुछ लोगों ने अपने रिश्तों का दायरा इतना सीमित कर लिया है कि सिर्फ खुद से ही मतलब है, दूसरों की भावनाओं को समझने का तो मानो वक्त ही नहीं है। बहनों, हर रिश्ते में थोड़ी नोकझोंक होती ही रहती है, पर छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर बैठ जाना बिल्कुल गलत है। कभी कभी छोटे छोटे मनमुटाव से ही रिश्तों में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगती हैं, दूरी आने लगती हैं। तो जरूरी है कि हर मतभेद को जितनी जल्दी हो आपस में बात करके सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि हम कब रिश्तों से दूर हो जाते हैं और अकेले रह जाते हैं। बहनों, घर परिवार में कभी किसी की बात अगर कोई गलत लगे तो पीठ पीछे उसकी बातें बनाने से कितना अच्छा हो कि आप सामने से उसे बताएं कि हमें आपकी ये बात सही नहीं लगी या आपका काम करने का ये तरीका हमें पसंद नहीं आया। बहनों, अपनी बात को कहने का तरीका ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसे व्यवहार की उम्मीद आप अपने लिए दूसरों से करते हैं। और बहनों, जहां अपनापन होता है ना, वहां एक दूसरे की राय और मशवरे पर भी ध्यान दिया जाता है। हाँ, कभी कभी हम किसी के प्रति ऐसी सोच बना लेते हैं कि भाई ये तो ऐसा ही है, इसका काम हमें पसंद नहीं, तो हमें उसकी हर बात चाहे वो सही भी हो गलत ही लगती है। मगर बहनों, हमारा मानना तो ये है कि बुरे लोगों को सिर्फ दूसरों में बुराई ही दिखती है और अच्छे लोगों को दूसरों में अच्छाइयां दिखाई देती हैं। बहनों, इंसान कोई भी हो परफेक्ट नहीं होता है, सभी की आदतें स्वभाव अलग अलग होता है और अगर हम दूसरों में बदलाव चाहते हैं तो पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। छोटा हो या बड़ा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। बहनों, कभी कभी हम गुस्से में एक दूसरे को इतना कुछ कह देते हैं कि जिसका पछतावा हमें बाद में होता है और जिसका भरपाई हम जीवन भर नहीं कर पाते। और कहते हैं ना कि शब्दों की चोट बहुत गहरी होती है, तो गुस्से में कभी भी ऐसा कुछ ना कहें जिसकी भरपाई आप ना कर पाएं। गुस्सा थोड़ी देर का होता है मगर रिश्तों को पल भर में ही दूर कर देता है, तोड़ देता है। गुस्से को खुद पर हावी ना होने दें, हर बात सोच समझ कर बोलें ताकि सामने वाले के सम्मान को ठेस ना पहुंचे और आपकी गरिमा भी बनी रहे। बहनों, रिश्तों में दिखावा नहीं होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए। रिश्तों में अहंकार भी नहीं होना चाहिए, रिश्तों में मैं नहीं हम की भावना होनी चाहिए। और रिश्तों की डोर बहनों इतनी नाजुक होती है, जिसे तोड़ना तो आसान है मगर जोड़ कर रखना बहुत मुश्किल है। तो अपने रिश्तों की कद्र कीजिए। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।
1: चिक बम बम बम चिक चिक

0: सुनील घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसी अवसर पर सुनते हैं भेंट वार्ताओं से संबंधित कार्यक्रम कितनी नई कितनी पुरानी।
3: कार्यक्रम में एक महिला हमसे जुड़ी हैं। चलिए करते हैं इनसे बातचीत, जानते हैं इनका परिचय। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम पूनम है।
3: पूनम जी, क्या करती हैं आप?
4: मैं एक हाउसवाइफ हूँ।
3: हाउसवाइफ हैं,

0: पूनम जी, घर के काम करते करते क्या आप रेडियो सुनने का शौक भी रखती है?
1: जी बहुत, रेडियो
0: बहुत सुनती हैं रेडियो?
1: सुने बिना तो काम ही नहीं चलता।
0: जी बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, रेडियो कब से सुन रही हैं आप?
1: मैं तो रेडियो बचपन से ही सुन रही हूँ अपने,
0: तो रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं आप?
1: सारे प्रोग्राम सुन लेती हूँ, जब ऑन करते जो प्रोग्राम है मैं सुन लेती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ खास है जैसे कि जो फरमाइश गीतों का आता
0: जी
1: है
0: जी जी
1: और जो उसमें बार बार हमें देश में जो हो रहा है जो न्यूज भी आ जाती है
0: जी
1: उसका भी पता चल जाता है रेडियो सुनने से, और भी जो भी कुछ नया हो रहा होता है वो भी सब पता चल जाता है, तो इसलिए रेडियो सुनना अच्छा लगता है।
0: जी। अच्छा पूनम जी, आपने कहा कि आप फरमाइशी गाने का प्रोग्राम सुनती हैं, तो किस तरह के गाने
1: जी
0: पसंद हैं आपको? अच्छा
1: मुझे तो पुराने गाने बहुत पसंद है।
0: पुराने गाने। अच्छा पूनम जी, जैसे आपने बताया कि आप रेडियो काफी समय से सुन रही हैं, तो आपको क्या
1: जी
0: लगता है कि आज के समय में और पहले के समय में क्या अंतर है?
1: पहले के जमाने में और अब के जमाने में तो रेडियो में बहुत अंतर आ गया है।
0: जी जी
1: पहले तो ऐसा होता था कि रेडियो के कहते हैं एक बहुत बड़ा साइज होता था, एक जगह रखा रहता था, हम उसे कहीं इधर उधर ले जा नहीं पाते थे,
0: जी
1: जहां उसे ऑन करा बस वहीं सुन पाते थे।
0: जी जी
1: और लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि हमारे मोबाइल में भी रेडियो है, कहीं भी रेडियो, आप कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, आप किसी भी टाइम पे किसी भी
0: जी
1: जगह आपका जब मन करे आप रेडियो सुन सकते हो, तो ये बहुत बड़ा अंतर आया है रेडियो में।
0: अच्छा पूनम जी, रेडियो से संबंधित कुछ खास अनुभव, कोई खास बात आप उनसे शेयर करना चाहेंगे?
1: हाँ, मेरे पापा जी को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, हमारी सुबह की शुरुआत ही रेडियो से होती थी, हम सुबह उठते थे, मेरे पिताजी सुबह उठते ही रेडियो ऑन कर देते थे, उसमें जो भी प्रोग्राम भजन कीर्तन जो भी आए हो हम पूरे दिन वो सुनते थे, तो मेरे पापा जी को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, तो उन्हें इतना पसंद था रेडियो सुनना, मतलब जब भी फ्री होते थे समझो उन्होंने रेडियो ऑन कर देते थे। और जब मेरे पापा जी 65+ के हुए तो जो मेरी दादी हैं
0: जी
1: तो उनको पता था कि मेरे पापा जी को रेडियो सुनना बहुत पसंद है, तो
0: हाँ।
1: उन्होंने मेरे पापा को गिफ्ट में रेडियो दिया था।
0: अच्छा, गिफ्ट में रेडियो दादी ने?
1: जी मेरी
0: ओ
1: दादी ने मेरे पापा को गिफ्ट में रेडियो दिया।
0: जी, इसी से पता चलता है रेडियो कितना इम्पोर्टेंट है। क्या कि आपकी दादी ने भी सोचा कि गिफ्ट में उन्हें रेडियो दिया जाए? जी
1: और एक और बात, और जो मेरे हस्बैंड है उनकी जो दादी है उन्हें भी
0: अच्छा।
1: रेडियो सुनना बहुत पसंद था, जो मेरे हस्बैंड बताते कि जब जब भी गांव जाते थे तो अपने दादी के पीछे पड़ जाते थे कि ये रेडियो मुझे चाहिए,
0: अरे
1: और उनसे
0: वाह।
1: मांगते रहते थे और वो देती ही थी, वो छुपा के रख देती थी कि नहीं
0: अच्छा।
1: कि ये दे जाएगी, तो मतलब तो जब भी वो गांव जाते थे छुट्टियों में वो हमेशा अपने दादी के पीछे पड़े रहते थे कि मुझे ये रेडियो दे दो, उनकी दादी देती नहीं थी, वो
0: मगर
1: आज भी
0: दादी
1: मुझे
0: के तो
1: बताते हैं।
0: मनोरंजन का साधन था ना ये।
1: हाँ, तो वो आज भी मुझे मेरे हस्बैंड बताते तो उन्हें हंसी आती है कि मेरी दादी छुपा के रख देती थी हमसे कि कहीं ये
0: कितना
1: बच्चे इधर उधर
0: इम्पोर्टेंट
1: ना कर
0: था
1: दे।
0: रेडियो, है ही ऐसा, हमारे अकेलेपन को दूर करता है रेडियो। जैसे हमारे साथ कोई नहीं है,
1: जी
0: मगर हमें ऐसा लगता है कि रेडियो में जो भी चल रहा है वो हमारे साथ ही है ना?
1: हाँ, ऐसा लगता है हमारे साथ साथ है, हमसे बातें कर रहे हैं,
0: जी
1: हमें कुछ बता रहे हैं, तो वो सुनते तो भी बहुत अच्छा लगता है।
0: जी तो पूनम जी, अपने रेडियो सुनने का शौक और आपके परिवार में रेडियो को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं, ऐसे ही रेडियो सुनती रहिए। हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।
0: हमारे साथ एक और महिला जुड़ी हैं, जान दें इनका नाम। आपका नाम क्या है?
1: दिव्या इस्तेमाल,
0: अच्छा दिव्या जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं एक हाउस वाइफ हूँ।
0: हाउस वाइफ हैं, घर में बिजी रहती हैं आप, इसके
1: हाँ
0: अलावा
1: जी,
0: कोई आपके शौक हैं?
1: गाने सुनने मुझे बहुत पसंद है। हाँ
0: गाने सुनने आपको पसंद है? अच्छा
1: जी, हाँ
0: दिव्या जी, आप रेडियो सुनती हैं?
1: जी, मैं रेडियो सुनती हूँ, मेरे इन लॉज को काफी शौक है रेडियो का, तो वो सुबह ही लगा देते हैं, तो उस वजह
0: अच्छा,
1: से हम भी सुन लेते हैं।
0: तो
1: जी
0: मतलब घर में सुबह ही जो शुरुआत है वो रेडियो से ही होती है, यानी कि, है ना?
1: जी हाँ जी, हाँ जी,
0: अच्छा दिव्या जी, आप आकाशवाणी देहरादून के कोई प्रोग्राम सुनती हैं क्या?
1: आकाशवाणी, हाँ जी, मैं दो प्रोग्राम सुनती हूँ,
0: हाँ जी
1: एक व्हाट्सएप फरमाइश और
0: बिल्कुल,
1: एक रेडियो रेडियो सखी।
0: रेडियो सखी। अच्छा मतलब
1: हाँ जी
0: गाने गाने सुनने का शौक है आपको।
1: जी गाने सुनने का शौक है मुझे, ये दोनों ही प्रोग्राम सुनना बहुत पसंद है।
0: अच्छा दिव्या जी, जैसे आप रेडियो सुनती हैं, तो
1: जी
0: ऐसा है कि जैसे कभी रेडियो ना चल रहा हो तो आप किस डिवाइस पे सुनती हैं वैसे रेडियो?
1: मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ।
0: अच्छा मोबाइल पे सुन लेती हैं, तो घर में
1: हाँ
0: काम
1: जी,
0: करते करते कैसे समय निकाल लेती हैं आप रेडियो सुनने का?
1: घर में काम करते करते बस मोबाइल में लगा दिया,
0: हाँ
1: उसमें अच्छे
0: हाँ
1: अच्छे गाने आते रहते हैं, पुराने
0: बिल्कुल। और
1: नए सारे ही आते हैं।
0: और काम करते करते आपका एंटरटेनमेंट भी साथ साथ होता रहता है ना?
1: जी, उससे ज्यादा अच्छा काम होता है। जी
0: एक नई एनर्जी के साथ, कहते हैं ना, नई एनर्जी
1: हाँ
0: से
1: जी,
0: काम करने में मजा आता है बहुत।
1: हाँ जी,
0: अच्छा दिव्या जी, ऐसे ही रेडियो सुनती रहिए, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा,
1: थैंक
0: धन्यवाद।
1: यू।
0: एक और महिला हमारे साथ जुड़ी हैं, चलिए करते हैं उनसे बात।

0: मैम आप अपना नाम बताइए पहले। तो
1: मेरा नाम मंजू असवाल है।
0: मंजू जी क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ और कॉस्मेटिक शॉप भी चलाती हूँ। हाँ
0: अच्छा कॉस्मेटिक शॉप भी चलाती है, ठीक है। हाउस वाइफ
1: जी
0: भी हैं और वर्किंग भी हैं, है ना।
1: कॉस्मेटिक। हाँ जी
0: तो मंजू जी आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ सुनती हूँ, कभी कभार सुन लेती हूँ। शॉप
0: बोलिए।
1: में बैठती हूँ ना जब, तो रेडियो लगा लेती।
0: मंजू जी रेडियो में कौन सा प्रोग्राम सुनती हैं आप?
1: रेडियो में प्रोग्राम कभी सुबह जैसे भजन आ गए, सुबह के टाइम
0: जी
1: पे जैसे भजन लगा लिए, दिन में जैसे गढ़वाली गाने भी चलते हैं उसमें ना,
0: हाँ हाँ
1: वो भी लगाती हूँ। और पुराने गाने सुनने का भी शौक है मुझे, तो
0: जी बिल्कुल।
1: पुराने गाने भी चलाती हूँ।
0: मंजू जी आप आकाशवाणी देहरादून के प्रोग्राम सुनती हैं?
1: एक तो नमस्कार देहरादून है
0: जी।
1: और दूसरा वो रेडियो सखी।
0: रेडियो सखी सुनती हैं आप?
1: हाँ जी
0: मंजू जी आप किस डिवाइस पे सुनती हैं रेडियो? मतलब जैसे आजकल तो टीवी मोबाइल सब कुछ है, लैपटॉप है।
1: स्पीकर है ना हमारे पास,
0: जी
1: उसमें एफएम वगैरह भी चलता है ना, रेडियो भी चलता है। रेडियो तो हम बचपन से ही सुनते हैं, बहुत पुराने टाइम से,
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: जब अभी तो हम कितने इयर्स के हो गए हैं,
0: अच्छा
1: यानी कि 47, तो
0: 47
1: मतलब 6-7 साल की एज से सुनती हूँ
0: बिल्कुल।
1: रेडियो। तब
0: जी
1: प्रोग्राम भी बहुत अच्छे आते थे उस समय भी, अभी भी लगातार सुनते ही है, मतलब अच्छा लगता है रेडियो
0: जी
1: सुनना
0: जी
1: ना। तो एक बार एक कार्यक्रम चल रहा था, इसमें
0: जी
1: कुछ प्रश्न उत्तर का था, और कुछ प्रश्न का जवाब
0: अच्छा
1: देना
0: कोई
1: था।
0: क्विज शो है।
1: हाँ तो
0: जी
1: मैंने उसका जवाब दिया था, मेरा नाम भी आया था, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सामने बच्चों को बताया
0: जी
1: कि मेरा ना, बच्चे
0: अरे
1: बोले
0: वाह
1: अच्छा अच्छा लगा
0: अरे वाह। रेडियो सुनते सुनते
1: ना,
0: मतलब
1: मतलब मैंने
0: जी
1: फट
0: हाँ
1: जवाब दे दिया था, तो एकदम
0: जी
1: से उन्होंने
0: देखिए
1: बोले कि
0: इससे
1: मंजू
0: आपका
1: जी है।
0: ज्ञान भी बढ़ा है ना,
1: हाँ
0: आपको
1: जी
0: पता चला कि आप कितने टैलेंटेड हो। और एक खुशी
1: हाँ
0: होती है ना, अपना नाम अनाउंस हुआ है,
1: हाँ
0: हम
1: जी हाँ
0: किसी का
1: जी
0: जवाब दे रहे तो कितना अच्छा लगता है।
1: हाँ
0: जी। आजकल एंटरटेनमेंट के कई साधन अब मौजूद हैं, पहले तो रेडियो ही हुआ करता था। तो
1: हाँ
0: आपको
1: जी
0: क्या फर्क लगता है तब में और अब में?
1: एंटरटेनमेंट के साधन तो बहुत हैं, लेकिन
0: जी
1: रेडियो का सबसे अच्छा ये है ना, आप साथ लेके भी चल सकते हो उसे,
0: जी जी बिल्कुल
1: सबसे सही बात ये लगी ना। टीवी, इतना बड़ा टीवी आप साथ नहीं ले जा सकते,
0: हाँ। रेडियो हम कहीं भी सुन सकते हैं
1: रेडियो को
0: जैसे।
1: आप कहीं भी रख भी सकते हो, आप साथ भी लेके जा सकते हो और आप आराम से उसे सुन सकते हो।
0: तो मंजू जी आप काम करते करते भी रेडियो सुनती हैं, बहुत खुशी
1: हाँ
0: हुई
1: जी
0: जानकर कि रेडियो की अभी भी एक अलग पहचान बनी हुई है। चाहे
1: हाँ
0: कितने
1: जी
0: ही साधन उपलब्ध हो मगर रेडियो की एक अलग ही बात है ना।
1: हाँ जी ठीक
0: जी आपसे बात करके अच्छा लगा मंजू जी, रेडियो सुनती रहिए, खुश रहिए। जी धन्यवाद।
1: ठीक
0: आज हमारे साथ एक और महिला जुड़ी हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, आपका नाम?
2: मेरा नाम पूजा है,
0: पूजा जी क्या करती हैं आप?
2: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा पूजा जी आप अपने बारे में बताइए कि आपकी हॉबीज क्या हैं, क्या क्या शौक हैं आपके?
2: मेरी हॉबी कुकिंग है।
0: अच्छा खाना बनाना पसंद है आपको, क्या क्या बनाती हैं आप खाने में?
2: मैं बहुत सारी चीजें बना लेती हूँ, नॉर्मली खाना, बाकी कुछ स्वीट डिश होती हैं वो बना लेती हूँ।
0: बहुत अच्छा। अच्छा पूजा जी क्या आपको रेडियो सुनने का शौक है?
2: हाँ मैं सुन भी लेती हूँ कभी कभी
0: अच्छा पूजा जी रेडियो पे आप क्या सुनना ज्यादा पसंद करती हैं?
2: सॉन्ग्स।
0: सॉन्ग्स। अच्छा गाने सुनना पसंद करती हैं, किस तरह के गाने
2: जी
0: सुनना पसंद करती हैं, नए गाने या पुराने गाने?
2: दोनों मिक्स।
0: मतलब आपको नए गाने भी पसंद हैं और पुराने गाने भी।
2: हाँ
0: अच्छा पूजा जी रेडियो पे कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं आप?
2: मैं जब भी ऑन करती हूँ अक्सर सॉन्ग्स वगैरह आ रहे होते हैं या न्यूज आ रही होती है, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर चैनल सुनती हूँ।
0: अच्छा पूजा जी अब तो एंटरटेनमेंट के इतने साधन हैं, तो आपको क्या लगता है रेडियो की इम्पोर्टेंस पहले ज्यादा थी या अब भी है?
2: नहीं, रेडियो की इम्पोर्टेंस पहले भी थी और अब भी है।
0: जी
2: पहले बहुत ज्यादा था, पहले इतना क्रेज था लोगों में कि पहले उनकी दिन की शुरुआत भी रेडियो से होती थी।
0: बिल्कुल
2: और मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि
0: जी जी बताइए
2: हमारे यहाँ एक काम वाली आती थी
0: जी
2: और वो सबसे पहले आते के साथ बोलती थी कि आप पहले रेडियो चला दो, मैं
0: जी जी
2: तभी काम करूंगी वरना
0: हाँ
2: मैं काम नहीं कर सकती। वो एटलीस्ट चाय भी नहीं पीती थी जब तक रेडियो ऑन नहीं होता था।
0: अच्छा मतलब काम ही शुरू नहीं करती थी।
2: और अगर बाय चांस किसी रीजन से सिग्नल नहीं आ रहे तो वो काम बिल्कुल सुस्ती से करती थी, उसके अंदर चुस्ती हुरती होती ही नहीं थी।
0: ओहो मतलब रेडियो के बिना वो काम ही शुरू नहीं कर सकते थे।
2: हाँ वो अभी भी है, वो अभी भी रेडियो लवर ही है।
0: अच्छा रेडियो लवर ऐसे ही होते हैं भाई, उनके काम की शुरुआत भी रेडियो से होती है और वो अपना काम भी खत्म रेडियो के साथ ही करती हैं।
2: कभी कभी
0: बिल्कुल
2: तो वो ऐसे करती थी, साथ में लेके चलती थी।
0: अच्छा साथ में लेके, अरे वाह।
2: यही है कि मैं भी जब सुबह उठती थी मैं भी घर के काम रेडियो चला के ही करती थी। पहले तो रेडियो ही ज्यादा होते थे तो
0: बिल्कुल
2: अच्छा लगता था रेडियो पे अलग अलग तरीके के सॉन्ग सुनना,
0: बिल्कुल ये तो है, मूड फ्रेश हो जाता है रेडियो
2: मूड
0: पे।
2: फ्रेश।

जानकारी और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि बेटियों को शिक्षित होना मतलब दो परिवारों का शिक्षित होना है, और जो एक शिक्षित समाज का निर्माण करती हैं। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार द्वारा एक बचत योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत माता पिता अपनी 10 साल से कम उम्र की बच्ची का खाता अपने नजदीकी बैंक या डाकघर में खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए अभिभावक के पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होती है। बहनों, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हम हर साल 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक की धनराशि जमा करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत हम जो धनराशि जमा करते हैं उस पर जोखिम का खतरा नहीं होता है, मतलब रिटर्न की पूरी गारंटी मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% का वार्षिक ब्याज मिलता है। ये योजना पूरी तरह से आयकर मुक्त है, मतलब कि आपकी जमा राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज और परिपक्वता की पूरी रकम टैक्स से फ्री हो जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा धनराशि खाता खुलवाने के 21 वर्ष बाद परिपक्व होने पर निकाली जा सकती है, मगर आप चाहें तो अपनी बेटी के 18 वर्ष पूरे होने के बाद उसकी उच्च शिक्षा के लिए जमा धनराशि का 50% निकाल सकते हैं। बहनों, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए कम निवेश द्वारा एक बड़ी धनराशि जमा करने में मदद करती है। बहनों, बेटियां अनमोल होती हैं, तो उन्हें जीवन का सबसे अनमोल उपहार शिक्षा के रूप में दिया जाना चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में खुलकर सांस ले सकें। इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतर विकल्प है। बहनों, कार्यक्रम में अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, अब वक्त है रसोई घर से। आज हम बनाना बताएंगे क्रिस्पी चीजी पटेटो स्टिक। इसकी सामग्री नोट कीजिए। इसके लिए चाहिए 5-6 उबले आलू, 3/4 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, चीज जितना आपका मन हो, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून और ब्रेड क्रम। चलिए नोट कीजिए इसकी विधि। सबसे पहले उबले आलूओं को अच्छे से मैश कर ले ताकि इनमें लम्स ना रहे। अब इसमें कॉर्नफ्लावर, चीज और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, काली मिर्च पाउडर, नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। आप इसमें धनिया पत्ती काटकर भी मिक्स कर लें। अब इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। आप इसे ढककर फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए रख दें ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। आप इसे जिप लॉक बैग में भी रख सकती हैं। 1-2 घंटे बाद इन्हें निकालकर बेलन से फैला लें और चाकू की मदद से लंबी लंबी स्टिक कट कर लें। अब स्लरी तैयार करते हैं। एक बाउल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, काली मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर स्मूथ सी मीडियम थिक बैटर तैयार कर लें। अब इस स्लरी में एक एक करके चीज स्टिक को जो हमने कट की थी उन्हें डिप करें। फिर इन स्टिक्स को ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर लें। ऐसे ही सारे स्टिक तैयार कर लें। अब आप गर्म तेल में इन्हें मध्यम आंच पर फ्राई करें जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। बस अब आप इन्हें टिश्यू पेपर में निकाल लें तो तैयार है आपकी क्रिस्पी चीजी पोटैटो स्टिक। तो बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। बहनों, आप हमें पत्रों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, देहरादून। हमारा पिन कोड है 248001। तो बहनों, अब अपनी सखी सुमन बगासी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय दोपहर का 1 बजने वाला है, बस अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुंझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की, भ्रामक सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रीलंका के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीआरएफ मुख्यालय का भ्रमण कर आपदा प्रबंधन क्षमता की जानकारी ली। हल्द्वानी वन प्रभाग ने पक्षी विविधता के वैज्ञानिक आकलन के लिए अत्याधुनिक वन्यजीव रिकॉर्डर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली की शुरूआत की है। और पौड़ी जिले में जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार द्वारा कल एक दिवसीय निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में यात्रा के दौरान सामने आ रही समस्याओं, चुनौतियों और उनके निराकरण के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सुझाव भी लिए गए। बैठक में यात्रा से संबंधित भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों की रोकथाम पर भी विशेष चर्चा की गई। आयुक्त ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर प्रसारित भ्रामक खबरों की नियमित निगरानी करने और भ्रम फैलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
5: जो समस्याएं आ रही हैं अभी चारधाम यात्रा के अंतर्गत, उनको मैंने अधिकारियों से जाना है और उनके लिए लोग क्या उपाय कर रहे हैं उसको मैंने देखा है, और इन्हें सुझाव जो उनके और आए हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा की है। जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको सकुशल दर्शन कराने, कोई वापसी सुनिश्चित करने सकुशल, इसके लिए हम लोग बैठ करके अभी रणनीति तैयार किए हैं। यात्रा के बारे में किसी भी प्रकार की गलत न्यूज न जाए और अफवाह न फैले, इसको देखते हुए मैंने सभी को सचेत किया है कि अगर कोई पुराने खबर पुरानी वीडियो के आधार पर कोई न्यूज प्रसारित करता है तो उसके खंडन प्रत्येक दशा में किया जाना चाहिए, और जो लोग अगर मिसक्रिएंट हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए।
4: राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की ओर से आयोजित क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत श्रीलंका के 39 सदस्य सिविल सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जॉलीग्रांट स्थित एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एसडीआरएफ की कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन क्षमताओं की जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आपदा प्रबंधन की रणनीतियों, खोज व बचाव तकनीकों और आपातकालीन परिस्थितियों में संचालित राहत व बचाव अभियानों की जानकारी दी गई। साथ ही उत्तराखंड में एसडीआरएफ के विभिन्न आपदाओं के दौरान किए गए सफल रेस्क्यू अभियानों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निभाई गई भूमिका से भी अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल ने एसडीआरएफ के आधुनिक प्रशिक्षण संसाधनों, पेशेवर दक्षता और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विकसित प्रभावी कार्यप्रणाली की सराहना की। सदस्यों ने कहा कि आपदा के समय त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया, अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग और मानव जीवन की सुरक्षा के प्रति एसडीआरएफ की प्रतिबद्धता इसे एक अनुकरणीय संस्था बनाती है। सदस्यों ने यह भी कहा कि एसडीआरएफ का अनुभव और कार्यप्रणाली आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अन्य देशों के लिए भी उपयोगी और प्रेरणादायक साबित हो सकती है। देहरादून में वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। संभागीय परिवहन कार्यालय प्रशासन संदीप सैनी के अनुसार ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर के डेटा की जांच में पाया गया है कि देहरादून में पंजीकृत कई व्यावसायिक वाहनों ने फिटनेस प्रमाण पत्र ग्वालियर, इंदौर, बिजनौर और रांची जैसे शहरों से प्राप्त किए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने 100 से अधिक संदिग्ध वाहनों को चिन्हित कर कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने या अनियमितता पाए जाने पर वाहनों की फिटनेस तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही संबंधित राज्यों के एटीएस सेंटरों, एआरटीओ, आरटीओ और परिवहन मुख्यालयों से भी रिकॉर्ड तलब कर जांच शुरू कर दी गई है।
6: यहाँ ATS का जो हम पूरा डेटा हम खंगाल रहे थे तो हमने ये देखा कि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो अन्य प्रदेशों में जाके उन्होंने फिटनेस करवाई है जो डेटा से पता चल रहा है। जैसे यहाँ की कुछ गाड़ियां छोटा हाथी या ट्रक या कुछ इस टाइप की गाड़ियां हैं जिन्होंने ग्वालियर में, इंदौर में, बिजनौर में, रांची में फिटनेस करवाई है, तो थोड़ा ये हमारे को संदिग्ध लग रहा है कि सिर्फ फिटनेस करवाने इतनी सारी गाड़ियां बाहर प्रदेशों में नहीं जा सकती। तो अभी हम उन सभी गाड़ियों को हमने चिन्हित कर लिया है, लगभग 100 के आसपास की गाड़ियां हैं, उनको हम नोटिस दे रहे हैं और उनसे हम प्रूफ भी मांग रहे हैं कि आप जिस दिन गए हैं फिटनेस करवाने आप हमारे पास टोल का डिटेल दीजिए जिससे हमारे को कंफर्म हो कि गाड़ी गई है।
7: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
4: हल्द्वानी वन प्रभाग ने पक्षी विविधता के वैज्ञानिक आकलन के लिए अत्याधुनिक वन्यजीव रिकॉर्डर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि उत्तराखंड वन विभाग की अब पहली पहल है जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग कर पक्षियों और वन्यजीवों की निगरानी की जाएगी।
8: देखिए, हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा जो वन क्षेत्रों में पक्षियों की निगरानी करने के लिए एकाउस्टिक रिकॉर्डर का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें ये वन क्षेत्रों के भीतर इनको लगाया जा रहा है और ये लगातार जो है जो पक्षियों की आवाज जो है रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसके जो डेटा है उसका विश्लेषण किया जाता है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनके उस पर अपलोड करके और वो जो सॉफ्टवेयर है वो AI और मशीन लर्निंग का यूज करके जो उनके बर्ड्स के जो कॉल है, उनके जो साउंड है, उसके आधार
4: वरिष्ठ वन्यजीव जीव विज्ञानी प्रशांत आर्य ने कहा कि इस पहल के तहत वन क्षेत्रों में स्वचालित रिकॉर्डर लगाए जा रहे हैं जो 24 घंटे पक्षियों और अन्य जीवों की आवाज रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किए गए डेटा का विश्लेषण AI और मशीन लर्निंग तकनीक से किया जाएगा जिससे पक्षियों की प्रजातियों, उनकी संख्या, गतिविधियों और आवाज संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
9: हम लोगों ने अभी रिसर्च पर्पज से एक सॉन्ग मीटर 2 करके एक डिवाइस है वाइल्ड लाइफ एकाउस्टिक जो बर्ड्स के साउंड्स को रिकॉर्ड करती है और वह सॉफ्टवेयर में डाल के हम ये पता कर सकते हैं कि कितने बर्ड्स की साउंड जो है इसमें रिकॉर्ड हुई है। और इसमें वैसे कोई कैमरा वगैरह नहीं होता है और जो फोटोज जो बर्ड्स का हम लोग आइडेंटिफिकेशन विजुअली नहीं कर पाते हैं, जो नॉक्टर्नल बर्ड्स होते हैं उसका जो है वॉइस के थ्रू, वॉइस प्रिंट जो बर्ड्स का होता है उसके थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं।
4: आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विधान भवन में आयोजित बैठक में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हर्रावाला से जुड़े पूर्व निर्णयों के अनुपालन और क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ऋषिकुल और गुरुकुल हरिद्वार आयुर्वेदिक कॉलेजों में दवाइयों के सुचारू वितरण के लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयुष विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। श्री कौशिक ने टेक्नीशियन और लाइब्रेरियन सहित रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द अधियाचन भेजने के निर्देश भी दिए।
10: हमारे विद्यालयों के कैंपस की स्थिति है उस पर विस्तार से चर्चा करते हुए क्या हो सकता है, जो दवाई की कमी कैंपसों में चल रही थी फिलहाल तत्कालीन व्यवस्था के लिए 3-3 लाख रुपए उन तीनों कैंपसों को देने के लिए कहा जिससे दवाई की व्यवस्था हो और तत्काल कुलपति को कहा कि आप दवाई के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसको आगे बढ़ाइए।
4: पौड़ी जिले में जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार द्वारा कल एक दिवसीय निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्थानीय उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, व्यवसायी, स्टार्टअप संचालक और उद्योग क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारक भाग लेंगे। कार्यशाला में प्रतिभागियों को निर्यात से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। महाप्रबंधक उद्योग सोमनाथ गर्ग ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों और उद्यमियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना तथा उन्हें निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की, भ्रामक सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रीलंका के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीआरएफ मुख्यालय का भ्रमण कर आपदा प्रबंधन क्षमता की जानकारी ली। हल्द्वानी वन प्रभाग ने पक्षी विविधता के वैज्ञानिक आकलन के लिए अत्याधुनिक वन्यजीव रिकॉर्डर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। और पौड़ी जिले में जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार द्वारा कल एक दिवसीय निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म आजा सनम से। आवाजें थी मनु और अनुराधा पौडवाल की। इस गीत को संगीत दिया था अरुण पौडवाल ने। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अकेले हम अकेले तुम से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का ये गाना। आवाजें हैं मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और साथियों की। गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉबी से। आवाजें थी मन्ना डे शैलेंद्र सिंह और साथियों की। इसी के साथ ही फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय दोपहर के 1:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
0: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत

0: बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
0: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
0: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
1: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
0: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुडी और प्रमोद कुमार डुडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल, ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता ये है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी,
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी,
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।

0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: जी जी यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे,
1: जी
0: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी,
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं, तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है, जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
7: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो
8: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है। ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया ये।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
9: लुई पाश्चर
2: सर,
9: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
2: कहिए सर।
9: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
2: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
9: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
3: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
3: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए यह विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
3: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
3: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
3: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 7

0: I am sure, 100%, सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
2: सर सर, ये टेलीग्राम।
0: अच्छा, लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
2: क्या हुआ सर?
0: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
2: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
0: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
2: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
0: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
0: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
0: आप,
4: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
4: मेरा अच्छा, बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें

0: ये कहते हुए सुना।
1: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग।
6: सुनो ना।
7: हाँ।
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ,
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
6: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
8: आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India, Justice Surya Kant, administers oath of office to 5 new judges of the Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship schemes in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally.
9: जुबा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े, तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
8: The president highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities. President Murmu emphasized that India has no shortage of talent and stressed on the need to identify, nurture and provide the right platform for it to flourish.
9: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न
8: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026, introducing key changes in registration timelines and the appeals mechanism under the Immigration and Foreigners Rules 2025. The amendment allows registration to be completed at any time before the expiry of 180 days from arrival in India. Previously, registration had to be completed within 14 days after the end of the 180-day period. However, late registration beyond this period will now be permitted only under emergent circumstances. The Chief Justice of India, Justice Surya Kant, administered the oath of office to five new judges of the Supreme Court today. Justices Sheel Nagul, Sri Chandrasekhar, Sanjeev Sachdeva and Arun Palli and Senior Advocate V. Mohana took oaths as judges of the Apex Court. The centre had cleared their appointments yesterday on the recommendation of the Supreme Court Collegium. The appointments were made weeks after President Draupadi Murmu promulgated the Supreme Court Number of Judges Amendment Ordinance 2026, increasing the sanctioned strength of judges in the Apex Court from 34 to 38, including the Chief Justice of India. President of Myanmar, U Me Aung Hlaing, arrived in Mumbai today as part of his four-day visit to India. He was welcomed at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma. President U Me Aung Hlaing is scheduled to attend business and industry interactions and visit various sites in Mumbai today. He will also attend a special program organized in his honor at Lok Bhavan this evening. Chief Minister Devendra Fadnavis is scheduled to be present on the occasion. India has dispatched the second tranche of medical assistance to the Africa Centres for Disease Control and Prevention to support public health preparedness and strengthen Ebola response efforts across Africa. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar expressed confidence that the 43-ton shipment will further enhance public health preparedness and bolster Ebola response capacities across the African Union member states. The Union Health Ministry has said no case of Ebola virus disease has been reported in the country so far. The ministry has advised that anyone who has travelled from or transited through an Ebola-affected country in the last 21 days and develops symptoms such as fever, headache, muscle pain, diarrhea or unexplained bleeding should isolate themselves and inform local health authorities. The ministry has also urged citizens to call the helpline number 1075 for information, guidance and assistance. It emphasized that early reporting is crucial for saving lives and preventing the spread of the disease. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The anti-terrorism squad of Uttar Pradesh has arrested a young man named Mohammed Sheikh from Azamgarh, allegedly linked with Pakistani gangster Shahzad Bhatti. The ATS received the information that Pakistan's ISI and terrorist organizations were collaborating with Bhatti with the aim of spreading terror and threatening India's sovereignty, unity and territorial integrity. More from our correspondent.
10: As part of this conspiracy, the terrorist gang was instigating persons to conduct unlawful acts. This intelligence was developed through electronic and physical surveillance and investigative efforts. During the inquiry, Mohammed Sheikh, resident of Azamgarh district, came to light. He had connected with Shahzad Bhatti's terrorist gang via WhatsApp using Pakistani and Dubai phone numbers and through their social media accounts. Handlers of Shahzad Bhatti's gang had assigned Mohammed Sheikh to threaten and assassinate a female leader of a political party from another state. Mohammed Sheikh had arranged a 9mm pistol and was preparing to execute the plan to murder Sushil Chandra Tiwari. Akashwani News, Lucknow.
8: The Enforcement Directorate ED is conducting massive search operations at 20 locations across Mumbai, Surat, Ankleshwar and Rajkot against a transnational organized narcotics trafficking syndicate operated by Salim Ismail Dola and his associates. According to the Enforcement Directorate, investigations have uncovered a highly organized transnational criminal network. The network was involved in procuring precursor chemicals and clandestinely manufacturing methadone, also known as MD. It allegedly transported and distributed narcotic drugs across states and trafficked narcotic substances internationally. The probe has also revealed the use of hawala channels to collect and layer proceeds of crime. The government extradited Salim Dola last month from Turkey. He is a close aide of Dawood and operated a transnational network of drugs. The Directorate of Revenue Intelligence has busted a gold smuggling syndicate at Mumbai International Airport and seized 2.6 kilograms of foreign origin gold valued at around 4 crore 20 lakh rupees. Based on specific intelligence, DRI officials yesterday apprehended two passengers while they were attempting to smuggle gold into India from Dubai. During examination, officials recovered two pouches containing gold dust in wax form. The agency said the investigation led to a Navi Mumbai-based jeweler who is suspected to have conspired with accomplices to smuggle the gold into the country. Congress leader Shanimol Usman has been elected as the Deputy Speaker of the Legislative Assembly in Kerala. Shanimol Usman got 99 votes and opposition candidate Mohammad Mohsin got 34 votes. All the three BJP members abstained from voting. The President, Vice President and Prime Minister have extended greetings to the people of Telangana on its Statehood Day. President Draupadi Murmu said Telangana is blessed with a rich cultural heritage and hard-working people. She said the state has made significant strides in innovation and development over the years. Vice President C.P. Radhakrishnan said, blessed with rich cultural heritage and vibrant traditions, Telangana has contributed significantly to the nation's progress. Prime Minister Narendra Modi reaffirmed the central government's commitment to providing full cooperation to the development movement of Telangana in the direction of realizing the dream of a developed India. He prayed for good health, happiness and success for the people of Telangana. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today extended greetings to Italy on the occasion of its National Day. In a social media post, Dr. Jayashankar expressed confidence that the special strategic partnership between the two countries will continue to grow from strength to strength. In West Asia, attention remains focused on Lebanon after a fragile U.S.-brokered arrangement between Israel and Hezbollah raised hopes of easing tensions in the region, though fresh violations have cast doubt over its durability. Lebanese officials say Hezbollah has accepted a U.S. proposal under which the group would halt attacks on Israel, while Israel would suspend strikes on Beirut's southern suburbs, a Hezbollah stronghold. However, the understanding falls short of a comprehensive ceasefire and clashes have continued in parts of southern Lebanon. U.S. President Donald Trump has described the development as an agreement to stop all shooting following talks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and contacts with Hezbollah through mediators. However, Israeli officials have taken a more cautious position, saying military operations could resume if Hezbollah attacks persist. Soon after the announcement, the Israeli military reported intercepting projectiles fired from Lebanese territory, highlighting the fragility of the arrangement. More from our Dubai correspondent.
11: The fragile Lebanon de-escalation is unfolding against a far more dangerous diplomatic backdrop. Iran has formally suspended all dialogue and exchange of messages through mediators with the United States, citing Israeli operations in Lebanon, which Tehran had flagged as a precondition of any ceasefire agreement. Iranian sources linked to the resistance front have placed on their agenda the complete closure of the Strait of Hormuz and the activation of additional fronts, including the Bab el-Mandeb Strait at the mouth of the Red Sea, with the stated aim of punishing Israel and its supporters. The fighting in Lebanon presents a major obstacle in the emerging deal between Washington and Tehran, as Iran is insisting that any agreement must include a ceasefire in Lebanon. Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
8: A delegation of Nepal's ruling Rashtriya Swatantra Party, led by party president Rabi Lamichhane, met BJP President Nitin Naveen in New Delhi today. The delegation was also scheduled to meet other senior leaders of the party. The visit seeks to initiate party-to-party engagement between RSP and BJP and provide an opportunity for exchange of views on organizational practices, democratic processes, and people-centric political outreach. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for thunder squall conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh during the day. While heavy rainfall will occur over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over Haryana, Chandigarh, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, Gujarat, Goa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and West Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. Hot and humid weather conditions will prevail over entire northeast, including coastal Andhra Pradesh, Odisha and sub-Himalayan West Bengal today. On to sports and women's cricket, the third and final T20 international of the series between India and England will be played at Taunton in England tonight. The match will begin at 11 p.m. IST. The series is level with India winning the first match in Chelmsford by 38 runs and England levelling the series with a 26-run victory in Bristol. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan. Captain Ketan Kushwaha scored in the third and the 36th minute. Varinder Singh and Shah Rukh Ali scored the other two goals. Korea's lone goal came through Captain Yoon Jae-hyuk. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India, Justice Surya Kant, administers oath of office to 5 new judges of Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
12: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
9: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
12: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
9: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
12: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
9: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
12: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित

0: नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवृजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 107.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, 2:30 हुए हैं हमारे स्टूडियोज की घड़ी में और ये वक्त निर्धारित है कार्यक्रम सैनिकों के लिए। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक साथियों, आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। रोजाना की तरह हाजिर हैं हम कुछ गीत और कुछ बातें लेकर। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है कैप्टन पन्नीकोटे विश्वनाथ विक्रम को, जो भारतीय सेना के एक अत्यंत बहादुर अधिकारी थे और 141 फील्ड रेजिमेंट में तैनात कैप्टन विक्रम ने कारगिल युद्ध के दौरान 2 जून 1999 को 17,500 फीट की ऊंचाई पर ककसर सेक्टर में लड़ते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनकी शहादत को देश नमन करता है।

साथियों, कैप्टन पन्नीकुट्टे विश्वनाथ विक्रम जी का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1973 को केरल के कोझिकोड जिले में पन्नियानकारा गांव में, और वहां के एक गौरवशाली सैन्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट कर्नल PKVV पन्नीकर थे, और पिता सेना में होने के कारण अलग अलग स्थानों में इनका तबादला होता रहा, और ये अलग अलग स्थानों पर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। कोझिकोड, तलबहाट, श्रीनगर, औरंगाबाद आदि स्थानों पर उनकी शिक्षा पूरी हुई। और भी कुछ बातें इनके जीवन से जुड़ी इस गीत के बाद।

0: जय हिंद। नमस्कार, मैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र। आकाशवाणी का सैनिकों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जब एक सैनिक पहाड़ों पर, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, तब वो सैनिक एक आकाशवाणी के साथ जुड़ा होता है, तो उसको लगता है कि वो देश के साथ जुड़ा है। उसके मनोबल को बढ़ाता है, उसको प्रेरणा देता है, उसको शक्ति देता है, ताकि वो अपने आप से जुड़ा रहे, और ये जुड़ाव ही उसको राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेरणा से ओतप्रोत करता है। तभी वो अकेले में भी आकाशवाणी के साथ, निडरता के साथ, साहस के साथ, वीरता के साथ अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करता है। ये कभी अपनों की याद नहीं आने देता। तो आकाशवाणी का सैनिक के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, जो उसके अकेलेपन को भर देता है, जो उसको एक करुणा और प्रेम की भाव से ओतप्रोत कर देता है। आकाशवाणी एक माध्यम है देश को जोड़ने का, अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाने का। तो सैनिक भी इस आकाशवाणी से जुड़े हैं, और आकाशवाणी इस सैनिकों के मनोबल में बहुत बड़ा योगदान देती है। जय हिंद, जय भारत।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है और आप

सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कैप्टन पन्नीकोटे विश्वनाथन विक्रम की। अगर बात की जाए उनकी कमीशनिंग की, तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट किया था और उसके बाद उनका जो चयन हुआ था वो आईएमए देहरादून के लिए हुआ था और 8 जून 1996 को उन्हें 141 फील्ड रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त हो गया था। और कारगिल युद्ध में अगर उनकी भूमिका रही तो वो एक युवा अधिकारी के रूप में रही। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में सेवाएं दी और बाद में 1999 में उनकी जो यूनिट थी वो कारगिल में तैनात हो गई थी।

साथियों, ऑपरेशन विजय 2 जून 1999 को कैप्टन पन्नीकोटे विश्वनाथ विक्रम चार जाट रेजिमेंट की सीधी मदद के लिए फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर के रूप में तैनात हुए थे और उसी समय दुश्मन के ठिकानों पर आर्टिलरी को निर्देशित करते हुए एक मोर्टार का गोला उनके पास आकर गिरा और इसी भीषण गोलाबारी में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में शहीद हो गए।

साथियों, कैप्टन पन्नीकोट्टे विश्वनाथ विक्रम 2 जून 1999 को ऑपरेशन विजय के तहत शहीद हो गए थे। राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत प्रतिष्ठित सेना पदक से सम्मानित किया गया था। हम उन्हें उनकी शहादत पर पुनः नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय ठीक 3 बजे है और अब प्रस्तुत है FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। खेल मंत्री रेखार्य ने हल्द्वानी गोलापार स्थित प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर के लिए चल रहे समतलीकरण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी से देहरादून में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के पारस्परिक हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा की गई। पिथौरागढ़ जिले में स्थित ऐतिहासिक लिपुलेख व्यापार मार्ग से भारत तिब्बत सीमा व्यापार लगभग 7 वर्षों के बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। इससे सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। उधम सिंह नगर जिले के बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 156 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे 1872 आवास का कार्य अंतिम चरण में है। शीघ्र ही लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जाएंगे। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना संरचना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में सभी विभागों को जनहित आधारित व्यवहारिक और नवाचार युक्त योजनाएं प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी वन प्रभाग ने पक्षी विविधता के वैज्ञानिक आकलन के लिए अत्याधुनिक वन्यजीव रिकॉर्डर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। इसके तहत वन क्षेत्रों में स्वचालित रिकॉर्डर लगाए जा रहे हैं जो 24 घंटे पक्षियों और अन्य जीवों की आवाज रिकॉर्ड करेंगे। पौड़ी जिले में बाल विकास विभाग की ओर से पहले चरण में कलेक्ट्रेट परिसर, विकास भवन और बस स्टेशन में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। इससे इन सार्वजनिक स्थलों पर आने वाली महिलाओं और छात्राओं को आवश्यकता पड़ने पर आसानी से सैनिटरी पैड उपलब्ध हो सकेंगे। और मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश जबकि 4200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई। राज्य के कुछ जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं टू स्टेट्स फिल्म से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीप्रदा ने। अमिताभ भट्टाचार्य के शब्दों को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म 102 नॉट आउट से। इस गीत को अपनी आवाज दी थी सोनू निगम ने, लिखा था सौम्या जोशी ने और संगीत था सलीम सुलेमानी का।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

ऑल इज वेल इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अंकित तिवारी की आवाज में, जिसे लिखा था मयूर पुरी ने और संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया ने। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत एक्शन रिफ प्ले फिल्म से, कार्तिक और महालक्ष्मी अंतरा मित्रा की आवाज में। इरशाद कामिल के शब्द हैं, प्रीतम का संगीत।

FM 107.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से। आवाजें हैं आलिया भट्ट और अखिल सचदेव की।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गाने नए तराने में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं बर्फ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बर्फी फिल्म का ये गाना। अब आपको सुनवाते हैं दबंग 2 फिल्म में सोनू निगम और तुलसी कुमार को। इरफान कमाल के शब्द हैं और साजिद वाजिद का संगीत।

दबंग टू फिल्म में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और तुलसी कुमार को, इरफान कमाल के शब्द थे और संगीत साजिद वाजिद का। एक बार फिर से आपको सुनवा रहे हैं साजिद वाजिद का संगीत, कैसर मुनीर के शब्दों को स्वर में ढाला है जावेद अली और सुनिधि चौहान ने फिल्म दावत-ए-इश्क के लिए।

5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से शिप्रा राव की आवाज में।

कार्यक्रम गाने नए तराने अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से। अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म हैप्पी फिर भाग जाएगी से शाहिद मलैया और साथियों की आवाज में।

0: अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने। सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म झूठा कहीं का से। आवाजें हैं ब्रजेश शांडिल्य, सिद्धांत माधव और साथियों की।

0: झूठा कहीं का। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे ब्रजेश शांडिल्य, सिद्धांत माधव और साथियों की आवाज में। इसी के साथ ही कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं पर संपन्न होता है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है, प्रस्तुत है FM न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। खेल मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित नेशनल यूथ मुएथाई चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में स्थित ऐतिहासिक लिपुलेख व्यापार मार्ग से भारत तिब्बत सीमा व्यापार लगभग 7 वर्षों के बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। इससे सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। चमोली जिले की नीति घाटी में आयोजित नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आज समापन हो गया। अंतिम दिन गमसाली से मलारी के बीच आयोजित 30 किलोमीटर एमटीबी माउंटेन बाइकिंग चैलेंज प्रतियोगिता में देशभर से आए 100 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। टिहरी जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवप्रयाग के पास एक कार गंगा नदी में समाई। रेस्क्यू टीमों ने मौके से 3 लोगों के शव बरामद किए हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया है। अन्य संभावित लापता लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ पुलिस और जल पुलिस की टीमें राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। चंपावत जिले के विभिन्न निकायों में स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत सभी निकायों में लोक कल्याण मेले और स्वनिधि शिविरों का आयोजन, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ ही स्ट्रीट वेंडरों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उधमसिंह नगर जिले के बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 156 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे 1872 आवास का कार्य अंतिम चरण में है। शीघ्र ही लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जाएंगे। पौड़ी जिले में बाल विकास विभाग की ओर से पहले चरण में कलेक्ट्रेट परिसर, विकास भवन और बस स्टेशन में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। इससे इन सार्वजनिक स्थलों पर आने वाली महिलाओं और छात्राओं को आवश्यकता पड़ने पर आसानी से सैनिटरी पैड उपलब्ध हो सकेंगे। और मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश, जबकि 4200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई। राज्य के कुछ जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं महफूज अली खान का तबला वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं ताल रूपक और झप ताल। आइए पहले सुनते हैं ताल रूपक।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महफूज अली खां का तबला वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे ताल रूपक और झप ताल। इसी के साथ ही हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार। कार्यक्रम एक कलाकार सुन रहे सभी श्रोताओं को सीमा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए कलाकार के साथ। हमारे आज के कलाकार हैं जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर। आज राज कपूर जी की पुण्यतिथि है। हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से। आज हम बातें करेंगे उनके जीवन से जुड़ी और सुनवाएंगे उनके अभिनीत, निर्देशित और निर्मित फिल्मों की। राज कपूर जी का जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में, और आज ही के दिन 2 जून 1988 को दिल्ली में उनका निधन हो गया था। भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने गए, पहचाने गए, उन्होंने जो नाम ख्याति पाई वो अपने आप में अभूतपूर्व है। उनके जीवन से जुड़ी उनकी बातें हम करेंगे इस गीत के बाद।

0: श्रोताओं, राज कपूर पर फिल्माया ये गीत हमारे जीवन पर भी बिल्कुल सटीक बैठता है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां पर जीना मरना, उठना बैठना, रोना हंसना सब कुछ साथ साथ चलता है। उसके बाद भी जीवन चलता ही रहता है। चाहकर भी हम जीवन की इस भाग दौड़ से नहीं बच सकते, ना ही कहीं दूर जा सकते हैं। ये जीवन का परम सत्य, और यही राज कपूर जी ने अपनी फिल्मों में दिखाया। उन्होंने जो आरंभ की उनकी फिल्में रहीं, उसमें आज़ादी के बाद की जो देश में कमियां थी या जो भी सामाजिक परिस्थितियां थी, उनको उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्मों में दिखाया। उन फिल्मों में अब दिल्ली दूर नहीं और बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने की, आग, आवारा, श्री 420, अनाड़ी, ये सब फिल्में कोई ना कोई सामाजिक परिवेश को लेकर थी। इसके बाद उन्होंने जो फिल्में बनाई महिलाओं की भूमिकाओं को लेकर, समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, वो फिल्में रही बहुत ही सुपरहिट फिल्में उनकी, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, ये फिल्में उन्होंने निर्देशित की, और जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया वो भी काबिले तारीफ रहा। आइए एक और गीत सुनते हैं, फिर बातें करते हैं उनके जीवन से जुड़ी।
1: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए,
2: क्या
1: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
2: सपनों में देखा होगा
1: जी, मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

श्रोताओं, राज कपूर जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी 1935 में आई फिल्म इंकलाब, 1943 में गौरी और 1946 में बाल्मीक। इन फिल्मों में उन्होंने काम किया अपने पिताजी द्वारा स्थापित नाट्य मंडली पृथ्वी थिएटर में। और इसके अलावा उन्होंने जो बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी 1947 में आई फिल्म नीलकमल से, और इसमें उनके साथ में थी मधुबाला और बेगम पारा। इसके अलावा कुछ फिल्में आई, चित्तौड़, विजय, दिल की रानी, जेल यात्रा, ये सभी फिल्में भी 1947 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस से। 1948 में उन्होंने आरके फिल्म नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, और उनके जो प्रोडक्शन हाउस था उसके तहत बनी फिल्म आई थी 1948 में आग। ये फिल्म उनके निर्देशक और निर्माता दोनों के रूप में पहली फिल्म थी, और मात्र 24 वर्ष की आयु में वे भारत के सबसे युवा फिल्म निर्माता बन गए थे। 1949 में फिल्म आई थी बरसात, और 1951 में आई आवारा, बूट पॉलिश 1954 में, श्री 420 1955 में, और ये फिल्में भी बहुत सामाजिक परिवेश को, सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाती रहीं। एक फिल्म उनकी बहुत ही अच्छी फिल्म थी जो दर्शकों को उतनी समझ में तो नहीं आई, लेकिन जो उसमें संदेश था, जो उनके दिल की बात थी, वो थी 1956 में आई फिल्म जागते रहो। ये फिल्म भी बहुत अच्छी थी लेकिन थोड़ी लोगों को समझ में कम आई थी। इसके अलावा उनकी जो रोमांटिक फिल्में आई उनमें संगम 1964 में, और उनकी जो ये फिल्म थी बहुत ही हिट रही, इसके गीत बहुत पसंद किए गए। इसके अलावा उन्होंने रोमांटिक भूमिकाओं को निभाने के बाद साथ ही साथ उन्होंने चार्ली चैपलियन के जो हमारे सबसे प्रसिद्ध किरदार हैं उसके भी वो आसपास रहे। लोग उन्हें भारतीय चार्ली चैपलियन के रूप में जानते थे। उनकी छवि आवारा की तरह रही। कुछ फिल्मों में जैसे उनके फटे पुराने जूते, सूट और टोपी पहने हुए, उनके जो गीत थे उनकी छवि भी आम आदमी के बहुत करीब थी। लोग इसलिए उन्हें बहुत पसंद करते थे। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, खासकर मिडिल ईस्ट, सोवियत रूस में उनके गाने बहुत पसंद किए गए। उन्हीं का एक जो बहुत ही पसंद किया जाने वाला गाना है वो हम आपको सुनवाते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, राज कपूर जी को निर्माता निर्देशक के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन संगीत में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। संगीत की अच्छी समझ होने के कारण उनकी फिल्मों के जो गीत बनते थे, पहले एक बार उन्हें अवश्य सुनाए जाते थे। उनके बैनर के तले राज कपूर जी के जो संगीतकार थे, शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, विट्ठल भाई पटेल, रविंद्र जैन और गायक मुकेश मन्ना डे, सिनेमेटोग्राफर रघु करमकर और आर्ट डायरेक्टर प्रकाश अरोरा, राजा नवा थे। ऐसे साथियों की टीम थी जो कि पूरी तरह से समर्पित थी और उनके साथ बहुत ही हिट जोड़ी उन सभी की रही। उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई, सभी ने हिट गीत संगीत दिया और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद भी किया। बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम ही नहीं होगी कि राज कपूर जी ने भी गाने गाए हैं। जी हाँ, फिल्म दिल की रानी में उन्होंने जो फिल्म की थी, उसमें उन्होंने खुद गाना गाया था और ये फिल्म आई थी 1947 में और इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे सचिन देव बर्मन और नायिका थी मधुबाला। और जो ये गीत इन्होंने गाया था, उसका मुखड़ा है ओ दुनिया के रखवाले, बता कहाँ गया चितचोर, और एक गीत उन्होंने जेल यात्रा फिल्म में भी गाया था। ये तो

श्रोताओं, राज कपूर जी को मिले अवार्ड्स की बात की जाए तो 1960 में अनाड़ी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था और 1962 में जिस देश में गंगा बहती है, 1965 में संगम और 1972 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला मेरा नाम जोकर और संगम के लिए। 1983 में आई उनकी फिल्म निर्देशित फिल्म प्रेम रोग के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला और उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया गया था 1987 का, जो कि उन्हें 2 मई 1988 को दिया गया था। राज कपूर जी को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।

जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, ये लाइनें जो इस गीत में है हमारे जीवन में सटीक बैठती हैं। राज कपूर जी के जीवन में भी ये लाइनें बहुत सटीक रहीं। नियति को कुछ और ही मंजूर होता है, हमेशा हम यहाँ नहीं रह सकते, और एक दिन ऐसा आया कि राज कपूर जी इस दुनिया को अलविदा कह गए और पीछे छोड़ गए अपनी यादें, अपने गीत, अपनी फिल्में, उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए। कार्यक्रम के अंत में ये लाइनें इस गीत के माध्यम से कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की मुझे अनुमति दीजिए।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एक कलाकार। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपने देखने का अधिकार देती है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपकोसा माशातिले ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जनजन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण की समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। अब किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील दायर कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शिल नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा।

0: के राष्ट्रपति ओम इन ऑनलाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ओम इन ऑनलाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। यह मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में बजे हैं शाम के 5:05 और ये समय है कि हम अपने श्रोताओं को आज के शेष और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से अवगत करा दें।

श्रोता, आपसे कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय होंगे, उत्तराखंड में स्थानीय स्टार्टअप कल्चर क्या है, क्रॉसफिट एक्सरसाइज और उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद जिसका जिक्र मन की बात में भी हुआ था, सी बकथॉर्न के फायदों के बारे में भी आज जानकारी आप प्राप्त करेंगे इस कार्यक्रम युववाणी में। 5:45 पर सुनिए पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे चर्चा पर्यावरण और पर्यावरण विषय पर। साथ ही सुनिए कहानी एक गांव की अंतर्गत ग्राम कठुली खिरसू की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम। प्रस्तुति होगी विनय ध्यानी की।

रात 7 बजे आप सुन सकेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय होंगे गर्मी की गहरी जुताई और मक्के की खेती। साथ ही आप सुनेंगे डॉक्टर मंजू पाल से बातचीत, विषय रहेगा संक्रामक रोगों से पशु सुरक्षा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए आज शाम 7:40 पर। श्रोताओं, रात 8 बजे आप सुनेंगे संस्कृत वार्ता। आज की संस्कृत वार्ता का विषय होगा पर्यावरण संरक्षणे युवानाम भूमिका और वार्ताकार होंगी डॉक्टर साधना डिमरी। रात 8:10 का समय रहेगा विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 साल 12 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट का स्पॉटलाइट। इस कार्यक्रम का समय रहेगा रोज की भांति रात 9:15। इस कार्यक्रम का रिले हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

रात 9:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का, और खेल दर्पण कार्यक्रम का समय रहेगा आज रात 10:00। श्रोताओं, आज रात 10:30 का समय रहेगा आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। तो ये तो थी जानकारी आज के कार्यक्रमों की, और अब बारी है कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के।

विक्रम सरकार के 12 साल 12 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट। कल सुबह 8:30 पर आप सुन सकेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। श्रोताओं, कल दोपहर 12:30 का समय रहेगा कार्यक्रम जनानों का वास्ता का। कल इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमती शकुंतला भारद्वाज की वार्ता, विषय होगा खेलो मां पहाड़क नौनी। रात 7:50 पर हमारे श्रोता सुनेंगे विशेष कार्यक्रम राज्य दर्शन, जो आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति रहेगा। कल रात 8 का समय रहेगा अंग्रेजी वार्ता का। कल अंग्रेजी वार्ता का विषय रहेगा शेयर द रोड बिल्डिंग अ साइकिल फ्रेंडली फ्यूचर, और वार्ताकार होंगे मिस्टर अमरिंदर सिंह। कल शाम 5:10 पर हमारे श्रोता सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे चर्चा रोड रेज है खतरनाक, भारत में प्रबंधन के श्रेष्ठ संस्थान और प्रचार में करियर आदि विषय पर। 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं, और आइए सुनिए युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहां मैं सक्षम पंत
1: और मैं शिवानी कंडवाल आप सभी के बीच दोबारा हाजिर हो चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों और बेहतरीन फिल्मी गीतों के साथ। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी शाम अच्छे से बीत रही होगी। और इसी शाम को और खूबसूरत बनाते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला म्यूजिकल ट्रैक अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाज में फ्रॉम द मूवी दिल का जो हाल है।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
3: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
4: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
5: दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, खासकर युवाओं के। और वो विषय है उत्तराखंड के युवाओं के सपनों को नया उड़ान देने वाला।
6: जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थानीय स्टार्टअप कल्चर की।
5: दोस्तों, कुछ साल पहले तक जब हम करियर के बारे में सोचा करते थे तो ज्यादातर युवा नौकरी की ओर देखते थे, लेकिन आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं चाहता है बल्कि वो रोजगार पैदा भी करना चाहता है।
6: बिल्कुल सही कहा, और यही सोच स्टार्टअप कल्चर को दोस्तों बढ़ावा दे रही है। स्टार्टअप का मतलब केवल कोई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करना नहीं है, बल्कि किसी नई समस्या का नया समाधान प्रस्तुत करना भी स्टार्टअप कहलाता है।
5: उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में स्टार्टअप कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ के युवा स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक उत्पादों और पर्यटन को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर नए व्यवसाय शुरू कर रहे हैं।
6: बिल्कुल, उदाहरण के तौर पर कई युवा आज पहाड़ी जैविक उत्पादों, मिलेट्स यानी मोटे अनाज, स्थानीय हस्तशिल्प और होम स्टे व्यवसाय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं।
5: इसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और डिजिटल

0: सर्विसेज से जुड़े स्टार्टअप भी उत्तराखंड में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, स्टार्टअप कल्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, जब कोई युवा अपना स्टार्टअप शुरू करता है तो वो केवल ना खुद के लिए बल्कि और लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करता है।
1: और उत्तराखंड सरकार भी युवाओं को स्टार्टअप के लिए दोस्तों प्रोत्साहित कर रही है। विभिन्न योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फाइनेंशियल असिस्टेंस के माध्यम से नए एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है।
0: और आज तो कई कॉलेज और विश्वविद्यालय भी एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। युवाओं को नए विचार विकसित करने और उन्हें व्यवसाय में बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
1: हालांकि स्टार्टअप शुरू करना आसान नहीं होता। इसके लिए धैर्य, मेहनत, रिस्क उठाने की क्षमता और लगातार सीखते रहने का जज्बा भी होना बहुत जरूरी है।
0: लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा विचार है और उसे सफल बनाने का संकल्प है तो आज के समय में अवसरों की कोई भी कमी नहीं है।
1: और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अब सफलता के लिए बड़े शहरों में जाना जरूरी नहीं रह गया। डिजिटल तकनीक की मदद से छोटे शहरों और पहाड़ी क्षेत्रों में भी बड़े सपनों को साकार किया जा सकता है।
0: दोस्तों, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां केवल पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी अपनी पहचान बना रही है।
1: बिल्कुल, तो अगर आपके मन में भी कोई नया विचार है, कोई नई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढना चाहते हैं या ढूंढ सकते हैं, तो उसे सिर्फ सोच तक सीमित मत रखिए।
0: उसे एक अवसर में बदलिए, क्योंकि हर सफल स्टार्टअप की शुरुआत एक छोटे से विचार से ही होती है।
1: और कौन जाने, आपका स्टार्टअप ही आने वाले समय में उत्तराखंड की नई पहचान बन जाए।
0: तो दोस्तों, बड़े सपने देखिए, नए विचारों पर काम कीजिए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो अवसर का इंतजार नहीं करते बल्कि उन्हें खुद बनाते हैं। आइए दोस्तों, इसी विचार के साथ सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है बेनी दयाल ने और लिया गया है फिल्म बैंड बाजा बारात से।

0: होता है, जिसमें दौड़ना, कूदना, वजन उठाना, खींचना, ऐसी कई फंक्शनल एक्सरसाइजेज शामिल होती हैं। इसका मोटिव हमारी बॉडी को हर तरह की फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार करना होता है।
1: दोस्तों, क्रॉसफिट सामान्य जिम वर्कआउट से थोड़ा अलग और ज्यादा एक्टिव होता है और इसमें हर दिन एक नया वर्कआउट होता है, जिसे WOD यानी वर्कआउट ऑफ द डे भी कहा जाता है।
0: और दोस्तों, इसकी जो मुख्य एक्सरसाइजेस होती हैं वो हैं बर्पीज, पुलअप्स, स्क्वाट्स, केटल स्विंग और ओलंपिक वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइजेस। साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो सेशन होता है उसका टाइम करीब 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक चलता है।

0: दोस्तों, पहाड़ों में मिलने वाला एक छोटा सा फल आज पूरी दुनिया में सुपर फूड के नाम से जाना जा रहा है।
1: उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल के 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाने वाला सी बकथॉर्न सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं।
0: दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इसके फायदों का जिक्र किया और इसलिए इसे आधुनिक समय की संजीवनी बूटी या फिर वंडर बेरी भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, इस सुपर फूड के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बड़ा हेल्पफुल होता है। इसमें संतरे और आंवले से लगभग 100 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत बनाता है।
0: साथ ही दोस्तों, त्वचा और बालों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन ई और ओमेगा 3, 6, 7, 9 हमारी त्वचा को ग्लोइंग बनाता है, कोलाजिन को मजबूत करता है और साथ ही झुर्रियों को कम करने में मदद करता है।
1: और तो और, इस सुपर फूड जो है ये हमारे दिल को भी दोस्तों स्वस्थ रखता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है।
0: साथ ही दोस्तों, ये हमारे पाचन को भी बेहतर बनाता है। एसिडिटी, पेट में अल्सर या फिर पाचन संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसमें ये काफी लाभकारी होता है। साथ ही साथ ये हमारी गट हेल्थ को भी बेहतर बनाने में मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा सक्षम। और ये थकान को दूर करके हमें ऊर्जा भी देता है दोस्तों। नासा और भारतीय रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ ने भी इस पर रिसर्च की है कि ये सुपर फूड कठिन परिस्थितियों में भी हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मददगार होता है।
0: दोस्तों, इसी विषय पर चर्चा रहेगी जारी, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने और जिसे लिया गया है फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से।

0: दोस्तों, इस म्यूजिकल ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वंडर बेरी के नाम से जाने जाने वाले सी बकथॉर्न के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सी बकथॉर्न बेहद ही सेहतमंद होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये नुकसान या फिर साइड इफेक्ट्स भी दे सकता है दोस्तों।
1: हाँ दोस्तों, जैसे कि लो बीपी वालों का बीपी और कम हो सकता है, जिससे चक्कर भी आ सकते हैं, और ये शुगर लेवल को भी कम कर सकता है। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट्स को रेगुलर शुगर चेकअप कराते रहना चाहिए।
0: साथ ही किसी भी सर्जरी या फिर ऑपरेशन के कम से कम 2 हफ्ते पहले इसका सेवन बंद कर देना चाहिए, और ज्यादा मात्रा में लेने से दोस्तों स्टमक अपसेट भी हो सकता है कई बार।
1: इसीलिए सी बकथॉर्न का सेवन सही मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के साथ ही करना सबसे बेहतर माना जाता है दोस्तों।
0: फायदे तभी मिल पाएंगे इसके जब हम समझदारी और संतुलन के साथ इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल सही कहा सक्षम। दोस्तों, प्रकृति ने हिमालय को सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि सेहत का इतना बड़ा खजाना भी दिया है।
0: और साथ ही दोस्तों, इस खजाने का जो हमें उपयोग है वो भी बड़ी समझदारी के साथ करना पड़ेगा, तभी हम लोग खुद को स्वस्थ रख पाएंगे और इसे अपनी लाइफ में यूज़ कर कर इसे एक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे लिया गया है फिल्म धुरंधर से।

0: दोस्तों, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का,
1: मगर जाने से पहले आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा युवाणी कार्यक्रम कैसा लगा। हमें पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम युवाणी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल। और दोस्तों, हमारा पिन कोड है 248001। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731।
0: साथ ही दोस्तों, आप ईमेल द्वारा भी हम तक अपने संदेश व सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youth.ddn@gmail.com।
1: इसी के साथ आप मुझे यानी शिवानी कंडवाल
0: और मुझे यानी सक्षम पंत को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
1: नमस्ते।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युववाणी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। और आइए अब सुनते हैं पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

नमस्कार, सेवा सौंदी ग्राम जगत कार्यक्रम सुन वाला हमारा सभ्य सुन होता है पर दगड़िया शांति बिंजुला तरफा बजे उम्मीद करना छो आप लोग राजी खुशी वेला। आज मंगलवार एक दा फिर हाजिर छो आप एक सेवा मा ग्राम जगत लेकी। आज एक कार्यक्रम मा आप सुनी ली कहानी एक गांव की, ग्राम कठुली खिरसू की। स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित यू कार्यक्रम जेता है बटोली लाइन हमार दगड़िया विनय ध्यानी। यहाँ के अलावा रंत रेवार छुईबत लगे आप दगड़ और गीत लोक गीत आप रोजी सुन दी छन। तो इन कर दो कार्यक्रम की शुरुआत कर दो विजय सिंह सैलानी और मंजू सुंदरियाल का गया ये सुंदर सी गड़बली गीत से।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून

0: धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: सुंदरों रेबार से पहली आपन सुन मंजू सुंदरियाल और विजय सिंह सैलानी का सुरमा यो सुंदर सी गड़वल गीत और उम्मीद करना चो कि खूब लग गुलाब थे। और अब कार्यक्रम तक सरकंद हो ऐथर सुन दो कहानी एक गांव की ग्राम कठुली खिरसू की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जेथे बटोली लैन हमार दगड़िया विनय ध्यानी आवा कठुली चल दो।
3: नमस्कार मैं विनय ध्यानी आज जनपद पौड़ी को खिरसू ब्लॉक और वखा को एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध गांव कठुली में छू। पौड़ी खिरसू और कठुली अगर आप अन्य सुन तो फिर आप पौड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता। खासियत ये गांव की कि एक संपन्न समृद्ध और ऐतिहासिक गांव यख स्कूली भी बल आजादी से पहले के स्कूल जो की इंटर कॉलेज है और वे का अलावा अगर हम देखला तो पूरी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर च खेती बाड़ी या खूब हुंद। कई नामचीन लोग यानी प्रसिद्ध लोग ये गांव बटे की देश की प्रदेश की सेवा करना छन। इतना ही ना बल्कि जो क्षेत्र का विधायक छन वो भी ये ही गांव का छन। तो कुछ खास च ये गांव मा और इतना सगत गांव छ बल्कि तीन पंचायतों में ये था बटन पॉड। आवाज सबसे पहली जो यख ग्राम प्रधान छन उनसे बातचीत कर दा। नमस्कार आप अपनो क्या छ?
4: श्रीमती बबली देवी।
3: बबली जी पहले आप हम तक कठुली के बारे में बताएं कि जो तीन न्याय पंचायत छन उनका नौ क्या क्या छन कतना आबादी छ?
4: सबसे पहले सिंगोरी धरियो कुसली मीना गांव सिराण गांव
3: तीन ग्राम पंचायत हो गई। कुल मिला के कितना वोटर छन कितना जनसंख्या छ कठुली की अगर यूं तीन हम ग्राम पंचायतों तो मिलना
4: 705 वोटर।
3: खास क्या छ गांव में यख तीन पंचायतों में बटी हुई एक गांव और जैसा की पूर्व गढ़वाल जन उत्तराखंड जन क्या खास छे गांव में? खास एक बात ही मिनत ये देखी कि गांव में पलायन नहीं छे ताला नहीं लगा छे अभी भी है ना एक सुंदर पहल छे जबकि बुना छे सा पौड़ी जनपद का ज्यादातर गांव खाली हो गए लेकिन मिथायु भरपूर गांव दिखेणु छे। अच्छा विकास का कार्यक्रम क्या क्या चलाना छे ये बता आप अपन पंचायत।
4: रास्ता बढ़ना छे आजकल हाँ जी पंजर बढ़ना छी लाइट सोलर लाइट लगनी छी और खेती पुस्ता।
3: एक और बड़ी योजना ये बचलनी जैसे कि अब जी राम जी बोलाल वो क्या स्थिति
4: शुरू नहीं आई ना
3: क्या क्या कनक विचार छे कि साहब हम कठुली गांव में यू विकास कार्यक्रम कर ला आप प्राथमिकता क्या छे?
4: सबसे पहले तो अपना रास्तों ते साफ सुथरा रख ला सुंदर बनौला अपने गांव को घट बट हाँ जी
3: सुंदर च गांव और साफ सफाई भी हम तो दिखेणी छे गोर बछुर भी खूब पलिया छन। यखक लोक जीवन का बाबत यखक एक बुजुर्ग से जो कि सम्मानित छन और भलके किए गांव था पछाण दा छन उनसे बात करदा आपक नो क्या छे?
5: मेरा नाम सोहन सिंह नेगी।
3: नेगी जी हम तक गांव कठुली के बारे में बताएं जरस इतिहास हुए जा जरस भूगोल हुए जा जरस यखक लोक संस्कृति हुए जा।
5: इतिहास लिखित तो हम ते उन पता नहीं लेकिन जो किंवदंती या हमारे पुरखों बटी चनी छे तो काफी पुरान इतिहास छे और जो विदित चमते है वो 1804-5 में जब गोरखा हुई छे उबेर जो चिख रसगढ़ माँ बोल दो ना तो हमारा राजा लोग जो टेर का जो राजा बननी वो पहली पूरा गढ़वाल का छा वो भाग भागी ते यू धारो में नहीं बचाव को वास्ता एक उल्खा गढ़ी चे टॉप माँ हमारी मतलब सारा इलाका की 4-5 पट्टियों की देवी समझ लिया उख जो जो गोरखाओं आक्रमण करे तो उख अभी भी खंडक मिल दे नमते खाई जग बटे की अपनी सुरक्षा वास्ता सैनिक छुपदा छा और दुश्मन थे जो दिखने के बाद वो अपने आक्रमण करते रहे होला तो वो इतिहास हमारो छो खुटी जो चो गुड़ख्या गोरखा खाल वो गुड़ख्या जो चो गोरखाओं का नाम से पुणुच उख माँ भी जो चो स्टे बनाए बल्कि फुटी की एक नहर टाइप भी बनी इसका खी तो वो जो सीधा रसगढ़ जान छे पानी की।
3: नेगी जी आपन इतिहास बताया हम तो और हम तो ये मालूम छे कि लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा को क्षेत्रफल में गांव कठुली फैली छो। कब हुआ यू कि हमन तीन ग्राम पंचायतों में बदल दिया था?
5: यो 65 तक तो एक ही ग्राम पंचायत है सिंगुरी का नाम से चल छे फिर जो छो क्षेत्र बड़ छो जनसंख्या और बढ़ गई छे तो गवर्नमेंटल जो छो

0: सिमक देखो ली, तब जाके 2 ग्राम सा हुए एक धरगांव और एक हमारे सिंगोरी। फिर मूड़ जो काफी लंबे एरिया चुक भी, तो उन लोग जो मांग करके भाई हमारे विकास नहीं होना चाहिए कि इलाका विकास हो अलग पंचायत दिया, तब जाके तीसरी मिनान गांव का नाम से पंचायत बनी।
1: नेगी जी, आप हम तो ये बताएं कि लोक जीवन की अगर हम बात करा तो यख ऐतिहासिकता का हिसाब से हम सुन कि यख रामलीला बहुत पुरान च, ये का अलावा म्याला ख्वाला और बाकी और लोक सांस्कृतिक जो पछाण च वो क्या कठोली?
0: रामलीला तो 1954 बटी समझ लिया, लगभग 53 बटी शुरू हुई और हमारा जन्म होने से 1 साल पहले बटी शुरू हुई वे वहाँ भी जो हमारा दादाजी वो टाइम मिडिल का टीचर छया, तो उन शुरुआत करी च और ये गांव में एक लेफ्टिनेंट साहब है लाल सिंह बिष्ट जी धरगांव में, उन भी जो हमारा दादा दादी मिले थे जो स्कूल बुनियाद का वास्ता काम करी, तो लगभग 1925 में जो प्राइमरी स्कूल बुनियादी ही लुख रख चाहिए मजाक मजाक या उन प्रेरित कर लुख होता है कि भाई तुम वहाँ ढूंढ गाना हाँ तो एक कमरा बना दिया बरखा पानी वहाँ उख वहाँ बैठा रह लिया आप रोटी सब्जी उख वहाँ खा ले लिया, तो उन लोग कमरा बना और उख जो स्कूल ही शुरुआत कर दिया।
1: कठोली की एक खास बात हम तय सुन में जनन में ये है कि यख जन चेतना बहुत अच्छी छ, सब लोग जागरूक छन अपन विकास का प्रति, ये बाबत कनमा आप पूरा गाँव का लोग देख दे
0: प्रत्येक की चांद की हमारे विकास हो हम तो सुविधा मिलो, लेकिन अब जो अच्छा लोग था वो बहुत कम रहे हैं गाँव में, ज्यादातर पलायन करी थे अपना कई कारणों से, विशेष रूप से स्वास्थ्य भी था, जो बुजुर्ग छन तो जन रिटायर होंगे ना तो बोल उनकी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, चलो देहरादून या दिल्ली या अपना ना बड़ी मत चल जाना, लेकिन जब तक है शिक्षा है बात तो शिक्षा तो जो समाप्त समझ में चाहिए खे की कहले कि बच्चा अच्छे ही नहीं जो भी चाहे रोजगार का वास्ता बाहर निकल चो जख रोजगार करना चुख अपना बच्चों ते भी याद होना पाऊंगे, फिर एक स्कूलों में जो प्राइमरी में एक दो टीचर रहना गवर्नमेंट स्कूलों में, तो एक दो टीचर 5 क्लासेस का मत्था मनु, तो गवर्नमेंट इन चीज़ ते रियलाइज नहीं कर दे कि बुनियाद हम पक्की बना तब तो ऐसा बच्चा बढ़िया निकल तो वो कमी चे।
1: जो आम गांव का समण में समस्या खैरी च वो कठोली का समण में भी नजर आ गई कि शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार यख अभी भी एक समस्या का रूप में च। खास बात यह अच्छी कि पौड़ी जनपद च और खिड़सु ब्लॉक च दुयो बहुत नजीक च हमर गांव, तो ये गांव में जो विकास का कार्यक्रम छ ऊँता बहुत तेजी से आ जाने या ऊँता भी खेचण और निमाण पड़द आपक नो क्या च?
2: मी महेश थपलियाल ग्राम सिंगोरी। विकास का वास्ता साहब जो चिकी बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता, नजदीक मंडल मुख्यालय का बहुत नजदीक होने के बावजूद भी हम काफी पिछने चाह भी, जबकि हमारी बहुत बड़ी ग्राम सभा जन के आपते बताए विदित हुई लो कि 3 ग्राम सभा चने, लेकिन विकास का वास्ता हमते भी बहुत ज्यादा प्रयास अभी वर्तमान में कन पड़ो।
1: शिक्षा स्वास्थ्य की बात अभी नेगी जिन कार थपलियाल जी आप ही बताओ कि बाटा घाटों की क्या स्थिति, अगर यात्रा मार्ग की बात करे जा मोटर रोड की बात करे जा?
2: मोटर रोड तो वर्तमान में हम अच्छे चाहे, लेकिन हमारे एक विकल्प ही छो कि हमारे कैच गुड़ के खाल फड़कल चा, तो ये रोड जो उख मिल जान तो हमते बहुत सुविधा मिल जाती, जयपुर के हम बहुत ज्यादा प्रयासरत चा और वर्तमान में अभी थोड़ा सा ये पर अभी काम नहीं हो सके।
1: यू एक जो गाँव है ना वो दुई जगह था हम तो जोड़ दिन इना श्रीनगर भी और इना पौड़ी भी और खिरसू तो जब छही चे, तो पर्यटन का क्षेत्र में कभी गांव कठोली भी अपन हिकमत दिखाया कि चलो साहब हम भी पर्यटन का क्षेत्र में इथे रहना?
2: अभी वर्तमान में तो ये व्यवस्था हो नहीं सके, जबकि हमारा तो विचार छे चाहिए कि पर्यटन का क्षेत्र में हम भी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बांझ को जंगल चा और चारों तरफ बड़ी बांझ के जंगल से घिरी हुई गाँव चा, और हम भी चना की भी थोड़ा सा पर्यटन विकास हो बहर बड़ी लोगा और गांव का विकास हो, ये क्षेत्र में अभी हम थोड़ा सा पिछने छे।
1: धन्यवाद थपलियाल जी। जब गांव में पहुंचे तो लोग यखा का जिम्मेदार छन बल, कोई कखे जयो पुंगड़ियों में और कुछ खेती होनी छे, तो जो यखा को खास कह रही की खेती को जीवन छे वही का बाबत अब आपसे बात करना। नमस्कार, आपक नो क्या छे?
3: मेरा नाम नरेंद्र सिंह नेगी।
1: नरेंद्र जी आप ही बताए हम तक की यख खास करे की फसल पात खेती बाड़ी क्या छे?
3: खेती बाड़ी जो हमारे पारंपरिक खेती से पहली बटी की कोदो झुंगरो सट्टी और विभिन्न प्रकार की दालें वो आज भी होनी छन, लेकिन अब जो की पलायन का कारण भी और कुछ जंगली जानवरों का कारण खेती बहुत ज़्यादा बंजर छुटनी चा, और छोटी छोटी के बहुत गांव का नज़दीक ही लोग अब कर पाना छन और दूर जानो थे अब क्योंकि जंगली जानवरों में बहुत भय छा, तो ये वजह से वो दूर का खेत सब बंजर छुटना छन, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी लोग अभी पलायन से बचिया लोग सन घर मंगा वो लोग अपना खेती

0: सब कुछ ये चीजें करने लग्या छन, साग सगोड़ी अपना पुंगड़े में जो भी अनाज होंगे सब करने लग्या छन।
1: अगर अधिक मात्रा में देखे जा तो को फसल को उत्पादन आप करना छन, बागवानी में कि कृषि में सबसे ज्यादा उत्पादन हो?
0: दुई चीजों में कृषि में अपना जो की जो पारंपरिक मिल पहली बोली कि सट्टी और झंगोरा और मंडवा ये तो होने लगे चाह। अब लोगों जो पहले सिंचित भूमि से ही वो माँ बहुत कम रह गया सिंचित भूमि माँ अब लोगों को जोर और अब नज़दीकी जो साग सगोड़ा बागवानी लोग ज़्यादा करना अपना नज़दीक के खेतों में सब सगोड़ी बनी नहीं और उखी माँ अपना प्याज आलू और मिर्ची धनिया हल्दी वगैरह सब कुछ इखी माँ उत्पादन करना चाहिए लोग।
1: यानी खेती में अभी लोगों को रुझान छे, अब संबंधित विभाग अगर यक सुविधा और योजनाएं चलाने चे तो पक्के बात वो कुछ न कुछ असर दिखाल। पलायन की बात जख हमन शुरुआत में करी छे कि हम तो ये गांव में पलायन नहीं दिखा, लेकिन आप लोगों से बातचीत करी लगी कि ना थोड़ा बहुत पलायन का छोड़ ये गांव भी अपन मुख कनु छे। आखिर क्या काम हो सकद, क्या कारण हो सकते न यख सामाजिक कार्यकर्ता छन पत्रकार छन वो भल कई बता सकते ना हम तय आप अपनों क्या छे?
2: मैं नाम योगेंद्र सिंह रावत।
1: योगेंद्र जी आप बताएं कि गांव कठुली जो अपने एक गौरवमय इतिहास छ और वर्तमान में कुछ खास चुनिंदा समस्याओं से वो भी जूझणो छ, तो कनमा ये को निदान ढूंढना छन गांव का लोग?
2: ये में तो कई काम हो सकते ना, जन पर्यटन क्षेत्र में हो सकते और हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़े विकल्प हो सकते हैं। तो दो तीन चीज मतलब अब कर सकना क्या, लेकिन अब टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी कई तमाम चीज छनवे में, तो ये काम करिए हम मतलब गाँव थे एक इकोनॉमिकल मॉडल कर सकता।
1: जिनके हमने पहले भी बताया कि यख खेलों से जुड़े लोग, राजनीति से जुड़े लोग, पत्रकारिता से जुड़े लोग रहे, यानी कुल मिला के समृद्ध लोग रहे, तो वे को फायदा गांव तक मिल छ?
2: मिल छ जे अब जन किरसु छ, तो किरसु बटी लोग हुए एजुकेशन हुए, तो किरसु बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट छो पहले बस, तो वे बटी जो एजुकेशन ले तो वहाँ से बहुत फायदा हुए, लोग अच्छी पोस्ट पर छन, अच्छी नौकरी पर छन, वहाँ से भी फायदा हुए छे। पर पलायन एक बहुत बड़ो कारण छ जो मतलब कटली में भी दिखनु छ जाएगा सर।
1: राजनीतिक चश्मा से अगर हम देख लाते जो राजनेता छन या लोकतांत्रिक व्यवस्था छे ओख मा बड़ा गांव पर बड़ी नजर रख दिन लोग, तो जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि छन उनको लाड़ दुलार कुछ मिलो चाहिए गांव तक?
2: हाँ, जनप्रतिनिधि बंद छन जो भी क्षेत्र प्रतिनिधि छन, चाहे विधायक होगी चाहे मंत्री होगी, कटली तो भ्रमण छ, पर अभी भी कई मामला में बहुत कुछ हो सकते, मतलब बहुत संभावनाएं छन गाँव में जो हो सकते।
1: गाँव कठुली में विकास के बहुत संभावनाएं छे बल, और जन की अभी तक हम चर्चा करी कि पर्यटन का क्षेत्र में भी ये गौत है, अगर कुछ अवसर मिल दें तो यह लोकुत है रोजगार मिलल स्वरोजगार मिलल, सड़क यातायात भी अगर दुरुस्त हो जा तो बहुत कुछ यक विकास का कार्यक्रम संचालित करे जा सकते। जणा पछणा पत्रकार ये बत विमल नेगी हमारे दगड़ छन, आप बताओ नेगी जी कि कनमा हम देखना छुआ गाँव कठोली को भविष्य?
3: एक्चुअली इतना बड़ा क्षेत्रफल मेरे ख्याल से कह भी गाँव पौड़ी डिस्ट्रिक्ट वहाँ जितना बड़ो क्षेत्रफल, खाली सिंगोरी ग्राम सभा ये गाँव में कठली गाँव में तीन ग्राम सभा छन, लेकिन वही में जो सबसे ऐसे ग्राम सभा छ सिंगोरी ग्राम सभा, ये सबसे बड़ो एरिया है, सबसे बड़ो क्षेत्रफल छ, और एक पर्यटन से लेके तमाम किस्म के जो रोजगार की और भी कई किस्मों के संभावना ये गाँव में छे। अभी हम चर्चा करना चाह कि चकबंदी की बात करना चाह, तो चकबंदी इतना बढ़िया बड़ा एरिया में बहुत अच्छा ढंग से ये गाँव में हो सकता, और आपल पर्यटन की बात करें हमारे सबसे नजदीक हिम जो छ 5 किलोमीटर दूर NIT बनु, और ये अभी तक हमारी रोड जो छ ये सिंगोरी बिटी की और मथे गुड़ के खाड़ फड़क्याल जो छ ये मिन 3 किलोमीटर स्वीकृत भी छ, लेकिन 3-4 साल हो गए, 3 साल से ज्यादा टाइम हो गए, 3 साल पहले स्वीकृत हो गए थे, लेकिन अब तक जो लाइनों को अलाइनमेंट नहीं हुए, अभी तक जो वे पर जो बजट पारित नहीं हुए, अभी भी जो 3 किलोमीटर जो आधा तक जानी पूरा सड़क तक नहीं बनी, तो अगर ये सड़क हमारे बन जाए तो ये से थोड़ा सीधा एक बड़ी जो श्रीनगर की दूरी कम हो जली, क्योंकि वो जो बिडोल छू छा पावो साइड छा वे साइड का लोग भी सब इन्हें बिटी आला, और ये बुआखाल हुए की इन्हें बिटी की हमारे गांव हुए की जो NIT हुए की और श्रीनगर खंडा हुए की श्रीनगर जा सकते, तो ये एक अच्छू रूट ये बन जोलो, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छू ये रोड बन ली, और ये साथ ही साथ ये गाँव में थोड़ा बेरोजगारी की समस्या काफी छा, सरकार अगर प्रयास करो स्वावलंबन का वास्ता, अगर जो उद्योगों का वास्ता और लघु उद्योगों का वास्ता अगर सरकार की तरफ पाँच बटी इमदाद मिल जाओ तो बहुत अच्छा मतलब जो काम ये गाँव में हो सके तो काफ अभी भी ये गाँव में पलायन तो छे लेकिन अभी भी बहुत लोग अभी भी अपने जड़ जमे लोगों की मतलब गाँव में खूब चहल पहल छ अच्छी रौनक छ और अगर कोई कन पर आ जाओ माना जन पशुपालन छ पशुपालन बहुत अच्छा मतलब डेयरी फार्म बहुत अच्छा चल सकता ये मछली पालन हो सकता और भी छोटा मोटा जितना भी उद्योग छ वो उद्योग धंधा ये गाँव में हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा पहल करने जरूरत है थोड़ा हमारे प्रतिनिधियों से भी देखना चाहूँ चाहे कि कै हम कै ढंग से जो है ऐसा बढ़ा सकते हैं तो ये सारी चीज अगर ये गाँव में हो जाए तो मेरे ख्याल से कुछ न कुछ डेवलपमेंट इसमें जरूर हो
1: सटीक टिप्पणी आप रहे कि सच में अगर जो जनप्रतिनिधि छन उनको रुझान उनको दिलचस्पी यख विकास में होली तो पक्की बात सड़क भी हुए जाली रोजगार का संसाधन भी जुटला पर्यटन से हमारा जो जवान दगड़ा छन उनता स्वरोजगार मिलल पलायन पर जो कि कम जी यख वे पर भी रोक लग सकत और सच बात तो यह कि ये ऐतिहासिक गांव का ठीक समय में जो एक इन बोले जा इंजीनियरिंग संस्थान NIT वे से भी ये गांव तक कुछ न कुछ जुड़े जा सकल आने वाले समय ये गांव को उज्जवल भविष्य हम तय दिखेणु यख का लोग अपन गांव का विकास का खातिर सतत प्रयासरत छन ये उम्मीद का दगड़ी कि आने वाले समय में कठोरी नए स्वरूप में हम तय दिखा लू ये कामना का दगड़ी में विनय ध्यानी ब्लॉक खिरसू का गांव कठोली बटे के वापस लौटो छो अपन आकाशवाणी स्टूडियो।

0: सुंदरों, अभी आप सुनना चाहे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम कहानी एक गांव की, और गांव छाए कठोड़ी को खिरसू, और प्रस्तुत करना चाहे हमारे दगड़िया विनय ध्यानी। सुंदरों, कन लाग आप थे हम ते चिट्ठी के माध्यम से जरूर बताया, हम ते आपे की प्रतिक्रिया को जगाल राल। हमारो ईमेल को पता जे चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com। और अब कार्यक्रम में सुन दो दया शंकर फुलारा का स्वर मा कुमाऊनी झोड़ा लोक गीत, गीत का ऐथर पैथर छन रंतरे बार।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: सुंदरो, अभी आप सुनना चाहे दया शंकर फुलारा का स्वरमा कुमाऊनी झोड़ा लोकगीत। लोकगीता का ऐतर पैतर छे रंतरे बार। और अब बात कर दो पर्यावरण की। पर्यावरण उस समस्त प्राकृतिक परिवेश जो हमारे जीवन थे प्रभावित कर दू। हवा, पानी, धरती, आगास, वन, नदी, पशु पक्षी, वनस्पति और ये सब भी मन की मिली की पर्यावरण को निर्माण कर दिन। यूं फरे ही मन की को अस्तित्व निर्भर छे। अगर पर्यावरण संतुलित और स्वच्छ रालू तो हम सब स्वस्थ रोला, सुरक्षित रोला। यू पर्यावरण ही जो हम तय शुद्ध हवा, पानी, भोजन, दवे और जरूरी संसाधन प्रदान कर दू। लेकिन आज का समय में जनसंख्या की वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, जंगलों को अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण संकट बढ़नु छ। जैसे कुबक्त की बरखा, बाढ़, सूखा, रियाड़ भ्याड़ जने संकट पैदा होनु छ, नए नए बीमारी पैदा होना छन। तो आज जरूरत छ पर्यावरण थे संरक्षित करने की। प्राकृतिक संसाधनों को सोच समझे की विवेकपूर्ण जैकुन बुलदन प्रयोग करे जा। ज्यादा से ज्यादा डाल लगे जावन, अनावश्यक वन निकटेवन, जो जल स्रोत छन हमारा वो साफ रखे जावन, सुरक्षित रखे जावन, संग्रहित करे जावन। प्लास्टिक को कम उपयोग करे जा, बरखा को पानी को संग्रह करे जा। और हम सब की जिम्मेदारी छ कि पर्यावरण के प्रति समाज में हम जागरूकता फैलावा, खास कर नई पीढ़ी तक। पर्यावरण की रक्षा ही मनुष्य को पहलू कर्तव्य छ। जब पर्यावरण सुरक्षित रालू तभी जीवन भी सुरक्षित राल। तो इच छे पर्यावरण की छुई खारी होगी। और अब अग्नि सरक दो और सुन दो जगत लाल डोगरा का स्वरमा जौन सारे लोग गीत। पर पहले सुन ला रे बार।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जगतलाल डोगरा का स्वर मा अभी आप सुनना चाहे जो अंसारी लोकगीत और लोकगीत से पहले अपन सुन रह बार तो सुन दरो मठमोट के की समाचारों भगत होने च तो लिया सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से

0: उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। धामों में क्षमता के अनुरूप दर्शन व्यवस्था के लिए एसओपी बनाने के निर्देश दिए। टिहरी जिले में देवप्रयाग के पास एक कार के नदी में समा जाने से 3 लोगों की मौत, 4 अन्य लापता लोगों की तलाश जारी। पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख व्यापार मार्ग से भारत तिब्बत सीमा व्यापार लगभग 7 वर्षों के बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल। और चमोली जिले की नीति घाटी में आयोजित 3 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का समापन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। उन्होंने चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या के अनुरूप दर्शन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही चार धाम यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मानसून अवधि के लिए सभी विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त मशीनरी, सैटेलाइट फोन, एम्बुलेंस और राहत बचाव उपकरणों की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसी भी आपात स्थिति या मार्ग बंद होने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।
4: आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग भी इस बैठक में थे और मानसून के निमित्त ही जो है आज ये बैठक में प्रमुख रूप से इस पे भी चर्चा हुई है कि जहां पर ऐसे संवेदनशील स्थान है जहां सड़क बंद हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है या आपदा की स्थिति हो सकती है, वहां पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे पोकलैंड हो, चाहे वहां पर जेसीबी हो या कोई आपदा के वाहन हो या स्वास्थ्य वाहन हो या हेली एम्बुलेंस हो, उन सभी पर आज विस्तृत रूप से बात हुई है कि जहां भी जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप आगे काम।
3: टिहरी जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवप्रयाग के पास आज एक कार गहरी खाई में गिरकर नदी में समा गई। बचाव दल ने मौके से 3 लोगों के शव बरामद किए हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को अस्पताल भेजा गया है। 4 अन्य लापता लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ, पुलिस और जल पुलिस की टीमें नदी व आसपास के संभावित क्षेत्रों में सघन खोज अभियान चला रही हैं। चंपावत जिले के विभिन्न निकायों में स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत निकायों में लोक कल्याण मेले और शिविरों का आयोजन कर पीएम स्वनिधि योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि आज बनबसा से इस महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को योजना का लाभ दिलाना है।
5: इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे वेंडर्स हैं, जिन्होंने कोरोना काल में जिनको सरकार ने कार्यशील पूंजी इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई थी, उन लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त कराए जाने के लिए और ज्यादा इस योजना का लाभ पहुंचाए जाने का उद्देश्य है और ज्यादा से ज्यादा ऐसे और लोगों को चिन्हित करना जिनको हम इस योजना का लाभ दिला सके। योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारा वेंडर है इस योजना के अंतर्गत, उनको 15,000, 25,000 और 50,000 3 चरणों में लोन का लाभ दिया जाता है और ये सब्सिडाइज लोन रहता है। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की सब्सिडी इसमें उपलब्ध रहती है। तो जिसका मैं आज से नगर पंचायत बनबसा जो हमारी कार्यक्रम का स्टार्ट कर दिया गया है, शुरुआत कर दी गई है।
3: वहीं लक्ष्मी ने बताया कि स्वनिधि महोत्सव के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे काफी लाभ मिला है।
6: आज पीएम स्वनिधि योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 8 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया, जिसमें पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, मातृ वंदना योजना और वन कार्ड का राशन कार्ड का, जिसके उपलक्ष्य में कई सारे विभाग से अधिकारियों का हमारे नगर पंचायत सभागार में आना हुआ। यहाँ पर अत्यधिक लोगों ने उसका लाभ उठाया है।
7: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र।
3: खेल मंत्री रेखारिया ने आज हल्द्वानी गोलापार स्थित प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। वन विभाग से भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद खेल मंत्री पहली बार प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय परिसर पहुंची। इस दौरान उन्होंने परिसर के लिए चल रहे समतलीकरण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय प्रदेश के खेल भविष्य की मजबूत नींव साबित होगा। श्रीमती आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के चलते यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब धरातल पर उतर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि खेल विश्वविद्यालय उत्तराखंड को देश के अग्रणी खेल राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
7: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
3: पिथौरागढ़ जिले में स्थित ऐतिहासिक लिपुलेख व्यापार मार्ग से भारत तिब्बत सीमा व्यापार लगभग 7 वर्षों के बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। इससे सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि विदेश मंत्रालय द्वारा व्यापार संचालन के लिए आवश्यक ट्रेड परमिट जारी कर दिए गए हैं तथा उनका वितरण व्यापारियों और उनके सहायकों को किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीमा व्यापार के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। व्यापार कार्यालय और कस्टम कार्यालय सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित कर दी गई हैं।
8: भारत चीन जो व्यापार है वो प्रारंभ होने जा रहा है और इसके संबंध में सारी तैयारियां जो है जिला प्रशासन के द्वारा पूरी की जा चुकी हैं। ट्रेड पासेज जो आने थे वो जनपद में प्राप्त हो चुके हैं और संबंधित जो व्यक्तियों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं हमारे, बाकी ट्रेडर्स के एंड पे भी कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है जिनको पूरा कर रहे हैं, तो इसी वीक जो है उनके द्वारा ट्रेडर्स के द्वारा भी वहां पर फील्ड में भी जो है इसको प्रारंभ कर लिया जाएगा जो व्यापार है। बाकी हमारे एंड से ऑफिस जो वहां पे खुलने थे वो सभी ओपन हो चुके हैं, सारी तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं और ट्रेडर्स रेडी हैं। अब इसी वीक जो है धरातल पे ट्रेड का जो प्रभाव है वो भी देखने लगेगा।
3: वहीं व्यापार अधिकारी और धारचूला के उपजिलाधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि धारचूला में ट्रेड कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले ही दिन करीब 15 व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और आवेदन प्रक्रिया लगातार जारी है।
9: 7 साल के बाद 2019 के बाद 2026 में आज यहाँ पे ट्रेड कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जितनी गतिविधियां हैं वो यहाँ से आज विधिवत प्रारंभ होंगी। इसके क्रम में हमने भारत सरकार से 300 ट्रेड पास की मांग की थी जो कि हमारे पास पहुंच चुके हैं और व्यापारियों से लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान तक हमारे पास लगभग 10 से 15 आवेदन आ चुके हैं। इसके क्रम में SIB की जाँच इसमें उसके लिए भेजा गया है। जैसी जाँच हमारे पास इसकी पुष्ट होकर आएगी इसके तुरंत बाद ट्रेड पास जारी कर दिए जाएंगे और व्यापारी फिर लिपुलेख के रस्ते से ट्रेड अपना दोबारा से शुरू कर सकते हैं।
3: चमोली जिले की नीति घाटी में आयोजित नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आज समापन हो गया। अंतिम दिन गमसाली से मलारी के बीच आयोजित 30 किलोमीटर MTB माउंटेन बाइकिंग चैलेंज प्रतियोगिता में देश भर से आए 100 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में खरिक सिंह अडोनिस तांगपू पहले स्थान पर रहे जबकि सूरज राणा मगर ने दूसरा और प्रकाश थापा मगर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला वर्ग में अवनी डरियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। संध्या मौर्य दूसरे और इंद्रा कुमारी तमांग तीसरे स्थान पर रही। पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना और ITBP के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन में देश के 27 राज्यों से आए 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और युवाओं में फिटनेस एवं साहसिक खेलों के प्रति जागरूक करना है। पूरे आयोजन के दौरान नीति घाटी खेल, साहस, संस्कृति और पर्यटन गतिविधियों का जीवंत केंद्र बनी रही। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना संरचना को लेकर आज आयोजित समीक्षा बैठक में सभी विभागों को जनहित आधारित व्यवहारिक और नवाचार युक्त योजनाएं प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों और प्रस्तावों को शामिल करते हुए जिले के संतुलित व समग्र विकास को ध्यान में रखकर जिला योजना संरचना तैयार की जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। धामों में क्षमता के अनुरूप दर्शन व्यवस्था के लिए एसओपी बनाने के निर्देश दिए। टिहरी जिले में देवप्रयाग के पास एक कार की नदी में समा जाने से 3 लोगों की मौत, 4 अन्य लापता लोगों की तलाश जारी। पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख व्यापार मार्ग से भारत तिब्बत सीमा व्यापार लगभग 7 वर्षों के बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल। और चमोली जिले की नीति घाटी में आयोजित 3 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का समापन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: प्रादेशिक समाचारों का बाद एक दा फिर स्वागत चे आप सभी सुंदरों को अपनी लोकप्रिय भाषा लोक भाषा को ये कार्यक्रम ग्राम जगत मा जता आप सुनना चेने आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी और मिछो आपे दगड़िया शांति बिंजला त सुंदरों 47 वर्ष बटे की आप ग्राम जगत सुनना चेन शुरू दिन बटे न और आज तलक यू कार्यक्रम लगातार लोकप्रिय रहे। इन यात्रा का साक्षी आप और हम छवा तो एक दा फिर से इन यात्रा थे याद कर दो और सुन दो यू खास कार्यक्रम।
2: आठ जून 2026 अपनी आकाशवाणी का 90 साल पूरा होने वाला छन। यूं 90 सालों में एक कार्यक्रम 47 साल बटे की लोकप्रियता को सबसे ऐंच पायदान पर रहे और वो च उत्तराखंड की लोक भाषाओं को कार्यक्रम ग्राम जगत। 1978 में आकाशवाणी नजीबाबाद से शुरू हुई कि यू कार्यक्रम आकाशवाणी पौड़ी अल्मोड़ा और देहरादून पहुंच गए। 60-70 का दशक में गढ़वाली कुमाऊनी संगीत दिल्ली और लखनऊ केंद्र बटे की उत्तराण कार्यक्रम का अंतर्गत प्रसारित होन शुरू हो गया था।

0: 47 साल बटेकी ग्राम जगत कार्यक्रम पूरी तौर पर बोली भाषा गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी मा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित करी की आज भी श्रोताओं का बीच पहली पसंद बन्यो छे।
1: खासकर आकाशवाणी का जो कार्यक्रम छे जो कि रीजनल कार्यक्रम छे जो हमारे लोग बहुत ज्यादा संपर्क में छे, प्रासंगिकता और साथ में ये की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई। या तो आपके ग्राम जगत कार्यक्रम से मैं ये बता दूं कि इन लोगों से गढ़वाली बोल सिखा देने सबसे
2: रेडियो की आज भी वही महत्व से जो आज से 3 दशक पहले छे। बिल्कुल जो दूरस्थ क्षेत्र से ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र वहाँ आज भी रेडियो लोग वही उत्सुकता से सुनना जो पहले छे, क्योंकि जनसंपर्क को साधन आज भी रेडियो था। रेडियो की महत्ता आज भी वही छे, चाहे वो जो समाचारों का क्षेत्र में हो, चाहे वो जानकारी का क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति संरक्षण का क्षेत्र में हो। और आकाशवाणी देहरादून तो ये मामला में बहुत अच्छा प्रयास की।
0: कुजानी कतना लोक कलाकारों थे आकाशवाणी ना पहाड़ का जनमानस तक पहुँचे की उन्हें प्रसिद्धि दिले।
3: जो भयों की होने होली वो कठराला अनमिल भयों को लोग ठटाला।
0: जीत सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी, गोपाल बाबू गोस्वामी, हीरा सिंह राणा, महेश तिवाड़ी, कपोत्री देवी, प्रीतम भरतवाण जना कतना ही नौछन जौन आकाशवाणी का माध्यम से अपनी पहचान बने।

गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी बोली भाषा का दगड़ ही लोक संस्कृति, लोक संगीत और लोक जीवन पर आधारित कार्यक्रम ग्राम जगत ना सिर्फ स्टूडियो में ही कार्यक्रमों को निर्माण नहीं करी, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र का सुदूरवर्ती गांव-गांव पहुंची की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम ग्राम जगत की सबसे बड़ी ताकत बनी। स्कूल नांतिनो आज किलकारी कार्यक्रम प्रस्तुत करनी च हाई स्कूल सुनाऊ जो की थराली ब्लॉक के एक स्कूल छ।

0: बड़ी सुविधा है सब कुछ नीचे प्लस हॉस्पिटल तो चीज लेकिन दीदी का सुविधा है हम तो बाहर ही जान पड़े और जो सुविधा भी होता धीरे धीरे लेकिन क्या करे पलायन ज्यादा हो गया गाँव में लोग भी कम छे यहाँ को सही सुविधा जागरूकता बिल्कुल कम हो गई।
1: आकाशवाणी का 90 साल और ग्राम जगत कार्यक्रम का 47 साल से ज्यादा कुछ समय पहाड़ का गोंगों की छुई लगांदू हुंगरा पुरांदू ग्राम जगत इन्हीं एथर बढ़नु च
2: ग्राम जगत की 47 वर्षों की यात्रा अपन सुन और अब सुन दो रेणु बाला का स्वरमा गड़वल गीत।

रेणु बालक का गया ये गीत गिदगढ़ संपन्न होनु चु हमारो आज को ग्राम जगत कार्यक्रम भो नई अंक लेकी आप एक सेवा मा फिर उपस्थित होला। तब तक वास्ता पर दगड़ा शांति बिंजोला था दया अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बाट गडोहीमा प्रादेशिक समाचारको दगड मी दीपक सिंह रावत। पहली मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समुदाय सहित सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास पर बल दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली, चारधाम यात्रा प्रबंधन का मूल मंत्र सुरक्षित यात्रा, सौंग दर्शन और लगातार संवाद होने चाहिए। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा से संबंधित भ्रामक सूचनाओं पर झटझटाक और असरदार कार्रवाई के निर्देश दे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी में नेशनल यूथ मुए थाई चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कैरी और देवप्रयाग के निकट वाहन दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु, संभावित लापता लोगों को तलाश होने राहत और बचाव अभियान जारी। अब समाचार एक छोड़ बटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन छ, यू लोगों तय आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बढ़ान। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों तय संबोधित कर दबे राष्ट्रपति ने बोली कि सह विकास तभी संभव छ जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति कराला।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने बोली कि केंद्र सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय को युवाओं तय सशक्त बाण और उनको उत्थान करना खुण लगातार प्रयास करनी च। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोली कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला समझ नहीं आई। मंत्रालय ने सलाह दी कि इन मनखी जो पिछला 21 दिन में इबोला प्रभावित देश में यात्रा कैरी आया छन और उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना कई स्पष्ट कारण का रक्त स्राव जन लक्षण दिखाला तो वो स्वयं तय लोगों से अलग कैरी लिया। मंत्रालय ने बोली कि इन मनखी स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों थे झट से सूचित करें। नागरिक हेल्प नंबर 1075 पर कॉल कैरी की जानकारी ले सकदिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोली कि चारधाम यात्रा प्रबंधन के मूल मंत्र सुरक्षित यात्रा, सौंग दर्शन और लगातार संवाद होण चैणु। आज देहरादून में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करदा हुए उन दर्शन व्यवस्था तय सुव्यवस्थित बाण खुड़ मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करण पर जोर दे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दे कि रात 10 बजे बटे सुबह 4 बजे तक चारधाम यात्रा मार्गो पर वाहनों के आवागमन पर लगियों प्रतिबंधक सख्ती से पालन सुनिश्चित करे जाओ। मुख्यमंत्री गढ़वाल आयुक्त और आईजी गढ़वाल थे चारधाम यात्रा के व्यवस्थाओं को नियमित समीक्षा करण और श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों समस्याओं को झटझटाक समाधान सुनिश्चित करना खुण बोली। उन यात्रा से जुड़िया सभी जिलों को जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों थे व्यवस्थाओं को लगातार निगरानी और असरदार संचालन सुनिश्चित करने को निर्देश दे। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्था की समीक्षा कैरी। बैठक में यात्रा के दौरान समण आनी समस्याओं, चुनौतियों और उनको निराकरण खुण अलग अलग विभागों के अधिकारियों से सुझाव भी लिए गए। बैठक में यात्रा से संबंधित भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों को रोकथाम पर विशेष चर्चा करे गए। आयुक्त ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर प्रसारित भ्रामक खबरों को नियमित निगरानी करण और भ्रम फैलाने वालों को विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
2: जो समस्याएं आ रही हैं अभी चारधाम यात्रा के अंतर्गत, उनको मैंने अधिकारियों से जाना है और उनके लिए लोग क्या उपाय कर रहे हैं उसको मैंने देखा है और इन्हें सुझाव जो उनके और आए हैं

के बारे में भी हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा की है। जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको सकुशल दर्शन कराने, कोई वापसी सुनिश्चित करने सकुशल, इसके लिए हम लोग बैठ करके अभी रणनीति तैयार किए हैं। यात्रा के बारे में किसी भी प्रकार की गलत न्यूज न जाए और अफवाह न फैले, इसको देख

0: आप यो गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून बटे सुनना छो। खेल मंत्री रेखा आर्यन आज नैनीतालक गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम नेशनल यूथ मुए थाई चैंपियनशिप 2026 उद्घाटन कैरी। ये अवसर पर खेल मंत्री ने बोली कि मुए थाई केवल एक खेल नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का उत्कृष्ट माध्यम छ। उन्होंने बोली कि प्रदेश में विकसित होने वाला आधुनिक खेल ढांचा और खिलाड़ियों थे उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं के कारण देशभर के खिलाड़ी राज्य में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना छन। श्रीमती आरन बोली कि सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति थे मजबूत करना खोण निरंतर कार्य करनी छ। खिलाड़ियों थे बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराना खोण कई महत्वपूर्ण पहल करेगा जहां अच्छे परिणाम अब देखना खोण मिलनु छ। चमोली जिले के नीति घाटी में 3 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के आखिर दिन आज गमसाली बटे मलारी के बीच 30 किलोमीटर MTB चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। ही प्रतियोगिता में देश भर से आया 100 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग ले। पुरुष वर्ग के MTB चैलेंज प्रतियोगिता में खरी कसिंग ऑर्डिनिस तांगपू ने प्रथम स्थान प्राप्त करी जबकि महिला वर्ग में अवनी डरियालाल ने प्रथम स्थान हासिल करी। ही प्रतियोगिता का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों थे बढ़ावा देन, स्थानीय संस्कृति थे राष्ट्रीय पहचान दिलान और युवाओं में फिटनेस और साहसिक खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ान च। टिहरी जिला में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवप्रयाग के निकट आज एक वाहनक गहरी खाई में गिर जाने से वाहन सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गया। दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए जैथे उपचार खोण अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार अन्य संभावित लापता मनखों को खोज खोण खोज और बचाव अभियान जारी छ। पिथौरागढ़ जिला में स्थित ऐतिहासिक लिपुलेख व्यापार मार्ग से भारत तिब्बत सीमा व्यापार लगभग 7 वर्षों के बाद फिर से शुरू होने च। ये से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल च। जिलाधिकारी आशीष भटगाइन बताए कि विदेश मंत्रालय द्वारा व्यापार संचालन को आवश्यक ट्रेड परमिट जारी करे गया और उनको वितरण व्यापारियों और उनके सहायकों थे करे जानो च।
1: भारत चीन जो व्यापार है वो प्रारंभ होने जा रहा है और इसके संबंध में सारी तैयारियां जो है जिला प्रशासन के द्वारा पूरी की जा चुकी हैं। ट्रेड पासेज जो आने थे वो जनपद में प्राप्त हो चुके हैं और संबंधित जो व्यक्तियों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जो ट्रेडर्स हैं हमारे। बाकी ट्रेडर्स के एंड पे भी कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है जिनको पूरा कर रहे हैं, तो इसी वीक जो है उनके द्वारा ट्रेडर्स के द्वारा भी वहां पर फील्ड में भी जो है इसको प्रारंभ कर लिया जाएगा जो व्यापार है। बाकी हमारे एंड से ऑफिस जो वहां पे खुल रहे थे वो सभी ओपन हो चुके हैं, सारी तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं और ट्रेडर्स रेडी हैं। अब इसी
0: हल्द्वानी वन प्रभागन पक्षी विविधता को वैज्ञानिक आकलन खुण अत्याधुनिक वन्य जीव रिकॉर्डर और कृत्रिम बुद्धिमता आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत कैरी। प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमारन बताए कि उत्तराखंड वन विभाग ई पहल के तहत आधुनिक तकनीक का उपयोग कैरी चखलू और वन्य जीवों को निगरानी करे जाली।
2: देखिए हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा जो वन क्षेत्रों में पक्षियों की निगरानी करने के लिए एकाउस्टिक रिकॉर्डर का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें ये वन क्षेत्रों के भीतर इनको लगाया जा रहा है और ये लगातार जो है जो पक्षियों की आवाज जो है रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसके जो डेटा है उसका विश्लेषण किया जाता है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनके उस पर अपलोड करके, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो AI और मशीन लर्निंग का यूज करके जो उनके बर्ड्स के जो कॉल है उनके जो साउंड है उसके आधार वो उसके प्रजाति का जो है पता लगाते हैं।
0: आखिर में मुख्य समाचार एकदा फिर से।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समुदाय सहित सभी वर्गों को सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास पर बल दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली, चारधाम यात्रा प्रबंधन के मूल मंत्र सुरक्षित यात्रा, सौंगू दर्शन और लगातार संवाद होने चैणु। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूपन चारधाम यात्रा से संबंधित भ्रामक सूचनाओं पर झटचटाक और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दे। खेल मंत्री रेखा आर्यन ने हल्द्वानी में नेशनल यूथ मुए थाई चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करी और देवप्रयाग के निकट वहां

0: दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, संभावित लापता लोगों को तलाश खून, राहत और बचाव अभियान जारी। यहाँ का दगड़म गढ़ोली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त होंदू। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान साथियों नमस्कार। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम कृषि जगत में आप सभी का स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ आपके बीच उपस्थित हूं मैं महेंद्र कौर। किसान भाइयों कैसे हैं? हम उम्मीद है कि आप एकदम ठीक होंगे। और भाई हम भी आज के कार्यक्रम में आपके लिए जानकारी और मनोरंजन तो लेकर आए ही हैं, साथ ही हम बातचीत तो करते ही रहेंगे। देखो इस समय गर्मी बहुत हो रही है और इस गर्मी के मौसम में अपने खेतों की गहरी जुताई करने के बहुत सारे फायदे होते हैं जो हमें इस समय करने चाहिए, जो कि खेत की उर्वरता बढ़ाने और फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई करना बहुत लाभदायक माना जाता है। इस कार्य के लिए मिट्टी पलटने वाले हल या रिवर्सिबल प्याऊ का उपयोग किया जाता है। गहरी जुताई से मिट्टी की कठोर परत टूट जाती है जिससे वर्षा का पानी अधिक मात्रा में भूमि में समा जाता है और भूमि में नमी का संरक्षण बेहतर होता है। साथ ही गर्मी की तेज धूप के संपर्क में आने से मिट्टी में छिपे अनेक कीट और अंडे और लार्वा नष्ट हो जाते हैं और विभिन्न रोगों के कारक जीवाणु और फफूंद भी काफी हद तक नियंत्रित हो जाते हैं। खरपतवारों के बीज और जड़ें भी सतह पर आ जाने के कारण सूखकर नष्ट हो जाते हैं जिससे आगामी फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। गहरी जुताई से मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है और जैविक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व अधिक आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेत समतल करने और वर्षा जल संचय की दृष्टि से भी ये बहुत उपयोगी कृषि क्रिया है। किसान भाई ध्यान रखें कि जुताई के बाद खेत को कुछ समय खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की किरणों का पूरा लाभ मिल सके। तो गर्मी की जुताई अवश्य करें और बातचीत तो हो ही रही है, आपका मनोरंजन भी कराएंगे, पर पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान साथियों, अभी आपने सुने संदेश और देखिए आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक जानकारी पशुपालन से संबंधित लेकर आए हैं, लेकिन जानकारी को सुनने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन और सुनते हैं ये रागनी।

0: किसान साथियों, लोकगीत आपको कैसा लगा ये हमें अवश्य बताएं। और देखिए, जिस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। इस मौसम में संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना कुछ ज्यादा ही रहती है और हमारे पशुओं को भी संक्रामक रोग बहुत अधिक परेशान करते हैं। तो अपने पशुओं को संक्रामक रोगों से हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, हम इस संबंध में आज आपके लिए एक जानकारी लेकर आए हैं। विषय है संक्रामक रोगों से पशु सुरक्षा, और इस संबंध में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर मंजू पाल, और आपसे बातचीत कर रहे हैं विकास चमोली। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू पाल। और डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे कि गर्मियों में किस तरह के संक्रामक रोग हैं जो पशुओं को प्रभावित कर सकते हैं, और कैसे जो हमारे पशुपालक साथी हैं उन रोगों से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर मंजू पाल, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: जी। डॉक्टर साहब, अगर हम संक्रामक रोगों की बात करें तो जैसे कि गर्मियों का ये समय है और आने वाला समय बरसात का होने वाला है
2: जी,
1: तो किस तरह के संक्रामक रोग होने के ज्यादा चांस रहते हैं?
2: आजकल आप देख रहे हैं कि गर्मियां काफी हो रही हैं और साथ साथ बीच बीच में कभी कभी बारिश भी हो जा रही है। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी और एकदम से बारिश हो रही है तो अक्सर तनाव की वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से भी जानवर की इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। तो पशु बहुत सारे रोगों के लिए प्रोन हो जाता है कि उसको वो रोग ग्रसित कर सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं इस मौसम में, कुछ वायरस और बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते भी हैं, तो कुछ संक्रामक बीमारियां ऐसी हैं जो बड़े पशुओं में भी और छोटे पशुओं में भी हो सकती हैं।
1: अच्छा।
2: तो बड़े पशुओं में प्रमुख रोग जो इस समय हो सकते हैं वो है गलगोटू, या बारिश और गर्मी के मौसम में होने वाली गंभीर बीमारी है और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें पशु को बहुत तेज बुखार आता है, सांस लेने में परेशानी हो जाती है और गले में सूजन आ जाती है और घर घर की आवाज करता है पशु, और बहुत जल्दी इसमें पशु की मृत्यु होने की दर भी बहुत ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे गाय और भैंस है उनको खुरपका मुपका रोग भी हो सकता है। यह रोग विषाणु के द्वारा होता है और इसमें पशुओं के खुर में और पशुओं के मुंह में छाले पड़ जाते हैं और बहुत तेजी से फैलता है। ये मतलब हवा की डायरेक्शन में ही ये रोग फैलना शुरू हो जाता है। इसमें पशु के मुंह में और जीभ में और खुरों के बीच में छाले पड़ जाते हैं, छोटे छोटे अल्सर टाइप के हो जाते हैं, तो पशु को चलने में भी परेशानी होती है और खाने के मुंह में छाले हो जाते हैं तो पशु खाना नहीं खा पाता, तो उसकी उत्पादकता भी गिरती है और उसका स्वास्थ्य भी डाउन होता चला जाता है। और कभी कभी अगर अनदेखा कर दिया जाए तो पशु के पैरों में अगर कीड़े पड़ सकते हैं और जो मुंह का अल्सर, मुंह में जो छाले थे वो अल्सर के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे पास, जैसे हम छोटे पशु पालते हैं, बकरियां या भेड़ पालते हैं, तो उसमें इस मौसम में होने वाला प्रमुख संक्रामक रोग है पीपीआर। ये भी बेहद संक्रामक वायरल बीमारी है जो कि गर्मियों के मौसम में और या बदलते मौसम में बहुत तेजी से फैलती है। इसमें भी जो बकरियां हैं उनमें बहुत तेज बुखार होगा, आंखों और नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा और बकरियों को दस्त भी हो सकते हैं। इसमें भी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है और पूरा का पूरा फ्लॉक, आपको एक या दो दिन में ही मृत्यु हो जाती है पूरे फ्लॉक की। इसके अतिरिक्त बकरियों

0: में एक और समस्या होती है इस मौसम में, खासतौर से एंटेरोटॉक्सिमिया, या भी बीमारी जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अगर आपने अचानक से दाना बदल दिया या एकदम से नया हरा चारा दिया है तो जानवर के पेट में गैस बन जाती है और जहर बनता है, जिससे बकरी के पैर अकड़ जाते हैं। और कुछ ही घंटों में जैसे पशु चर के आया और 4-5 घंटों के बाद ही या शाम को चर के आया और अगले दिन सवेरे मॉर्निंग में आपको लगेगा कि हाँ भाई पशु की मृत्यु हो गई है। तो ये एक प्रमुख बीमारियां हैं जो संक्रामक बीमारियां हैं जो इस मौसम में हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि आप जैसे मैंने आप पहले भी बताया कि वायरस और बैक्टीरिया को पनपने के लिए अनुकूल मौसम मिलता है और जानवर की इम्यूनिटी कम हो जाती है,
1: जी
0: तो उसमें क्या है कि पशुओं में फिर गर्मी के मौसम में थनैला रोग होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। थनैला में क्या है कि इससे नमी हो रही है, नीचे नमी है, गंदगी है, अगर पशु ताजा भी आया हुआ है तो पशु के थन में बैक्टीरिया का संक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है और दूध उत्पादन कम हो जाता है। अगर अनदेखा किया जाएगा तो
1: जी
0: बहुत बार ऐसा होता है कि पशु के थन में से दूध आना ही बंद हो जाता है और वो दूध उस ब्यात में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो हमको ये संक्रामक तो नहीं है लेकिन गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में होने वाली प्रमुख बीमारी है ये।
1: जी
0: और आजकल आप देखिए ना जिस टाइप से मौसम में एकदम से प्रतिकूल गर्मी पड़ रही है तो हीट स्ट्रोक भी बहुत ज्यादा हो रहा है पशु में। अगर आपने पशु को तेज धूप में रखा है या फिर लू लग जा रही है, पशु का तापमान एकदम से बढ़ जा रहा है और लार टपकने लगती है, पशु अपनी बॉडी को के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता तो उस वजह से पशु सुस्त हो जाता है। और छोटे पशु हैं उनमें बहुत बार लू लगने या गर्मी की हीट स्ट्रोक की वजह से मृत्यु भी हो सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम सावधानियों की बात करें, क्योंकि ये संक्रामक रोग हैं और जैसे आप बार बार बता रहे हैं कि ये बहुत तेजी से फैलते हैं, तो
0: जी
1: पशुपालक को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हम मौसम के अनुसार हम अपने पशु का रख रखाव कैसे करें। सबसे पहले पशु के लिए एक अच्छा बाड़े की व्यवस्था होनी चाहिए, हवादार बाड़ा हो, और अगर बाड़े में हवा लगातार बनी रहे, साफ सफाई बनी रहे, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो बाड़े के ऊपर पुआल डाली जा सकती है या फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए पशुपालक जो है बोरे डाल सकते हैं और उसके ऊपर लगातार पानी का छिड़काव करते रहे तो सवेरे या शाम या दिन में जब तेज धूप होती है तो उस समय टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो सकता है। और अगर आप खुले में बांध रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो जहां हवा और छायादार वृक्ष है उनके नीचे ही बांधे। इसके अतिरिक्त साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है हमें इस मौसम में, तो हमेशा लगातार बीच बीच में पशुपालकों को फिनाइल से या फिर चूने का छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि जो भी परजीवी हैं और मक्खी मच्छर परजीवी हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों के लिए वाहक का भी काम करते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है और बैक्टीरिया और जो विषाणु जो है जो आसपास वातावरण में रहते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो वो एक डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं वो पशु से और बीमारी को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमको क्योंकि जैसे पहले भी कहा गया है जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए हमको बचाव ही ज्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि एक बार पशु को जब अगर बीमारी हो जाएगी तो इलाज में भी खर्चा होता है, उत्पादकता बहुत कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पशुपालक को दोहरा मार पड़ती है।
1: जी
0: तो उसके लिए कि गर्मी के मौसम की शुरुआत से ही पहले ही आपको गलघोटू का और खुरिया रोग का, FMD जो खुरपका मुंहपका रोग कहा जाता है, गाय और भैंसों में आपको टीके लगवा लेने चाहिए। ये टीके 3 महीने से ऊपर के सभी पशुओं में लगते हैं और पशुपालन विभाग संबंधित पशुपालन विभाग उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश जो है
1: जी
0: वो हमेशा लगातार ये फ्री में ही आपके द्वार पे जाके ही टीकाकरण का कार्यक्रम चलाता भी है। इसी तरीके से बकरियों के लिए भी PPR का टीका और एंटेरोटॉक्सिमिया का टीका उपलब्ध है और पशुपालकों को जिनके बड़े फ्लॉक हैं या फिर जो छोटे फ्लॉक वाले भी हैं तो उनको भी सामूहिक रूप से जरूर टीका जरूर करवाना चाहिए।
1: जी
0: इसके अतिरिक्त क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं पशु को देखभाल की गर्मी के मौसम में, तो जब तक हम उनका खान पीन भी अच्छा नहीं करेंगे तब तक उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं होगी। तो पशु को खान पीन में उनको सुपाच्य और हरा चारा देना चाहिए और गर्मी के मौसम से बचाने के लिए खासतौर से आहार में थोड़ा सा नमक और खनिज मिश्रण की जरूर डाल देना चाहिए ताकि पशु की इम्यूनिटी बनी रहे और उसका स्वास्थ्य बना रहे।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि टीकाकरण कराया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा पशुओं को, सरकार भी चाह रही है कि उनका
0: जी
1: टीकाकरण हो,
0: जी
1: तो कब कब हमारे पशुपालक साथियों को ये टीकाकरण कराने चाहिए?
0: देखिए, टीकाकरण का अगर मैं सरकारी का हम बात करूं तो टीकाकरण का समय निर्धारित होता है। अभी जैसे अभी टीकाकरण का कार्यक्रम चला था कि मान लीजिए अप्रैल मई में शुरू हो जाता ताकि बरसात से पहले सारे टीकाकरण पूर्ण कर लिए जाए।
1: जी
0: तो अभी जैसे PPR है जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो लोग अभी भी अपने नजदीकी पशु सेवा केंद्र, पशु चिकित्सालय में जाके PPR का टीका लगवा सकते हैं सामूहिक रूप से। और ऐसे ही जब अक्टूबर नवंबर में जब सर्दी का मौसम होता है तो तभी भी टीकाकरण की ड्राइव चलाई जाती है और तभी भी पशुपालकों को जरूर अपने वहां पे टीकाकरण करवाना चाहिए।
1: जी, तो सरकार द्वारा क्या डॉक्टर साहब ये टीकाकरण मुफ्त में कराया जाता है या पशुपालकों को कुछ इसके लिए पे भी करना होता है?
0: ज्यादातर टीकाकरण जो है अब मुफ्त किए जा रहे हैं, FMD का टीका भी मुफ्त में किया जा रहा है, PPR का टीका भी मुफ्त में लगवाया जा रहा है। कुछ टीके ऐसे होते हैं जो कि पशुपालकों को अपने जो रियायत दर पे दिए जाते हैं, जैसे कि गलघोटू का टीका है उसको रियायत दर पे किया जाता है, एंटेरोटॉक्सिमिया का टीका भी रियायत दर पे लगवाया जाता है, लेकिन FMD का टीका और लंपी डिजीज का टीका और PPR का टीका मुफ्त लगवाया जा रहा है।
1: जी डॉक्टर साहब, क्योंकि संक्रामक रोगों की आज हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पशु इन
0: जी
1: रोगों से ग्रसित है
0: जी
1: तो फिर हमारे पशुपालक को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, जब बात होती है संक्रामक की तो अगर पालने कोई पशु अगर आपका ग्रसित हो ही जाता है तो सबसे पहले आपको अपनी गौशाला में उस पशु को सेपरेट कर देना है, मतलब उसको उस पशु को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग
1: जी,
0: रखना
1: क्योंकि
0: है।
1: कई बार पशुपालक जो है एक ही जगह पे उनको
0: जी
1: घास
0: जी
1: चारा ये
0: जी
1: सब दे रहा
0: जी
1: होता है।
0: बहुत बार पशुपालक की समस्या भी हो जाती है कि उनके पास जगह की समस्या होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपको ऐसे प्रबंध करना है कि आप स्वस्थ पशुओं को अलग रखें और बीमार पशु को अलग रखें। बीमार पशु का जो चारा दाना पानी जो भी है वो आप अलग से दिया जाना चाहिए, उसको स्वस्थ पशुओं के साथ दाना चारे में नहीं बुलाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो बीमार पशु के नीचे आप जो बिछावन डाल रहे हैं उसका भी डिस्पोज आपको अलग तरीके से करना है, अलग करना है, या तो उसमें चूने का छिड़काव लगातार करा के रखिए या फिर उसको जला दीजिए। और जो व्यक्ति उसकी देखभाल कर रहा है वो भी पहले स्वस्थ पशुओं की देखभाल करे, उसके बाद फिर वो बीमार पशुओं की देखभाल करे और अपने हाथों को भी अच्छी तरह से धोए, ताकि जो बीमारी है एक दूसरे से संपर्क में आने से या मलमूत्र के साथ एक दूसरे के संपर्क में आने से या लार के माध्यम से एक दूसरे पशुओं को फैले नहीं।
1: जी डॉक्टर साहब, उपचार की बात करें, वैसे तो हमारे पशुपालक हमने देखा है कि घर में भी तरह तरह के
0: जी
1: उपचार
0: जी
1: करते रहते हैं, लेकिन क्या सही तरीका रहेगा, डॉक्टर के पास कब जाना है?
0: देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, अब जैसे खुरपका मुंहपका बीमारी है तो उसमें आपको पता है कि अगर पशु के मुंह से लगातार छाले दिखाई दे रहे हैं और लगातार लार टपक रही है, पशु कहीं पे चलने में परेशानी दिखा रहा है और आपके इसके पैरों के बीच में आपको लाल लाल चकत्ते से दिखाई दे रहे हैं, छाले दिखाई देने लग गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी गौशाला में खुरपका मुंहपका रोग का आक्रमण हो चुका है। तो आपको नजदीक के पशु सेवा केंद्र, पशु चिकित्सालय में जरूर जाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप खुद भी, अगर आप बहुत दूर रहते हैं, खुद खुद भी कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या है कि आपके आपके पास लाल दवाई का पानी हो या कॉपर सल्फेट हो तो उससे आप उनके पैरों को धो सकते हैं और मुंह में कत्था भी लगा सकते हैं, ताकि जो जैसे फिटकरी हो गई या कत्था हो गया उसको आप मुंह पे चारों तरफ लेप लगा सकते हैं, ताकि उसके मुंह के छाले जो है वो जल्दी से आसान तरीके से ठीक हो जाए। और पशु को बहुत हार्ड चारा ना, सूखा चारा ना देकर आपको मुलायम चारा देना है, ताकि जो जो घाव हुए हैं अगर आप सूखा चारा देते हैं तो जब पशु खाना की कोशिश करता है तो और ज्यादा घाव बढ़ते जाते हैं। अगर मुलायम हरा चारा दिया जाता है तो पशु को इतनी परेशानी नहीं होगी और जो घाव भरने में भी आसानी होगी, पशु जल्दी ठीक हो जाएगा।
1: जी, कई पशुपालक जो है अपने पशुओं को चुंगाने के लिए बेचते हैं, और अक्सर ये सुना भी गया है कि अगर बाहर पशु जा रहा है तो कई तरह के संक्रामक रोग लेके वो आ सकता है, तो कितनी सच्चाई है डॉक्टर साहब इसमें?
0: बिल्कुल सही बात है, ये तो पशुपालक जो एक उन्नत पशुपालक है, समझदार पशुपालक है, उसको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर उसका पशु बीमार हो गया है तो वो अपने पशु को एक स्थान पे ही, एक आइसोलेटेड स्थान पे बांध के रखे और उसे पशुओं को चरने ना भेजे, क्योंकि जब अगर पशु चरने जाता है तो और लोगों के पशु भी सब एक साथ चारागाह में इकट्ठे होते हैं।
1: जी
0: बहुत बार अगर मान लिया खुरिया रोग हो रखा है उसको, उसके मुंह में से लार टपकती रहेगी तो वो जो लार है उसमें भी वायरस होता है, वो और ज्यादा बीमारी को फैलाता है। और पशु को जैसे मलमूत्र के माध्यम से भी बहुत बार बीमारी हो सकती है, बहुत बार ऐसा होता है कि मक्खी मच्छर काटते हैं और बीमार पशु को काटते हैं, वो फिर दोबारा से स्वस्थ पशु को काटते हैं, तो वो भी एक वाहक की तरह काम करते हैं। तो जब भी आपका पशु बीमार हो तो 2-4 दिन जब तक वो बीमार है उसके स्वास्थ्य के लिए भी और एक सामुदायिक महत्व को देखते हुए भी पशुपालकों को अपने बीमार पशु को चारागाह में नहीं भेजना चाहिए।
1: जी, तो डॉक्टर मंजू पाल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे तमाम पशुपालक साथियों तक पहुंचाई कि किस तरह से हमारे पशुपालक गर्मियों में संक्रामक रोगों से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। आप स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत आभार,
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका।
2: गर्मियों में पशुओं के संक्रामक रोग और उनसे बचाव, किसान साथियों, इस संबंध में अभी आपने डॉक्टर मंजूपाल से ये जानकारी सुनी। उम्मीद है इस जानकारी से आप अपने पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल सही ढंग से करेंगे और अब कुछ जानकारी मक्का की खेती के बारे में हो जाए। देखिए किसान साथियों, मक्का देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है, जिसका उपयोग भोजन, पशु आहार तथा उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। मक्का की अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। खरीफ मौसम में इसकी बुआई सामान्यतः जून से जुलाई के बीच की जाती है। बुआई से पहले खेत की अच्छी तैयारी करना आवश्यक है और उन्नत किस्मों और संकर बीजों का चयन अधिक उत्पादन की कुंजी है। बीज की बुआई कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर तक रखें। बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए, जिससे बीज जनित रोगों से बचाव हो सके। मक्का की फसल में संतुलित पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि खरपतवार पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो किसान साथियों, यदि आप इस समय मक्का की फसल बोना चाह रहे हैं तो आप सभी कृषि क्रिया समय पर करें और मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। और किसान साथियों, बहुत देर से बातें ही हो रही हैं, तो अब करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं ये लोकगीत।

आपने सुना लोकगीत, इस लोकगीत से मनोरंजन अवश्य हुआ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्र लिखकर अवश्य बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन कोड 248001। इस पते पर हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। और अब इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की मुझे यानी महेंद्र कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसानों का अपना कार्यक्रम कृषि जगत 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों तगण मी योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय समुदायक दगण सभी वर्गों सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास पर जोर दियो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को चार धाम यात्रा प्रबंधनक मूल मंत्र, सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद होने चैन। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूपल चार धाम यात्रा है संबंधित भ्रामक सूचनाओं पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दी। खेल मंत्री रेखा आर्याल हल्द्वानी नेशनल यूथ मुए थाई चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करो और देव प्रयागक नजदीक वाहन दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु, संभावित लापता मैशों की तलाशक लीजिए, राहत और बचाव अभियान जारी। अब समाचार विस्तारल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को की शिक्षा सशक्तिकरण एक शक्तिशाली साधन छू। यो मैशू कहें आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनी। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों के संबोधित करते हुए राष्ट्रपति को की सही विकास तब है सकू जब समाजक सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूपल प्रगति करो।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति को की केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम जनजातीय समुदायों के जवान नंतिनू के सशक्त बनाने और उनर उत्थान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय को की देश में आज तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया। मंत्रालय सहादी कि यस मैच जो पिछड़ 21 दिनों में इबोला प्रभावित देशों की यात्रा कर बेहरी उनके ज्वर, मुने पीड़ और मांसपेशियों में पीड़, दस्त या बिना स्पष्ट कारण रक्तस्राव होने जैसे लक्षण दिखाई दे रहा तो खुद के और लोगों है बे अलग कर लियो। मंत्रालय को की यस मैच स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के तुरंत जानकारी दियो। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करबे ले जानकारी ली सकनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को की चार धाम यात्रा प्रबंधनक मूल मंत्र, सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद होने चैन। आज देहरादून में चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक अध्यक्षता करते हुए नूल दर्शन व्यवस्था के सुव्यवस्थित बनाना लीजिए, मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करण पर जोर दियो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दी कि रात 10 बजे बटी रत्ती 4 बजे तक चार धाम यात्रा मार्गों पर वाहनों के आवागमन पर लगाई गई प्रतिबंधक सख्ती पालन कराई जाओ। मुख्यमंत्री गढ़वाल आयुक्त और आईजी गढ़वाल के चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करण और श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों समस्याओं त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिले को उन्होंने यात्रा है जुड़ी सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के व्यवस्थाओं को सतत निगरानी और प्रभावी संचालन करने के निर्देश दी। गढ़वाल मंडलक आयुक्त आनंद स्वरूपल रुद्रप्रयागम केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करी। बैठक यात्रा के दौरान सामने आ रही समस्याओं, चुनौतियों और उनर निराकरण के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों हेत सुझाव ले ली गई। बैठक में यात्रा है भी जुड़ी भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों की रोकथाम पहले चर्चा करी गई। आयुक्तल सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर प्रसारित भ्रामक खबरों की नियमित निगरानी करण और भ्रम फैलाने वालों खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को
2: जो समस्याएं आ रही हैं अभी चार धाम यात्रा के अंतर्गत उनको मैंने अधिकारियों से जाना है और उनके लिए लोग क्या उपाय कर रहे हैं उसको मैंने देखा है और इन्हें सुझाव जो उनके और आए हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा की है। जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको सकुशल दर्शन कराने, कोई वापसी सुनिश्चित करने सकुशल, इसके लिए हम लोग बैठ करके अभी रणनीति तैयार किए हैं। यात्रा के बारे में किसी भी प्रकार की गलत न्यूज न जाए और अफवाह न फैले, इसको देखते हुए मैंने सभी को सचेत किया है कि अगर कोई पुराने खबर, पुरानी वीडियो के आधार पर कोई न्यूज प्रसारित करता है तो उसके खंडन प्रत्येक दशा में किया जाना चाहिए और जो लोग अगर मिसक्रिएंट हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए।
0: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। खेल मंत्री रेखा आर्याल आज नैनीतालक गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में नेशनल यूथ मुए थाई चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करो। यो मौक पर खेल मंत्री को की मुए थाई सिर्फ एक खेल नहन बल्कि अनुशासन आत्मविश्वास शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता उत्कृष्ट माध्यम छू। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकसित हो रही आधुनिक खेल ढांच और खिलाड़ियों के दी जा रही सुविधाओं कारण देश भर खिलाड़ी राज्य में अपूर्ण प्रतिभा प्रदर्शन कर रही। श्रीमती आर्याल की सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति के मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे। खिलाड़ियों के भल प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल करी जा रही जिन्हें सकारात्मक परिणाम अब देखने लीजिए मिले रही। चमोली जिला नीति घाटी में 3 दिनी नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक आखिरी दिन आज गमशाल बटी मलारिक बीच 30 किलोमीटर एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन करेगो। यो प्रतियोगिता में देश भर बटी आई 100 से ज्यादा प्रतिभागियों उत्साहपूर्वक भाग लियो। पुरुष वर्गक एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता में खरक सिंह अडोनिस तांगपुलल पली स्थान प्राप्त करो जबकि महिला वर्ग अवनी डरियालल पली स्थान हासिल करो। यह प्रतियोगिता का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के बढ़ावा देन स्थानीय संस्कृति के राष्ट्रीय पछाण दिलान और युवाओं में फिटनेस और साहसिक खेलों प्रति जागरूकता बढ़ान छो। टिहरी जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवप्रयागक नजदीक आज एक वाहनक गहरी खाई में गिर जाणल उमें भेटी 3 जणिया की मौत है गई। दुर्घटना में एक मैच गंभीर रूपल घायल है गई जिके इलाज लीजिए अस्पताल में भर्ती कराई जरो। अधिकारियों के मुताबिक अन्य संभावित लापता मैचों की तलाश रख लीजिए खोज और बचाव अभियान जारी छो। पिथौरगढ़ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक लिपुलेक व्यापार मार्ग बटी भारत तिब्बत सीमा व्यापार लगभग 7 सालों बाद फिर से शुरू हो जा रो। येल सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल छो। जिलाधिकारी आशीष भटगाइल बता कि विदेश मंत्रालय बटी व्यापार संचालक लीजी आवश्यक ट्रेड परमिट जारी करहनी और उनर वितरण व्यापारियों और उनर सहायकों के करी जा रो।
3: भारत चीन जो व्यापार है वो प्रारंभ होने जा रहा है और इसके संबंध में सारी तैयारियां जो है जिला प्रशासन के द्वारा पूरी की जा चुकी हैं। ट्रेड पासेज जो आने थे वो जनपद में प्राप्त हो चुके हैं और संबंधित जो व्यक्तियों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जो ट्रेडर्स हैं हमारे। बाकी ट्रेडर्स के एंड पे भी कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है जिनको पूरा कर रहे हैं तो इसी वीक जो है उनके द्वारा ट्रेडर्स के द्वारा भी वहां पर फील्ड में भी जो है इसको प्रारंभ कर लिया जाएगा जो व्यापार है। बाकी हमारे एंड से ऑफिस जो वहां पे खुल रहे थे वो सभी ओपन हो चुके हैं। सारी तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं और ट्रेडर्स रेडी हैं। अब इसी वीक जो है धरातल पे ट्रेड का जो प्रभाव है वो भी देखने लगेगा।
0: हल्द्वानी वन प्रभागल पक्षी विविधता वैज्ञानिक आकलनक लीजिए अत्याधुनिक वन्य जीव रिकॉर्डर और कृत्रिम बुद्धिमता आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत कर है। प्रभागीय वनाधिकारी कुंदर कुमारल बता कि उत्तराखंड वन विभागक यो पहलक तहत आधुनिक तकनीकक उपयोग कर चाड़ और वन्य जीवों की निगरानी करी जाए।
4: देखिए हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा जो वन क्षेत्रों में पक्षियों की निगरानी करने के लिए वह एकाउस्टिक रिकॉर्डर का प्रयोग किया जा रहा है इसमें ये वन क्षेत्रों के भीतर इनको लगाया जा रहा है और ये लगातार जो है जो पक्षियों की आवाज जो है रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद उसके जो डेटा है उसका विश्लेषण किया जाता है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनके उस पर अपलोड करके और वो जो सॉफ्टवेयर है वो AI और मशीन लर्निंग का यूज करके जो उनके बर्ड्स के जो कॉल है उनके जो साउंड है उसके आधार पर वो उसकी प्रजाति का जो है पता लगाते हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार आए सुनो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय समुदाय दगर सभी वर्गों सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास पर जोर दियो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को चारधाम यात्रा प्रबंधनक मूल मंत्र सुरक्षित यात्रा सुगम दर्शन और सतत संवाद हुण चैन। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूपल चारधाम यात्रा है भी संबंधित भ्रामक सूचनाओं पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दी। खेल मंत्री रेखा आर्याल हल्द्वानी में नेशनल यूथ मुए थाई चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करो और देवप्रयागक नजदीक वाहन दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु संभावित लापता मैशों की तलाशक लीजिए राहत और बचाव अभियान जारी। यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार

0: चारुक यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 7:40। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं का स्वागत इस बेहद मधुर गीत के साथ। गीत को कलमबद्ध किया है हसरत जयपुरी ने और आवाज है मोहम्मद रफी की।

श्रोता 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और अब अगला गीत ऐसा जो खुद ही अपने बारे में बता दे, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: सदा तुम ही शबाब हो।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। और आइए अब सुनते हैं देहरादून आरएनयू की विशेष प्रस्तुति सप्ताह सार।
2: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून से मैं जयवीर सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं प्रत्येक मंगलवार को प्रसारित होने वाला हमारा विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार, जिसमें हम बात करते हैं सप्ताह भर की उन तमाम बड़ी खबरों की जो आपको जाननी जरूरी हैं और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रही। तो शुरुआत करते हैं जनपद चमोली के फूलों की घाटी से। श्रोतो, चमोली स्थित विश्व धरोहर व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए 1 जून 2026 से खोल दिया गया है। क्षेत्रीय रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि सुबह से ही पर्यटकों का पंजीकरण शुरू हो गया था, जिसके बाद पहले दिन ही 65 से अधिक पर्यटक फूलों की घाटी की सैर के लिए रवाना हो चुके थे। घाटी में 300 से अधिक प्रजातियों के पुष्प व दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटक इस अनोखी प्राकृतिक धरोहर के दीदार के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने से इस घाटी के पर्यटन व्यवसाय को भी नई ऊर्जा मिली है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण के लिए फूलों को तोड़ने व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचने की अपील की है। श्रोताओं, इसके साथ ही मसूरी स्थित IDPP अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के साथ 133 नए अधिकारी बल में शामिल हो गए हैं। 50 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अधिकारियों ने राष्ट्र की सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ ली। समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को ITBP की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि IDPP देश की सीमाओं की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्रोतो, साथ ही देश भर में 1 जून से राष्ट्रीय व्यापी खेत बचाओ अभियान शुरू हो गया। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों और खेती के भविष्य के रूप में महत्वपूर्ण अभियान बताया। अभियान के तहत किसानों को संतुलित उर्वरक, मिट्टी परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और नकली खाद बीज की पहचान जैसे विषयों पर जागरूक किया गया। अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय तथा केंद्र और राज्य सरकारों के कृषि विभाग भाग ले रहे हैं। वहीं खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ आज देहरादून के सहसपुर स्थित ढाकी क्षेत्र से किया गया। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि 1 जून से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से किसानों में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों, कृषि विशेषज्ञों, विभागीय अधिकारियों के साथ संवाद कर कृषि भूमि संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और कृषि क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि संरक्षण के साथ साथ किसानों के सम्मान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। श्रोताओ, चमोली जिले की सीमांत नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का शुभारंभ हुआ। पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना और ITBP के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय आयोजन में देश के 28 राज्यों से आए 933 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन के पहले दिन रिमखिम नीति मलारी के बीच 75 किलोमीटर अल्ट्रा रन प्रतियोगिता आयोजित की गयी, जिसमें 117 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं मलारी नीति मलारी 62 किलोमीटर अल्ट्रा रन में 118 प्रतिभागी शामिल हुए। इस 3 दिवसीय आयोजन में 5, 10 और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन का भी आयोजन किया गया। समापन अवसर पर गमसाली से मलारी के बीच 30 किलोमीटर MBT चैलेंज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। श्रोताओं, अगली खबर अल्मोड़ा जिले से। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 1170 अग्निवीरों ने भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा की शपथ ली। 6 माह के कठिन प्रशिक्षण के बाद आयोजित कसम परेड समारोह देशभक्ति और गौरव के भाव से सराबोर रहा। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर विजयंत महादिक ने सभी अग्निवीरों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती होकर देश सेवा का अवसर केवल भाग्यशाली युवाओं को ही

0: और समाज में जन जागरूकता बढ़ाने तथा जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता वर्तमान समय में समाज और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य कर रही है। वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने भी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित की भावना आज भी पत्रकारिता की मूल आत्मा है। श्रोता, साथ ही देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 30 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स अकादमी मिड टर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और इथोपिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान समकालीन वैश्विक चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत तथा विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं ब्रिक्स उप शेरप शंभू एल हक्की ने किया। सम्मेलन की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण पर केंद्रित रही, जो वर्ष 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की केंद्रीय थीम है। सम्मेलन में हरित औद्योगिक परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु वित्त जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों के विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने अपने विचार साझा किए तथा सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन में उत्तराखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के शिक्षाविदों तथा शोधार्थियों ने भी सक्रिय भागीदारी की। श्रोता, इसके साथ ही युवाओं के लिए एक विशेष खबर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पशुपालन विभाग में सहायक कृषि अधिकारी और चारा सहायक के 90 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए 1 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदक 24 से 26 जून तक आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। वहीं संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। श्रोताओं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई और 6 व 7 जून को आयोजित की जाएंगी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है और 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। श्रोता, साथ ही अगली खबर पिथौरागढ़ से रही। पिथौरागढ़ जिले में शासन प्रशासन द्वारा शुरू की गई हेलो हेल्प हेल्पलाइन आम लोगों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनती जा रही है। इसके माध्यम से जिलेवासी अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने बताया कि हेल्पलाइन पर प्रतिदिन करीब 15 से 20 शिकायतें दर्ज हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास केवल शिकायत दर्ज करना नहीं बल्कि उनका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान करना है। श्रोता, साथ ही भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में होगा जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। श्रोताओं, केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की थी। श्रोताओ, इसके साथ ही प्रत्येक मंगलवार को प्रसारित होने वाला सप्ताह सार का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी जयवीर सिंह को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून। नमस्कार।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे थे सप्ताह सार 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और आइए अब सुनते हैं संस्कृत वार्ता। आज की संस्कृत वार्ता का विषय है पर्यावरण संरक्षणे युवानाम भूमिका और वार्ताकार हैं डॉक्टर साधना डिमरी।
2: पर्यावरण संरक्षणे युवानाम भूमिका। प्रिय श्रोतारः, आकाशवाण्याः अस्मिन्

0: कारकः मनुष्येण प्रकृतेः उपयोगः मालाकारः एव करणीयः। यः पुष्पाणि गृह्णाति परं वृक्षं न नाशयति। अङ्गारकारकः इव सर्वं वनं दग्ध्वा भस्मसात् न करणीयम्। युवावर्गः स्वजीवने एतादृशान् लघुसङ्कल्पान् स्वीकुर्यात्। मासे एकवारं पर्यावरणश्रमदानम्, उत्सवेषु अपशिष्टशून्यता जीरो वेस्ट इति, तथा दैनिक जीवने एकवारं प्रयुक्तस्य प्लास्टिक इत्यस्य सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतया परित्यागः। प्रिय श्रोतारः, पर्यावरण रक्षणं मानव सभ्यताया अस्तित्व प्रश्नः अस्ति। युवासु सा ऊर्जा वर्तते या प्राचीन वैदिक चिंतनस्य आधुनिक विज्ञानस्य च मध्ये सेतुबन्धं कर्तुं शक्नोति। प्राचीन सुभाषितेन वयं स्मरामः, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं, मूढै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा प्रदीयते। वास्तविकानि रत्नानि तु जलम्, अन्नं, ज्ञानं च सन्ति। एतेषां रत्नानां रक्षणं युवाशक्तेः परमं कर्तव्यम्। यदि युवानः जागरूकः, सक्रियः, दृढसंकल्पाश्च भवेयुः, तर्हि इयं धरा पुनः अमृतमयी भविष्यति। आकाशवाण्यः अयं विशेष संस्कृत कार्यक्रमः अत्रैव विरमति। श्रवणाय सर्वेभ्यः धन्यवादः। पुनः मिलामः। प्रकृति अस्ति, वयं सन्ति। प्रकृति है तो हम हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संस्कृत वार्ता। आज की संस्कृत वार्ता का विषय था पर्यावरण संरक्षण युवानाम भूमिका, और वार्ताकार थी डॉक्टर साधना डिमरी। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 साल। हम चलते चलते अपने श्रोताओं को आज के बाकी के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बताते चलें। आज रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट, और उसके बाद 9:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। खेल दर्पण का समय रहेगा आज रात 10 बजे, और आपकी फरमाइश हमारे श्रोता सुन सकेंगे आज रात 10:30 पर। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 साल, 12 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सोनू सूद।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग योर डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
2: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashwani series on completion of 12 years of NDA government.
3: Namaskar, thank you.
2: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, न सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
3: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के, चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है, दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खुल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं

0: लगता है ऐसे ही फिशरी है। फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जो पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी। ऐसे और जो लोग, जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा। ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा वो? एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है।
1: जी
0: तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया।
1: जी
0: और उसकी चेन इतनी है कि गांव का, हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: Mr. Iyer, coming to you, Mr. Singh has, you know, outlined so beautifully that what has been the basic change in the approach of the government towards the agriculture sector. We would like to know from you the stability and the momentum that we have seen in the agriculture sector. Even in the difficult years of COVID, the agriculture sector kept growing. How do you see the approach of the government? What, according to you, have been the, you know, major areas where the government, you feel, has, you know, hit the bullseye, and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: You know, for over a decade, the government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision, of a plan,
1: right,
2: of Viksit Bharat.
1: Yes.
2: So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it. And that is why over the last 10 years, you have seen several schemes that have been launched. Several projects, they are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part,
1: yes,
2: and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
2: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is, if India's economy is going to reach the third largest economy,
1: yes,
2: that India should be Annadata for the entire world.
1: Yes.
2: See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld, unko madad kiya gaya hai, unko haath pakad ke khade hone ke liye, jo bhi sadhan ki zarurat hai, wo sari cheeze bhi dete hue, भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में, हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इन अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग, लाइक क्लाइमेट चेंज, देन इंश्योरिंग मार्केट एक्सेस, चैलेंजेस इन मार्केट एक्सेस, सेटिंग अप ऑफ वेयर हाउसेस, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस, एंड ऑल्सो रनिंग ग्रीन ट्रेन्स.
1: Yes.
2: You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so
1: yes,
2: that our farmers get a better price, has been, is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support.
1: Right.
2: For instance, the PM Kisan. Then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know.
1: Yes.
2: That is also the big thing, to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana,
1: yes,
2: so that, you know, it focuses on low productivity districts.
1: Yes.
2: Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta,
1: yes,
2: in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal vagara vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming.
1: Right.
2: So that the future is natural farming, we can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: Yes, Mr. Singh, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें।
0: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कॉस्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर ये और पैसा। तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है, जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
1: 25 करोड़ से ज्यादा
0: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता पंप होता है या नहरों से जाता है वो सिंचाई के काम में आता है, लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है, जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी। फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया, और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी। कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ लेता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है।
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
0: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन में। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा

0: वच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश यह होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। सरकार ने बहुत बेहतर,
1: बिल्कुल। सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर हियर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs a financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what have they revised? Keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore to take into account this particular problem. Yes. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is, like for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government trust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. कमिंग टू यू मिस्टर सिंह, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है, और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
0: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। ये सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय। जिस तरह से उसका विस्तार

0: रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या सुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं। 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे आज पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पर मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है, और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती है। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25-28 हजार रुपया या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कारपोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़, और पिछली सरकारों का कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25-30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानते ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है, इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द PM किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स, देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ड अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 लाख फार्मर्स हैव एनरोल्ड, एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग स्टेटिस्टिक इज दैट 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is for every drop that is being, you know, water, that is that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem. That is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishv hai usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports, $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food exports hai unka share bhi badhkar 20% ko par kar gaya hai. So ek shift hai towards higher value added. So ek progressive shift dikhai de raha hai food processing ki taraf. Food processing par bahut sarkar ne jo bal diya hai, PLI bhi aaya hai food processing industry ke liye. Iske bare mein aap hamara thodi bata sakte hain jo value added aur food processing hai, is par bal diya jana kyun itna important hai?
0: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रा फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी, और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के तौर से, टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1,185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है. और पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है। सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
0: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का

0: फंड का अनाउंसमेंट किया था और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा। और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सब उसका पार्ट हैं। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशनड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड आवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, दीज हैव बीन डिफाइंड एज द फोकस एरियाज। सो यू थिंक यू नो दिस काइंड ऑफ वेरी फोकस्ड अप्रोच दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग लुकिंग एट द वेरी वास्ट एंड वेरी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड यूजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for to go in for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export-oriented in our production. That is very, very important because we have a rich agroclimatic, you know, zones. That is why, you know, Prime Minister particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses. And the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you.
2: Thank you very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. The participants were Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
5: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम 12 साल सरकार के 12 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:45 बस आने को हैं। आइए अब सुनते हैं दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
7: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
8: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
6: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
9: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
6: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
8: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
10: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
8: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका

उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है

0: खाताओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस बहुत ही मधुर गीत के बाद बारी है एक और मधुर गीत सुनने की। फिल्म का नाम लिया है हमने कलाकार और इस गीत को आवाज दी है सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल ने।

श्रोताओं सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी मीनू गोयल के साथ। और साथ साथ इससे पहले कि अगला गीत आपको हम सुनाएं, याद दिलाते चलें कि आज रात 10:30 का समय है आपकी फरमाइश कार्यक्रम का, जिसमें आप अपने मैसेजेस, अपने पसंदीदा गीत हमें व्हाट्सएप मैसेजेस के सहारे भेज सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन सभी मैसेजेस को शामिल कर सकें। तो टाइम याद रखिएगा 10:30, स्टे ट्यून्ड। और फिलहाल बढ़ चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ। आशा भोसले का स्वर है, फिल्म का नाम है काली घटा।

चलिए, जब दो दोस्त मिलकर बैठ ही गए हैं तो कुछ पल सुकून के बिता लें, कुछ अपनी कहें और कुछ उसकी सुन लें। बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। आवाजें हैं सुरेश वाडकर और नितिन मुकेश की, और फिल्म का नाम है चांदनी।

घड़ी की सुइयां धीरे धीरे इशारा कर रही हैं कि भाई अब कार्यक्रम को वाइंड अप करने का समय आ चुका है। तो अब हम चलेंगे अपने अंतिम गीत की तरफ इस सेगमेंट के। लेकिन एक बार फिर याद दिला दें, आज रात 10:30 पर आप सबसे मिलेंगे आपके फरमाइशी गीतों के साथ, जो आप हमें अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से भेजेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ, जो कि इस कार्यक्रम का है अंतिम गीत। गीत को आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज ने, और फिल्म का नाम है चालबाज।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: आकाशवाणी गोरखपुर की प्रस्तुति है।
2: श्रोताओं नमस्कार। खेल दर्पण के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परिचर्चा। परिचर्चा का विषय है चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं दीपांकर मिश्र। तो आइए सुनते हैं परिचर्चा चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन।
3: श्रोताओं नमस्कार। खेल दर्पण के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, भारत जैसा कहा जाता है कि प्रतिभाओं का देश है। यहाँ ढेरों प्रतिभाएं हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज विशेष रूप से हम भारतीय खेल और खिलाड़ियों के बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि भारत में खेलों की बड़ी ही अद्भुत प्रतिभाएं रही हैं और अभी भी हैं। लेकिन जब हम परिणामों से उनकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसी प्रतिभाएं हमारे पास हैं, जैसी विशाल जनसंख्या है हमारी, उस तरह का प्रदर्शन जो है वो नहीं हो पाता है, नहीं निकल के आ पाता है। हालांकि व्यक्तिगत प्रतिभाओं की बिल्कुल कमी नहीं है और ये हमारे खिलाड़ियों ने समय समय पर अपने प्रयासों से साबित भी किया है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो विशेष मेहमानों को। एक तो हमारे साथ हैं संजय राय जी, जो कि कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और साथ में हमारे हैं नीरज गुप्ता जी, जो प्रदेश स्तरीय फुटबॉलर हैं और अभी भी खेल से जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो

0: जय जी और नीरज जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूं।
1: धन्यवाद।
0: संजय जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि भारतीय खिलाड़ियों की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, जो उन्हें कहीं ना कहीं मार्ग में उनके बाधा बन जाती है प्रतिभा के बावजूद। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप एक खिलाड़ी के रूप में कैसे देखते हैं कि कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं जो एक भारतीय खिलाड़ी को झेलनी पड़ती है।
1: अपने जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है खिलाड़ियों के लिए, तो एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए और उसके प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसका फाइनेंशियल सपोर्ट। हम अपने एकल प्रयासों से एक लेवल तक तो पहुंच सकते हैं, हम एक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इससे ऊपर उठना है हमको, और इससे ऊपर का जब हमारा टारगेट होगा और उसको अचीव करना होगा, तो वहां हमारी जो भी क्षमताएं हैं, पूरी क्षमताओं के साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। खिलाड़ी के लिए जैसे कुश्ती से है या हॉकी का प्लेयर है या किसी भी फील्ड का प्लेयर है, तो हर गेम के अलग अलग इक्विपमेंट हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और फिर जो एक खिलाड़ी को जो आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जिसका होता है, जिसको गुरु कहा जाता है, कोच कहा जाता है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है।
0: चलिए, इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं नीरज जी से कि नीरज जी, आपको क्या लगता है जो खिलाड़ियों को चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, भारतीय खिलाड़ियों को, आपके हिसाब से वो कौन ऐसी चुनौतियां हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे?
2: मैं संजय राय जी के बात से पूरी तरह सहमत हूँ। खिलाड़ियों को सबसे बड़ी चुनौती बेसिक होती है कि जिस खेल में वो जुटे हुए हैं उस खेल का उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इन्वायरमेंट, इन दोनों चीजों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अलग अलग खेल के अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, फाइनेंशियल की जो इन्होंने बात कही है वो भी बात है, इसमें इसकी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
0: आपने जैसे कहा कि आर्थिक सहायता, तो आप लोग एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, संजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आर्थिक पक्ष जो है खेल का, वो एक खिलाड़ी को किस तरह से प्रभावित करता है और उसके प्रदर्शन को किस तरह से प्रभावित करता है?
1: फाइनेंशियल सपोर्ट का तात्पर्य यह है कि खिलाड़ी की, जैसे हम चूंकि कुश्ती से जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक रूटीन वर्क के बाद एक रूटीन डाइट चार्ट होता है। अगर हमने आज सुबह के सेशन में 3 घंटे वर्जिश किया है, पसीना बहाया है, तो नेक्स्ट सेशन में हमें बिल्कुल तैयार होने के लिए इस तरह की डाइट चाहिए कि बीच का जो समय है उसको रिकवर कर ले वो, यानी कि हम अपने इवनिंग सेशन के लिए पूरी तरह से फिट हो जाए, हमारी डाइट इस तरह से संतुलित होनी चाहिए। उसमें घी है, बादाम है, दूध है, सूखे मेवे हैं और जो भी सीजन के फल अवेलेबल होते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, तब जाके कहीं हमारी रिकवरी इतनी अच्छी हो पाएगी कि हम अपने मॉर्निंग सेशन की ट्रेनिंग के बाद का जो बीच का समय होता है उसमें रेस्ट करने के बाद हम अपने इवनिंग सेशन के ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाए। दूसरा चीज इसमें है फाइनेंशियल सपोर्ट में, ये भी है कि हमको कहीं खेलने जाना है या किसी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में अगर हमको जाना है, तो हमारे पास जो हम लोगों के खेल के परिधान होते हैं, अब हर चीज काफी महंगी हो गई है, तो जैसे रेसलिंग शूज है, कॉस्ट्यूम है और प्रॉपर जो किट होती है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल गेम है, तो इंडिविजुअल गेम में इंडिविजुअल व्यक्ति भी स्पॉन्सरशिप किसी को दे सकता है कि हमें कोई स्पॉन्सर मिल गया, उसने हमारा पूरा खर्चा उठाया, भाई मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, वो हमारे पूरे नेशनल खेलने जाने से आने तक का जो भी कुछ हुआ, कोई व्यक्ति हमें ऐसा स्पॉन्सर मिल गया या कोई ऐसा हमें सपोर्ट करने वाले मिल गया कि भाई चलो हम आपके बादाम का खर्च उठा लेते हैं, तो ये जैसे एक व्यक्ति नहीं, कई लोग मिलके भी एक व्यक्ति को छोटा छोटा हेल्प करके उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं।
0: जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। नीरज जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप फुटबॉलर हैं, तो विशेष रूप से फुटबॉल के क्षेत्र में जो आर्थिक पक्ष है, जो आर्थिक मदद है, आर्थिक सहायता है, वो चाहे सरकार से आए या निजी संस्थानों से आए, वो कैसे प्रभावित करती है और अगर उसको बेहतर किया जाए तो कैसे आपके खेल की गुणवत्ता बढ़ सकती है?
2: जैसे कि संजय भाई ने कहा कि हर खिलाड़ी के लिए प्रॉपर डाइट होता है, तो खिलाड़ी अगर 3 घंटे 4 घंटे अपना पसीना बहाता है, तो नेक्स्ट जैसे कि लेवल के लिए जो अगर सुबह उसने वर्कआउट किया अपना 3 घंटे 4 घंटे जो भी प्रैक्टिस किया, उसके बाद उस खिलाड़ी की पूरी एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है, जो एनर्जी उनका एग्जॉस्ट हुआ तो उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होता है मेंटेन।

0: किया जाता है, चार्ट वगैरह उसकी तैयार होती है। तो उस डाइट को प्रॉपर पूरा करने के लिए एक रूटीन के हिसाब से अपना आदमी डाइट बराबर करता है, तो उसमें भी खर्चे भी ज्यादा आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जूस वगैरह टाइम टू टाइम, हर चीजें, तो डाइट पर भी असर पड़ता है। डाइट पे जो फाइनेंशियल आता है उस पर भी असर, वो भी खिलाड़ी के मतलब उस पर असर करता है, आगे बढ़ने के उस पर असर आता है उससे भी।
1: चलिए, तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चलिए, जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं, अगर अपने खेल के, अपने प्रदर्शन की बदौलत उनकी कहीं नौकरी लग जाती है तो फिर भी उनके सामने एक विकल्प खुल जाता है, या फिर वो अपने खेल में बहुत ही ऊंचा नाम कर लें, किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिताब ले आए, तो फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो बीच के खिलाड़ी हैं, जो अभी तक उतना नाम नहीं कर पाए हैं या अभी भी संघर्षरत हैं, तो एक बात तो ये बताइए कि उनके लिए किस तरह की सहायता उपलब्ध है सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, और उसमें कहाँ कमी है जिसे पूरा किए जाने की जरूरत है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल रहा आपका ये, क्योंकि ये बिल्कुल आज के परिवेश में खिलाड़ी जिन चुनौतियों से जूझ रहा है वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खिलाड़ी को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसमें पहले तो हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुश्ती फेडरेशन की बात कर रहा हूं। तो कुश्ती फेडरेशन अपने हर आयु वर्ग के सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, अंडर 15, अंडर 23 लेवल का नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करती है पूरे देश में। तो हर वेट कैटेगरी में फर्स्ट, सेकेंड और दो थर्ड, मतलब चार प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं हर वेट कैटेगरी से, मेन एंड वोमेन। और उसके बाद इन लोगों को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक कैंप देती है, जिसको नेशनल कैंप कहते हैं, हम लोग इंडिया कैंप भी उसको कहते हैं। तो उसमें सारी व्यवस्था रहती है और सारे, उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल के सारे कोचेज होते हैं, वो आपको उनका प्रैक्टिस रूटीन पूरा मेंटेन करना होता है और कंटिन्यू आपको उसमें ड्यूरेशन होता है इंडिया कैंप का, 90 दिन का होता है, 60 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। इसके अलावा जो प्लेयर छूट जा रहे हैं, जिनका नेशनल चैंपियनशिप में मेडल नहीं आ पा रहा है, जिनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन भाई वहां पे बस फर्स्ट, सेकेंड और दो थर्ड की ही जगह है, तो इसमें जो लोग सक्सेस हो गए, जिनका मेडल आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनके लिए भारतीय कुश्ती संघ ने अभी तत्काल में रैंकिंग सीरीज का प्राविधान डाला है। रैंकिंग सीरीज का नियम यह है कि उसमें चाहे एक वेट कैटेगरी में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका कोई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोई बाउंड नहीं है उसमें। और रैंकिंग सीरीज में अगर हम या जो भी प्लेयर है और रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो, और रैंकिंग सीरीज में अगर वो मेडल देते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म ये मिल जाता है कि वो सीधे इंडिया कैंप के हकदार हो जाते हैं, उस नेशनल कैंप के हकदार हो जाते हैं, जिस नेशनल कैंप के लिए उन्होंने एक ख्वाब बना के बरसों से ग्राउंड पे मेहनत किया था, पसीना बहाया था, और फिर वो उसी इंडिया कैंप से, नेशनल कैंप से वो शुरुआत होती है, जो सपना लगभग हर एक खिलाड़ी देखता है कि जो भी टीम बाहर जानी होती है, नेशनल कैंप से ही उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, ट्रायल लिया जाता है, उसमें जो भी बच्चे फर्स्ट आते हैं वो उस समय की जो भी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होनी रहती है उसके हिसाब से वो ट्रायल होता है, उसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो बच्चे जाते हैं। तो एक तो फेडरेशन का ये बहुत बड़ा एक खिलाड़ियों के लिए कदम है, और इसके अलावा एक फाइनेंशियल सपोर्ट में जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WPL रेसलिंग प्रो लीग ऑर्गेनाइज करती है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही एक खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है कि जैसे अगर उसमें कोई भी खिलाड़ी जिसका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपने करियर का और उसको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है और अचीवमेंट उनका अच्छा रहा है और कंटिन्यू वो मतलब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं नेशनल टूर्नामेंटों में, तो उनकी फेडरेशन के माध्यम से जब टीमें इनकी बोली लगती हैं तो वो अपना जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेबल कराते हैं, तो जो भी ऑनर है उनको अगर कोई ऑनर लेता है अपनी टीम से खेलने के लिए तो वहां एक अच्छा पैसा मिलता है उनको। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि लगभग हमको ऐसा लगता है कि एक खिलाड़ी को अगर एक टीम ऑनर अपनी टीम से खेलने के लिए खरीद लेता है तो वो टोटली चीज जो फाइनेंशियल हेल्प की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर का पूरा हो जाता है, फाइनेंशियल रूप से वो मजबूत भी हो जाता है, जिससे वो अपनी आगे की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सके। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक माहौल तैयार हो रहा है देश में, फेडरेशन की अच्छी पहल है। और नीचे थोड़ा सा एक कहना चाहेंगे कि जैसे एक तो हम एक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश जो अपना है वहां से जहां से हम प्रतिभा को तैयार करते हैं, नर्सरी जो होती है खेल की, क्योंकि खिलाड़ी, एक तो खिलाड़ी हमेशा अभाव में होता है, प्रतिभा अभाव में होती है, तो हमें ये जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं पहले खुद को बोलता हूं कि अगर मैं ही हूं तो हमें अपने गांव में या हमें उस जगह पे जहां मैं फिलहाल अभी हूं वहां पे ऐसा देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए हम लोगों को कि भाई ऐसा कौन सा बच्चा है। अगर वो बच्चा है तो हमें उसका हेल्प, इतना ही हमें उसको हेल्प करना है कि उसको एक अच्छी जगह बतानी है जहां से उसके रुचि के हिसाब से, उसके शौक, उसके मुताबिक जिस गेम को खेलना चाहता है उसका कोचिंग देने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको वहां पे एक ग्राउंड मिल जाए जिसपे जाकर वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो ये सब चीजें अगर हम छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करें हम सभी लोग मिलके जो भी लोग खेल से जुड़े हैं तो काफी कुछ चीजें आसान हो जाएंगी।
1: जी संजय जी, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगा कि जो आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की तो हम सब जानते हैं कि भारत में ढेरों प्रतिभाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें तराशना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। तो आप खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी होने के कारण।
2: बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण पृष्ठभूमि रही मेरी और हमें कुश्ती से बड़ा लगाव था। परिवार में भी फादर भी कुश्ती करते थे और हम अपने जिस स्कूल में माध्यमिक शिक्षा परिषद का स्कूल हुआ करता था, जिस स्कूल में मैं पढ़ने जाता था उसी स्कूल के रास्ते में अखाड़ा हुआ करता था। तो जब हम सुबह स्कूल के लिए निकलते थे तो रास्ते में वहाँ जो उस्ताद जिनको कहा जाता है, गांव की भाषा में उस्ताद कहा जाता है, तो उस्ताद जी जो बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे और जो लोग अब वर्जिश करते थे देख के बड़ा अच्छा लगता था उनकी शरीर देख के। तो मन में आता था कि काश हमारी भी शरीर ऐसी होती, हम भी मेहनत करते। तो ये तो बात है छठवीं सातवीं जब हम लोग पढ़ते थे, फिर उससे ऊपर जब मैं आठवीं नौवीं आया तो मैं थोड़ा और बड़ा भी हो गया था और शरीर भी काफी अच्छी हो गई थी। चूंकि अखाड़े पे नहीं जाते थे हम लोग, लेकिन जब भी मौका मिलता था अपने घर पे, अपने दरवाजे पे या कहीं ऐसी जगह जो घर के अगल बगल थी, खाली थी, वहां पे हम लोग एक वर्जिश का अपना छोटे मोटे गांव वाले जो साधन हुआ करते थे उसको तैयार करके करते थे। तो शरीर इस तरह से ठीक हो रही थी, अच्छी हो रही थी और खाने पीने की सारी व्यवस्था थी घर पे, दूध घी की सारी व्यवस्था थी। तो हमारे गांव के एक लोग हुआ करते थे जो गोरखपुर, उनकी दुकान थी वो, तो उन्होंने देखा था हमको, हमारी शरीर देखी उन्होंने गांव में जाके, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको गोरखपुर चलना है कुश्ती के लिए। फादर से बात किया उन्होंने, फादर ने जब हमसे बात किया तो हम तैयार हो गए, तो वो लेके हमको गोरखपुर आए। तो गोरखपुर आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर हमारी कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ था, कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ और एक साल तो मैं बिल्कुल गाँव से गोरखपुर आने जाने का कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन एक साल के बाद जब मैं ट्रायल दिया आवासीय छात्रावास के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होता है, तो उसमें ट्रायल देने के बाद उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर मंडल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे ट्रायल होने के बाद मैंने अपने सारे ट्रायल क्लियर किए, उसके बाद उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ कैंप के लिए और जो स्टेट कैंप लगा, स्टेट कैंप के बाद फिर फाइनल ट्रायल हुआ तो हमारा सिलेक्शन हॉस्टल के लिए हुआ। तो जो सबसे बड़ी चीज है, बेसिक जो है कि ग्रामीण रूरल क्षेत्र में उन लोगों का या ऐसे लोगों का अभाव है जो, जैसे कोई कुश्ती का नॉलेज होना चाहिए, भाई जिसको कुश्ती का नॉलेज है वही कुश्ती का ट्रेनिंग आपको दे सकता है, जिसको बैडमिंटन का नॉलेज है वही बैडमिंटन की ट्रेनिंग दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जबकि हमारी नर्सरी ही वहीं से तैयार होती है। अगर हम उस लेवल पे ये चीज अपना कर लेते हैं कि हम अपने ब्लॉक स्तर पे या अपने एक ग्राम पंचायत स्तर पे जिसको कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा इसको वो किया जाए कि हम ग्राम पंचायत स्तर पे एक खेल का मैदान हो, वहां पे कम से कम इस तरह के दो चार लोग, जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी योजनाएं हैं चल रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं, तो उसी तरह से इसके लिए भी एक पहल करनी होगी कि इस तरह के लोग चिन्हित किए जाएं जो उस ग्राम सभा के अंतर्गत हों, जिनको कुश्ती का ज्ञान हो, जिनको वॉलीबॉल का ज्ञान हो, जिनके अंदर एथलेटिक्स का नॉलेज हो, तो उनसे सुबह शाम एक वो करके और ग्राउंड पे बच्चों को कुछ टिप्स दिए जाए जिससे बच्चे तैयार हो और उनके नॉलेज से उनको इतना लाभ हो कि उस गेम में मतलब करने के लिए उनके अंदर जागरूकता हो, उस गेम के प्रति उनका लगाव बढ़े और वर्क करें। इसके अलावा आता है कि अब जैसे हमने आवासीय छात्रावास का आपसे अभी जिक्र किया था, तो आवासीय छात्रावास कुश्ती के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय स्पोर्ट्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स हॉस्टल वीर बहादुर सिंह गोरखपुर और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई। तो लगभग लगभग प्रदेश में स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज इस लेवल के हैं और इसी स्थिति में है प्रदेश में कि स्पोर्ट्स कॉलेज जैसे गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज वीर बहादुर सिंह है, इसमें कक्षा छठवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो लखनऊ में है उसमें कक्षा नौवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें तो सिर्फ एक से और पांचवीं तक ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि पांचवी के बाद तो गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है बच्चे के लिए। तो एक से और पांचवी तक का जो जीमा है वो शायद सिर्फ गवर्नमेंट के ही हिस्से नहीं है, उसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए कि एक से पांचवी तक का जो बच्चा है उसके तैयार करने के लिए हमें खुद समय निकालना होगा, हमें खुद एक पहल करनी होगी। और उसके बाद से हम जब पहल करेंगे तो निश्चित ही अगर हम 10 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो नहीं 10 तो 2 बच्चे तो जरूर सेलेक्ट होंगे उस आवासीय छात्रावास से, उनको जरूर लाभ मिलेगा, उनका करियर जरूर आगे बढ़ेगा। तो ये एक तरह से हम सबकी जिम्मेदारी है, अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स में कुछ नया अगर करना है तो हमें अपने आसपास के बच्चों को देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं।
1: संजय जी, आपने जैसा कहा कि पांचवी तक हमें प्रयास करना है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जहां की खिलाड़ी जाकर अपनी प्रतिभा संवार सकते हैं और उन्हें एक रास्ता मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सूचना की कमी एक बड़ा कारण है। जो आप चीजें बता रहे हैं उसकी भी सूचना बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, विशेष करके छोटे शहरों और गांवों में तो इसकी बहुत ही कमी है। तो आकाशवाणी का एक माध्यम है जो कि सूचना और अच्छी सूचना का प्रसार करे, ये हमारा कार्य भी है। तो आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो प्रतिभाएं छोटी जगहों पे हैं, जिनके पास अभी सूचना के उतने साधन नहीं हैं और वो इस द्वंद्व में हैं, इस असमंजस में हैं कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे संपर्क करें ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका मिले, उसे तराशने का एक मौका मिले, तो आप जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें जाननी चाहिए, उन्हें आप बताना चाहेंगे वो किससे संपर्क करें, किसके पास जाएं?
2: ये बहुत अच्छा रहा आपने चर्चा किया इस पे। ये वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, पूरा इसको कहा जाए कि व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। आज भी फार्म बिक चुके हैं, लोगों ने फार्म भर दिया है, लेकिन आज भी अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे, किसी गांव में जाके किसी खेलने वाले बच्चे से जो एथलेटिक्स का शौकीन है या उसकी प्रैक्टिस करता है उससे पूछेंगे तो बताएगा कि नहीं, हमें नहीं पता कि फार्म मिला कि नहीं मिला। तो ये प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में तो बकायदा मतलब इसकी सूचना भेजी जानी चाहिए। तो इस सब हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला खेल कार्यालय होता है, तो जैसे ही ये फार्म बिकने होते हैं तो सबसे पहले इनकी नोटिस जिला खेल कार्यालय को जाती है। वो जिला खेल कार्यालय पे नोटिस चस्पा होती है, उस पे लिखा रहता है कि फला से फला डेट तक ये फार्म, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर का फार्म फला से फला डेट तक वितरित किया जाएगा। यहां से आप उसकी एक निर्धारित उसका शुल्क होता है, वो शुल्क देके आप उस फार्म को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एक रीजनल कार्यालय होता है, तो आप अगल बगल के अगर जिले के खेल कार्यालय से चीज स्पष्ट नहीं होती है तो आप रीजनल ऑफिस पे पहुंच सकते हैं, जहां से 100% ये स्पष्ट होनी ही होनी है कि ये फार्म बिकेगा, कब से बिकेगा, इसका मूल्य क्या निर्धारित होगा, वो सारी चीजें आपको जिला खेल कार्यालय से अगर नहीं मिल पाती हैं तो आप अपने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर से ले सकते हैं, जो हर रीजन में एक रीजनल स्पोर्ट्स अफसर का ऑफिस बना हुआ है, जहां से जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत रन करता है, आपको सारी जानकारियां वहां से मिल सकती हैं, बशर्ते कि आपको वहां तक जाना होगा।
1: मतलब ये हुआ कि जो भी नई प्रतिभाएं हैं, जो छोटे शहर और गांव के खिलाड़ी हैं, वो अपने जिले के खेल कार्यालय और जो स्थानीय केंद्र हैं उसके संपर्क में रहें तो उन्हें समय आने पर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती रहेंगी। चलिए नीरज जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि फुटबॉल में भारत में कई प्रतिभाएं समय समय पर दिखती हैं, बड़े नाम आते हैं, लेकिन अगर एक टीम के रूप में चर्चा की जाए तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं फीफा की रैंकिंग में बहुत नीचे है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद एक टीम के रूप में हमारा प्रदर्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतना लचर क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या है?
0: इसके मुख्य कारण ये है कि खिलाड़ियों को सही जो दिशा निर्देश है वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि संजय भाई ने कहा अभी कि खिलाड़ियों को जानकारी नहीं हो पाती है, आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा है फुटबॉल का कि हमारी देश की जो टीम है, ना बढ़ने का कारण यही है कि खिलाड़ियों को सही चीजें और सही फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल पाती, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है, जो प्रतिभाएं होती हैं वो दबी रहती हैं। अभी भी हम गांव क्षेत्र में जाएं तो खिलाड़ियों को देखें तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां पर भी मौजूद हैं, पर उनको तराशने की ही जरूरत है। ये सब चीजें हैं जो कि थोड़ा सा
1: ये चुनौती बनती है। जी संजय जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि संजय जी जो हैं वो कुश्ती के साथ ही कुश्ती की एक जो एक नया प्रकार है ग्रैपलिंग रेसलिंग, उससे भी जुड़े हुए हैं और उसके बड़े ही अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि ये एक नई विधा है कुश्ती की और इससे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हैं। तो संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रैपलिंग रेसलिंग जो है वो क्या है, वो पारंपरिक कुश्ती से किस तरह से अलग है, और अगर ग्रैपलिंग रेसलिंग में कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए?
2: ग्रैपलिंग रेसलिंग जैसा नाम दिया गया है, इसको ग्रैपलिंग रेसलिंग रेसलिंग नाम इसलिए दिया गया कि रेसलिंग ही इसको, रेसलिंग की जो भी फेडरेशन होती है, चाहे वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW जो वैश्विक संस्था है कुश्ती की, उसी के अंतर्गत रन करती है। और दूसरी चीज की किसी भी देश में जो भी ग्रैपलिंग की फेडरेशन होगी, उस देश की जो नेशनल एसोसिएशन फेडरेशन होगी, उसी के अंतर्गत संचालित की जाएगी, कोई अलग उसके लिए संस्था अलग से नहीं बना सकता है। तो ग्रैपलिंग रेसलिंग की एक एसोसिएट स्टाइल है, जैसे कि जो प्रोफेशनल स्टाइल है रेसलिंग की ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल, उसके बाद ग्रैपलिंग एसोसिएट स्टाइल में आता है रेसलिंग की। तो ग्रैपलिंग रेसलिंग में, ग्रैपलिंग और रेसलिंग में सिर्फ अंतर इतना ही है कि ग्रैपलिंग रेसलिंग में जैसे रेसलिंग और जूडो को मिला के दोनों की टेक्निक, कुछ टेक्निक इसकी रेसलिंग से ली गई हैं और कुछ टेक्निक जूडो से ली गई हैं। तो रेसलिंग और जूडो को मिला के इसकी सारी टेक्निक बनी हुई है और इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। जैसे चोक किया जाता है, चोक होने के बाद से जो लोग मतलब बेहोश हो जाते हैं, इसको तो एक तरह से इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। तो सबमिशन रेसलिंग भी इसको कहा जाता है, ग्रैपलिंग रेसलिंग है। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अभी भारतीय कुश्ती संघ ने इसके लिए अलग से एक कमेटी भी अडॉप्ट कर दिया है कंट्री में अपने, ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया अंडर एजिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसमें एक अलग से एक ऑप्शन मिल गया उन लोगों के लिए कि जैसे जो लोग काफी वर्क कर रहे थे लंबे टाइम से और सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार ग्रैपलिंग रेसलिंग को भी करके देखो, हो सकता है कि आपकी वही टेक्निक वही मेहनत यहाँ एक अच्छे मुकाम पे आपको लेके जाए। और अब इसको पूरे देश में इसके सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है, जैसे रेसलिंग के सेंटर है तो इसके भी हर जिले पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे, जोन पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे। और अभी फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी खिलाड़ी अगर इसको सर्च करना चाहता है तो यूट्यूब पे भी काफी इसकी इंटरनेशनल लेवल की, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, एशियन चैंपियनशिप की, यूरोपियन चैंपियनशिप की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जो भी बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट है, तो उससे भी आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं कि क्या है, कैसे है, उसका बेसिक टेक्निक क्या है, उसमें मतलब क्या आपको करना होगा, कैसे चेंज लाना होगा, आप अगर रेसलिंग से ग्रैपलिंग रेसलिंग में आते हैं तो आपको क्या चेंजिंग करनी होगी। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई रेसलिंग में काफी वर्क कर रहा है कोई बच्चा और उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो एक बार वो चेंज कर सकता है अपना प्लेटफॉर्म, है आप रेसलिंग में ही लेकिन एक फॉर्मेट अलग हो गया है, आप रेसलिंग से दूर नहीं गए हैं, तो आप अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। और इसमें हो सकता है आप अगर मेहनत किए हैं, मेहनत करेंगे तो इसमें आपको बेटर रिजल्ट आ सकता है।
1: जी बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा संजय जी कि जो नए प्रतिभाएं हैं, नए खिलाड़ी हैं, वो खेल में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: संदेश किसी भी खिलाड़ी के लिए तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप खेल हो, शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में रहें, तो एक अनुशासन बहुत बड़ा, अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में जिसको हम फॉलो करते हैं। और अनुशासन के साथ साथ हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि अगर आप लक्ष्य नहीं निर्धारित करते तो आपका वर्क नहीं हो सकता है। वर्क के लिए आपका लक्ष्य ही आपको प्रेरित करेगा कि आपको कितना वर्क करना है। अगर आप लक्ष्य अपना नेशनल लेवल का लेते हैं कि हमें नेशनल से गोल्ड लेना है, तो वो आपका लक्ष्य प्रेरित करेगा कि आज आपको इवनिंग सेशन में कितना वर्क करना है, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल का टारगेट लेते हैं कि हमको इंटरनेशनल लेवल में एशियन चैंपियनशिप में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमको मेडल लेना है, तो हमेशा आपको एक लक्ष्य देना होगा खुद को, क्योंकि उस लक्ष्य को दिए बिना आप दिशाहीन रहेंगे, क्योंकि उसी लक्ष्य के लिए आपको वर्क करना है, आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ उस लक्ष्य को पाने के लिए वर्क करना है। और जितना ही आपका लक्ष्य ऊंचा होगा उतना ही आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, और जब आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी आपकी प्रैक्टिस इस काबिल होगी कि आप नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे फाइट कर सकें, तो निश्चित ही मेडल भी आएगा। एक बार आप पार्टिसिपेशन करने जाएंगे, एक बार कुछ और आपका अनुभव बढ़ेगा, अगली बार उसी टूर्नामेंट में आप जाएंगे तो आप अचीवमेंट लेके आएंगे। तो आपको एक लक्ष्य देना होगा, और वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल मतलब आपको सोने ना दे, एक जुनून हो उस लक्ष्य को पाने के लिए, आपके अंदर एक जुनून फिर हो जाएगा कि हमें उसे अचीव करना है तो करना है चाहे कुछ भी हो। तो ये लक्ष्य तो निर्धारित करना होगा, बिना लक्ष्य के आप वर्क नहीं कर सकते हैं।
1: नीरज जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन तो बहुत जरूरी है, जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल में उनको पूरा अपना 100% देना होता है। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे, और जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल को आगे तक अपने मतलब स्वयं को आगे ले जाने के लिए उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ टीमें वगैरह जिला की या स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, नेशनल की, मतलब जो टीम ट्रायल वगैरह होती है उस ट्रायल में अगर वो एक दो बार छट भी जाते हैं फिर भी उनको हताश नहीं होना चाहिए, उनको निरंतर उस पर मेहनत करते रहना है। टीम में सिलेक्शन होगा फिर उससे वो और आगे बढ़ेंगे। ऐसे कई चुनौतियां भी आती हैं सामने कि आदमी थोड़ा सा डगमगा जाता अपने रास्ते से कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मन में निराश आ जाता, खिलाड़ी फिर भागने लगता है पीछे कि मेरा तो नहीं हो पा रहा है कुछ, मैं क्या करूं। तो इसलिए खिलाड़ी को हमेशा अपने प्रयास करते रहना चाहिए।
1: संजय जी, नीरज जी, आप लोगों ने जैसी चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आकाशवाणी के माध्यम से ये सारी बातें जिसमें सारी सार्थक बातें हुई हैं वो एक बड़े वर्ग तक और छोटे छोटे सुदूर जगहों पे पहुंची होंगी, बहुत सारी काम की बातें निकल कर आईं और बहुत सारी जानकारियां भी हमने जानी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा एक समाज के बड़े वर्ग को मिलेगा। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे दीपांकर मिश्र। इसी के साथ आज का खेल दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेल दर्पण 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 10:30 बस अब बज ही चुके हैं और ये समय है आपके बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, और मैं देख रही हूँ कि बहुत देर से हमारे बहुत से श्रोता फरमाइश कर रहे हैं और अपने गीत हमसे सुनना चाह रहे हैं। कोशिश रहेगी, आधा घंटा ही है, तो कोशिश रहेगी कि हम आप सबके मैसेजेस को इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएं। और फिलहाल जो सबसे पहला मैसेज हम आज ले रहे हैं वो मैसेज हमारे बहुत ही रेगुलर श्रोता हैं। वैसे तो आप सब में से बहुत सारे हमारे रेगुलर श्रोता हैं, पर विजय कार्की जी से एक थोड़ा ज़्यादा अपनापन कह लीजिए, हमारे अपने शहर से हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आकाशवाणी के साथ बनी रहती हैं। और बहुत ही प्यारे शब्दों के साथ उन्होंने एक मैसेज भेजा है, उसके लिए विजय कार्की जी आपका बहुत धन्यवाद। और फिलहाल आपकी ही ब्लेसिंग्स के साथ शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। तो सबसे पहला जो मैसेज हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं, जी हाँ, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशुर धान खुराना का। और इसके अलावा मैसेज है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीब, और जी हाँ बस इतने नाम हैं। और दाऊद सराय सहारनपुर से, अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ साबरी ने हमें किया है मैसेज परी महल कासगंज से। आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से, आफरीन खान, जमीर खान जो इनके दामाद हैं उन्होंने किया है मैसेज। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का मैसेज हमने ले लिया है, शामिल कर लिया है। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने कहा है कि कोई भी गीत सुना दें। हमारे अपने शहर देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला चोपड़ा, दिनेश चोपड़ा, तनु, नानू, राधिका रानी गुप्ता, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी गुप्ता, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आरस आहूजा, रजत आहूजा, सोनिया आहूजा, तनीषा आहूजा, सीमा द्वार से और सभी चावला फैमिली मेंबर्स की ओर से प्यारा सा मैसेज हम तक आ चुका है। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा हमेशा ही गीत हमारे सुनते हैं। भोगुटा तेलंगाना से छोटा पुराण, पार्वती बाला प्रसाद, सूरज बाली और भानु राज का मैसेज आया है और ये आ गया है मैसेज हमारे बहुत ही अगेन पुराने श्रोता हैं। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रशीद अब्बासी वारसी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी का। इसके अलावा मैसेज किया है हमें कर्नाटका स्टेट चिन्ना तिरुपति से प्रकाश श्यामला, अश्विनी आनंद, मनवित रमेश ने। और एक और मैसेज हम ले लेते हैं इससे पहले कि हम आपकी पसंद का गीत सुना दें। करणवीर हाउस भूचो कैनचिया कैंचिया रादर बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत। एक मैसेज ले लेते हैं साथ साथ एक गीत जो आपकी पसंद का है ना इसको भी चला देते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में। और ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह के मैसेज के साथ। एक और मैसेज आ गया है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर जिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का। जब तक म्यूजिक चल रहा है एक गीत और ले लेते हैं, एक मैसेज और ले लेते हैं। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। आधा घंटा होता है ना, बहुत स्ट्रेस होता है कि सबके मैसेजेस किस तरह से हम शामिल कर पाएं। बहरहाल कोशिश रहेगी और आप हमारे साथ बने रहें 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, गाना बहुत मधुर है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है फेडर नीचे करने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गाना 10 मिनट का है, अगर इस गाने को पूरा सुना दिया ना तो फिर मैसेजेस रह जाएंगे। तो बढ़ चलते हैं अपने अगले मैसेज की तरफ और पीछे से धीरे धीरे इस गीत को भी सुनते चलते हैं। तो ये जो मैसेज हम ले रहे हैं वो है मोहरा अलका याग्निक से, इन्होंने कहा है मोहरा फिल्म से अलका याग्निक का एक गीत बजाने के लिए। नॉर्थ बिहार कांति निकेतन राजनगर मधुबनी से ये हमसे बात कर रहे हैं। रुद्र प्रताप गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता, शारदा गुप्ता और कुशेश्वर कांति गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश कुमार गुप्ता, रानी गुप्ता, नीलम गुप्ता, रश्मि गुप्ता, कुसुम गुप्ता और रूपा इलाहाबादी। जी हाँ, इस गीत को हम ढूंढ रहे हैं और आपके लिए जरूर से लेकर आएंगे। इसके अलावा हमें मैसेज आया है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना और हसीना दिलशाद का। मैसेज करने वाले हैं गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और इसके अलावा मैसेज आया है जमशेदपुर झारखंड सुपाही साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेन का। इसके अलावा हमें मैसेज किया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। हमें मैसेज किया है हमारे बहुत ही पुराने श्रोता एक बार फिर से किशन वंजानी, नीलम, स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन महाजन और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से ये हमसे मुखातिब है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमसे मुखातिब हैं। और हमसे मुखातिब हैं एक और हमारे श्रोता जो शायद, जी हां, दोबारा आप मैसेज कर रहे हैं शायद। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू के इस मैसेज के बाद बारी है कि हम अगला गीत आपको सुना दें। और इससे पहले एक मैसेज हम शामिल कर लेते हैं। पता है इनका करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना, कानुगुला गोपाल महेश्वरी से प्रवलिका विष्णुवर्धन विग्नेश महेश्वरी, या तो नाम है या जगह का नाम है। फिलहाल मैं दोबारा मैसेज स्ट्रीम कर रही हूँ। कानुगुला गोपाल महेश्वरी प्रवलिका विष्णुवर्धन और

श्रोताओं ऐसे प्यारे गीतों की आप फरमाइश भेजते हैं ना कि बस उनको सुन के हमारा भी दिल बाग बाग हो जाता है। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और SK पप्पी ने हमें किया है मैसेज। और इसके साथ ही हमें मैसेज किया है हमारे श्रोता लाल कुर्ती रुड़की कैंट से मुखातिब हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और RK राजा, येलांडू कोठा गुदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना, अम्मी प्यारा और बिल्ला का मैसेज हमने ले लिया है। सहारनपुर चंद्रनगर से सोनाली, सुरेश नारंग, आशु नारंग, शेख अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार, संदीप मक्कड़ का मैसेज आया है। साथ ही गांव और डाकघर निमनाबाद, जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर का ये है मैसेज। मैसेज आया है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक का। अगला मैसेज हमने लिया है सब्जी मंडी बुल्ढाना से शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन का। मैसेज करने वाले हमारे अगले जो श्रोता हैं वो हैं गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। साथ ही हमें मैसेज आया है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा का। लक्सा रोड सुबाहेड़ी कस्बापुर काजी, जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जबीर, मोहम्मद SD हुजैफा, मोहम्मद शहनवाज और मोहम्मद सोयब ने हमें किया है मैसेज। मैसेज आया है मोहल्ला 12 दरी महमूद खा रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, नगमा नाज मसूरी का। और साथ ही मैसेज किया है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद ने हमें मैसेज करने वाले हैं। अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक और सुनील पाठक जी आपका मैसेज में पहले ही शामिल कर चुकी हूं। साथ ही हमें मैसेज ये आया है, अरे भाई रुको, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, आकाशवर, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना का। मैसेज करने वाले श्रोता हैं महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव जी, काफी दिनों बाद आपका मैसेज मैंने पढ़ा, खैर मैं भी काफी दिनों बाद आई हूं। कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान का ये था मैसेज। हेलो नमस्कार कह रहे हैं हमें, ये हैं जिला रंगारेड्डी एकलव्य नगर से बिजिले वेंकटेश, श्यामला, अयांश, सियोना, अभी जॉन, अवेहा और साई प्रकाश के साथ हैं सुषम। सुषम नाम है या सुषमा था और ए रह गया है, आप मुझे प्लीज बताएं। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना ने हमें किया है मैसेज लदावली जिला मुरादाबाद से। और जिला मुरादाबाद से ही ये मैसेज आया है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का। साथ ही हमें मैसेज करने वाले हैं गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से।

एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान। और एक मैसेज और ले लेते हैं इससे पहले कि हम आपका बजाएं गाना प्यारा सा जो आपने भेजा है हमें। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग कह रहे हैं कि कोई भी गीत बजा दें। कोई भी तो हम बजाते नहीं हैं, हम बजाते हैं जो आप हमें भेजते हैं, कोशिश करते हैं सबके गीत बज जाएं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा जी, जस्ट अभी आपका मैसेज मैंने पढ़ा है। और जब तक ये गाना का गाने का थोड़ा सा जो पहले का म्यूजिक होता है ना बज रहा है, तो तक एक दो मैसेज और ले लेती हूँ। देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से सुनील चावला जी, आपका मैसेज भी मैं पढ़ चुकी हूँ।

लाग ही तो शायद ना छूटे, लेकिन समय की जो रफ्तार है ना वो नहीं रुक रही है और चलती भी रहनी चाहिए। वैसे शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई खोबरखेड़े, छकुली ताई खोबरखेड़े, खांडवी बुलढाणा से दीपाली राम ढाडे, स्वराज राम ढाडे, थिलोरी अमरावती से सुनैना तनुज भोंडे, तनुज पवन भोंडे ने किया है हमें मैसेज। मैसेज करने वाले हैं निसार सलमानी धनोरी तेलीवाला से, नौशाद सलमानी बेबी आलिया और आयान बाबू। मैसेज किया है हमें शांति निवास लेह गांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े और दीपक कुरहाड़े ने मैसेज करने वाले हैं। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और विष्णु अग्रवाल जी, और इन्होंने बहुत तारीफ भेजी है, थैंक यू सो मच। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथ्व सिंह ने किया है मैसेज। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का ये था मैसेज। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा ने मैसेज किया है हिंदुस्तान रेडियो मित्र की तरफ से, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा हैं इनके साथ। और साथ ही मैसेज आया है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान सिंधौली बरेली से, जीशान वारसी जी का। साथ ही मैसेज आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा जी का, ओके थैंक यू सो मच प्रकाश वर्मा जी इतने प्यारे प्यारे शब्दों के लिए। और लीजिए मैसेज आ गया, कह रहे हैं कि आवाज़ से साफ जाहिर है। जी हाँ, हमारे श्रोता हमें अपनी आवाज़ से पहचान लेते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब का ये मैसेज है और इनके साथ हैं फारूक अली खान साहब के साथ हैं फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया ताहिरा, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार। देखकर अच्छा लगता है कि अब आप लोग को मालूम है कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके मैसेजेस को शामिल कर लें, तो आप लोग वेट करते हैं और बार बार मैसेज नहीं करते। मोहम्मद फरमान जी का ये मैसेज आया है मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून हैं इनके साथ। फजल का पंजाब, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा और तिवांशी खेड़ा ने किया है हमें ये मैसेज। मैसेज आया है कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान का। एक और मैसेज ले लेते हैं, उसके बाद सुनाएंगे आपका पसंदीदा गीत। नया पारा भिरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, पप्पू ठाकुर का ये है मैसेज। साथ हैं जमशेदपुर कदमा से कुमारी प्राची ठाकुर, बसंत कुमार ठाकुर, साधना ठाकुर, सरोज ठाकुर, डविका ठाकुर और पप्पू ठाकुर। श्रोताओं गीत को सुनते रहें, आपका नाम आपका मैसेज कहीं भी आ सकता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं तो मैं एक एक मिनट को चाह रही हूं कि किसी तरह से यूटिलाइज कर लिया जाए। रहाट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और रामेकर परिवार का ये है मैसेज। इसके साथ ही शाही मार्केट सियोहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी का मैसेज भी हो गया है शामिल।

श्रोताओं, आखिरी चंद मिनट बचे हैं और अगला गाना आप ध्यान से सुनते रहिएगा। अनुरोध गीत अपनी पसंद से जलालाबाद मुजफ्फरनगर यूपी से राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी और सयान मंसूरी का ये है मैसेज। मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा ने किया है मैसेज छत्तीसगढ़ जोड़ी लाइन मुंगेली से। और जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो ने हमें किया है मैसेज जगनपुरी सहारनपुर से। मोहम्मद वकार फरीदी साहब, आपका मैसेज में शामिल कर चुकी हूँ। कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी जी, आपका मैसेज भी शामिल हो चुका है। सुरेश

खान इनके दामाद हैं। और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, फारूक अली खान साहब धन्यवाद की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहम और साथ में है मोहम्मद आलम हाशमी। बिल्कुल आपका नाम हमने देखिए शामिल कर लिया और जाते जाते कह रहे हैं कि हमारा नाम ले लीजिए। अच्छा अपना नाम अवश्य बता दीजिए, बताइए। अभी तो हमने तारीफ करी कि आप हमें अपने हमारे नाम हमारी आवाज़ों से पहचान लेते हैं। एनीवेज मेरा नाम है मीनू, आज आपने ये कार्यक्रम सुना मेरे साथ लाल कुर्ती रोड की कैंट से। वैसे ये प्रश्न हमारी तरफ आया था राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा की तरफ से। अभी किसी और को मैसेज करना हो तो फटाफट कर ले, हमारे पास अभी भी एक मिनट है और हम अपने श्रोताओं को थोड़ा सा तो ऑब्लाइज कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आप ही का स्नेह है जो आकाशवाणी 100.5 FM को इतना मधुर और इतना सुंदर बना के रखता है।

0: आसफ अली खान जी, ये हमारा था अंतिम गीत और अब कार्यक्रम से और आप सबसे विदा लेने का समय आ गया है। कुशेश्वर कांति गुप्ता राजनगर से हमें मैसेज कर रहे हैं इतने प्यारे शब्दों के लिए, बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आपके फरमाइश किस कार्यक्रम से, आप दीजिए मुझे अलविदा। श्रोता, आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया